नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त जागृति, लेकर हाजिर हूं आज की सुहानी सुबह की ताजगी और उत्साह से भरी रूपरेखा। हर घड़ी हर पल आपके साथ, आपकी आवाज में, सिर्फ और सिर्फ वाग रेडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं दिन का ये खूबसूरत सफर हर रंग के साथ में। साथियों, सुबह 6 बजे कार्यक्रम आराधना आप सुन पाएंगे। हर सुबह की शुरुआत हो ईश्वर के नाम के साथ। आरती, भजन और मन को शांति देने वाला ये कार्यक्रम समर्पित है आराधना को। तो जुड़िए प्रभु स्मरण में और कीजिए अपने दिन का शुभारंभ। इसी के साथ साथियों, अगला कार्यक्रम है 6:30 पर कार्यक्रम खेतीबाड़ी। किसान हमारे अन्नदाता है। इस कार्यक्रम में हम लाते हैं खेती के नए तरीके, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की सलाह, ताकि खेत भी मुस्कुराए और अन्न भंडार भी भरे। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी साथी अंजलि पालाशर और जागृति भट्ट, यानी कि मैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है सच्चा बचपन। इसे आप सुन पाएंगे 7 बजे। श्रोताओं, बचपन की कहानियाँ, नैतिक शिक्षा और बच्चों के लिए मनोरंजन का खजाना, प्यारे नन्हे श्रोताओं के लिए एक खास कार्यक्रम जहाँ हंसी, ज्ञान और संस्कार साथ चलते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर। इसी रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं। आप सुन पाएंगे 7:30 पर कार्यक्रम युवाओं की आवाज को, युवा शक्ति देश की असली ताकत। इस कार्यक्रम में उठेंगे युवाओं के मुद्दे, मिलेंगी करियर गाइडेंस, मोटिवेशन और नए विचारों को मंच। जुड़िए और बनिए बदलाव की आवाज में। इस कार्यक्रम को लेकर आती है आपकी रेडियो साथी जागृति भट्ट, यानी कि मैं। अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 8 बजे सच्चा स्वराज। जी हाँ साथियों, स्वराज सिर्फ राजनीतिक नहीं, आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इस कार्यक्रम में सुनिए स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं और जानिए आजादी के सही मायने। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट, यानी कि मैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे 8:30 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आप सुनेंगे धरती की खुशबू, संस्कृति की मिठास, लोक संगीत में बसती है हमारी आत्मा। तो तैयार हो जाइए दोस्तों ढोलक, बांसुरी और मंजीरे की ताल पर झूमने के लिए। अगला कार्यक्रम सुन पाएंगे 9 बजे हमारा स्वास्थ्य है। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी कशिश पाराशर। साथियों, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, इस कार्यक्रम में जानिए घरेलू नुस्खे, डॉक्टरी सलाह और योग से जुड़ी बातें और खुद को रखिए तंदुरुस्त हर रोज। आगे बढ़ते हुए सुनेंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इसे आप सुन पाएंगे 9:30 पर और इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। साथियों, आपको कार्यक्रम की रूपरेखा तो बता ही रही हूँ। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे 10 बजे और 10 बजे कार्यक्रम आता है हमारी बात आपके साथ। साथियों, ये कार्यक्रम समाज के मुद्दे, संवाद का एक मंच। आप कहिए, हम सुने, क्योंकि आपकी बातों में है वो ताकत जो बदलाव ला सकती है। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 10 बजे और इसे लेकर आएंगे हमारी रेडियो साथी। दोपहर 11 से 1 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। आपकी फरमाइश सिर्फ आपके नाम, आपके पसंदीदा गानों की फरमाइश आपके संदेशों के साथ। आप अपने संदेश हमें व्हाट्सएप ऐसे मिस कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234 और आप अपने फरमाइश गीतों को सुन सकते हैं वागर रेडियो।

90.8 FM पर। श्रोताओं, बजेंगे वही गाने जो आपके दिल की धड़कन है, तो जुड़े रहिए वागड़ रेडियो पर, क्योंकि यहाँ आपकी आवाज है सबसे खास। तो श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए अब शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना।

जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पद पर दूसरे पद के विषय में कोई निर्णय करना ही पड़ता है और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, ना केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, अनिश्चय से भर जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। अधिकतर निर्णय हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं, केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है। किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। स्वयं विचार कीजिएगा।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है? नाना अंजलि बुन हूँ था का? अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये है ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा। ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है। होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ू जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है। होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ू ने आपड़ी अब्बा वारी पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा। होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
4: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमारा वारा हंग्र भाई बोनों ने आपनी बोन अंजलि
1: ने आपनी बोन जागृति नु
0: राम राम। भाई बोनो आप हम रही रहो आपरो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनु घणीमान स्वागत करो हो अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में।
1: हवे भाई बोन लेने हाजिर थी गया हां कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने एक ना विषय ने हाते आज ना ना कार्यक्रम ने माध्यम थे कि अंजलि बोन आपरे बातें करवा रहा कि खेती में थावा वाला जे जोखिम है इनु प्रबंधन आपरे हरते करी शका।
0: हवे
1: ता बातें तो आपरे करंगा पण कार्यक्रम ने शुरुआत में आपरे हमरे लागे ने मोरे कर आपरी बातें।
0: हवे तो भाई बोनो आप हमर तरह सु आपरो रेडियो आपरी बातें वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: तो इसलिए क्या कि हमें इन जैसी परिस्थितियों, इसके साथ में आप मान लो आपका खेत है जिसमें जल भराव होता है, तो ये जो चीजें हैं ये मौसम से जुड़ी जोखिम होती है कि अधिक बारिश हो गई तो जल भर गया, कम हुई तो आपकी फसल जल गई, और अगर तापमान ज्यादा हो गया तो फसल जल गई। तो इस तरह की जोखिमें हैं ये आपको देखने की मिलेगी। इसके साथ में हम बात करते हैं दूसरे जोखिम की, ये होता है रोग या कीट प्रबंधन की हम बात करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो रोग की बात करते हैं तो कई बार क्या है कि हमारी खेती में बहुत प्रकार के कीट या रोग लग जाते हैं जिसके कारण फसलें नष्ट होने लगती है। जैसे आप देखोगे कि कीटों का जो प्रभाव होता है बहुत ज्यादा, तो वो आपकी फसल को निश्चित ही नुकसान पहुंचाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसके साथ ही जैसे उनकी जानकारी हमारे पास नहीं होती है कि कौन सा कीट है, उसके लिए क्या करना चाहिए, तो कीड़े और जो रोग है जो लगता है तो वो भी हमारे लिए एक जोखिम का पार्ट होता है हमारे किसान के लिए। इसके साथ में जैसे हम बात करते हैं बाजार की, हम बात करते हैं तो बाजार में भी जोखिम होता है कि आपका जो बाजार में आपको सही मूल्य नहीं मिलना या बाजार का उतार चढ़ाव, आपने बहुत मेहनत करके अगर फसल की है अगर बाजार में उसका भाव नहीं मिलता है तो वो भी आपके लिए एक जोखिम है।
1: जी जी।
0: क्योंकि किसान की हम बात करते तो उसमें क्या है कि जो आय होती है तो उसका केवल उत्पादन पर निर्भर नहीं होती है, क्योंकि उत्पादन तो आपका अधिक हो गया।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन बाजार में अगर सही मूल्य नहीं मिलता है तो फिर आपको कई प्रकार के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, क्योंकि आप बहुत सारा खर्चा करके उस फसल को करते हैं तो लास्ट में आपको अगर सही भाव नहीं मिलता है, सही मूल्य नहीं मिलता है, तो हो सकता है कि आपकी जो बचत है जिसकी हम बात करते हैं वो बहुत कम है। तो इस प्रकार की जो जोखिम है आपको मुख्य रूप से देखने को मिलती है, जो मौसम है, कीट रोग और एक बाजार, तीन चीजें मुख्य हैं।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि आपने हमें बताया कि खेती में कौन कौन से प्रमुख जोखिम हैं जो हमारे किसान भाई बहनों को देखने को मिलते हैं, सर इन जोखिमों के प्रबंधन के क्या उपाय हैं जो हम हमारे किसान भाई बहनों को बता सकते हैं?
0: देखिए, कई सालों से आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे जो फसल है वो हांगणी खेती जिसको हम बोलते हैं, जिसको मिश्रित फसल भी बोलते हैं।
1: बिल्कुल।
0: कि अलग अलग प्रकार की फसलें एक ही खेत में बोना, तो इससे क्या होता है कि जैसे अगर आपको किसी प्रकार की जोखिम आती है तो उसका जो प्रभाव वो कम पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने एक ही खेत में तीन चार पाँच छह प्रकार की फसलें बो दी है जिसमें मान लो आपका अनाज है, दालें हैं, तिलहन है या सब्जियां हैं या फलदार पौधे हैं, तो ये क्या होता है कि अगर आपका बारिश ज्यादा होती है तो आपको ये समझिए कि उसमें से दो या तीन फसल आपको मिल जाएगी।
1: बिल्कुल।
0: अगर उसकी जगह आप सिर्फ एक ही फसल बोएंगे तो हो सकता है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए और आपके लिए बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: तो इसलिए हमें जो विविधीकरण की हम बात करते हैं, जो हांगणी की बात करते हैं, वो सबसे बहुत ही सबसे अच्छा तरीका है इन जोखिमों से बचने के लिए। इसमें सबसे अच्छी बात ये भी कि हमारे जो बीज होते हैं, खाद होता है, वो हमारा घर का होता है, और जब घर का होता है तो जलवायु से जो लड़ने की क्षमताएं हैं उनमें अधिक होती है।
1: जी जी।
0: तो जब अधिक होती है, साथ में आपने अलग अलग प्रकार की फसलें एक ही खेत में लगा दी है, तो निश्चित है कि आपका पूरी तरह से कुछ कोई चीज नष्ट नहीं होगी।
1: बिल्कुल।
0: कुछ चीजें होगी जिनको पानी की कम जरूरत पड़ती है, किसी को ज्यादा पड़ती है, तो वो अलग अलग प्रकार की टाइप से होगी आपके पास।
1: जी जी।
0: तो वहाँ पे आपका जोखिम है वो कम रहेगा। इसके साथ ही हम बात करते हैं कि जैसे हम टिकाऊ कृषि की बात करते हैं, कुछ तकनीकें हैं जिसको हम अगर उनको अपनाते हैं तो जोखिम का प्रबंधन किया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है।
1: जी जी।
0: जैसे कि मिट्टी का परीक्षण करना है ना, तो परीक्षण में क्या होता है आपको पता लग जाएगा कि कितना खाद, मिट्टी कैसी है, क्या नहीं है, तो आप स्थानीय स्तर पर आप कर सकते हैं।
1: जी जी।
0: इसके साथ में आप जो मिट्टी की गुणवत्ता है उसको बेहतर करने के लिए आप उसमें पर्याप्त खाद डाल सकते हैं, मिट्टी का जो पोषण है उसको बेहतर बना सकते हैं, जैसे मल्चिंग जैसी विधियां हैं, तो इन तरीकों से आप जो है आपकी खेती को और बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ ही जल संरक्षण की तकनीकें हैं, जैसे खेत तालाब की हम बात करते हैं, मेड़बंदी है, ड्रिप सिंचाई है, तो ये क्या होता है कि इसमें आपको कम पानी की जरूरत होती है और आपकी फसल वो अच्छे से होगी। दूसरा, अगर कभी बारिश नहीं हुई तो अगर आपने खेत तालाब बना रखा है तो आप वहां से आप उपयोग ले सकते हैं, इसलिए आपको नुकसान नहीं होगा क्योंकि आपके पास पानी की उपलब्धता है।
1: जी जी।
0: तो इसलिए हमें इनका उपयोग करना चाहिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब हम खेती करते हैं तो हम कई सालों से आप देख रहे होंगे कि हमारे पूर्वज भी हमारे जो खुद के बीज होते थे उनका उपयोग करते थे। वो इसलिए करते थे कि वो हमारी जलवायु के बिल्कुल अनुकूल होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि वो हमारे खेत में उगे हैं, हमने देखा है, हमने उगाया है और उसी को हम वापस उगाने जा रहे हैं।
1: जी जी।
0: तो हमारा भरोसा क्या बहुत ज्यादा होता है कि हाँ उगेगा। अगर इसकी जगह आप बाजार से बीज लाएंगे उसी कोई गारंटी नहीं है कि वो उगेगा नहीं उगेगा, अगर उगेगा तो कितना उगेगा और उत्पादन कैसा होगा उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते।
1: जी हाँ।
0: सिर्फ आप उसको देख सकते हैं, कब आपको अंदाजा लग सब, जब लास्ट में आपकी कटाई होगी या उसकी हार्वेस्टिंग होगी तब

0: आएगा। तो इसी तरह दूसरा है कि आप जो आपस में संवाद है, जैसे संवाद भी एक बहुत बड़ी चीज है कि हमारे टिकाऊ कृषि के लिए, क्योंकि आजकल युवा और बुजुर्गों का संवाद बहुत कम होने लगा है, क्योंकि बुजुर्गों के पास में बहुत सारी तकनीकियां हैं, उनको बहुत ज्ञान है, तो हमें संवाद करते रहना चाहिए ताकि ऐसी परिस्थितियों में उनसे हम जान सके कि इसके प्रबंधन के लिए क्या अच्छा उपाय है और उसको हम अपना सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो ये भी एक तरीका है। इसके साथ ही हमारी जो परंपरागत खेती है उसको हमें अपनाना चाहिए, ना कि आधुनिक या रासायनिक खेती की हम बात करते हैं तो वो कई बार क्या होता है कि जोखिम की बात करते हैं तो रासायनिक खेती में बहुत ज्यादा जोखिम होती है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि आप अगर उसमें खाद बीज सब रासायनिक है तो अगर वर्षा कम ज्यादा हुई तो सबसे पहले वो नष्ट होगी, क्योंकि वो आपके खेत आपके क्षेत्र की जलवायु के अनुकूल नहीं है, इसलिए उसमें ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो हमें परंपरागत खेती को अपनाना चाहिए। दूसरा है, अगर हम सरकार की दृष्टि से देखते हैं तो आजकल क्या है कि किसानों की जो फसल है उसका बीमा होता है।
1: बिल्कुल,
0: और कई किसान जानते कई किसान है आज भी अनजान रहते हैं, और या फिर वो समय की वजह से या चलो क्यों कराएं इस तरह की जो धारणाएं हैं उनकी वजह से वो नहीं कराते हैं। लेकिन मेरी राय ये है कि अगर प्राकृतिक आपदाएं हैं या इस तरह की समस्या पैदा हो जाती है तो अगर आपकी फसल नष्ट होती है तो सरकार भी आपको जो सहयोग करती है, लेकिन उसके लिए बीमा आपको कराना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: ताकि आपको जो सहायता राशि है वो आपको सरकार से मिल सके, तो इसलिए जरूरी है। दूसरा कि सरकार जो है हमेशा जो है आपके घर नहीं आएगी बीमा करने, आपको जाना पड़ेगा, आपको उसका पता करने पड़ेगा कि कौन सी योजना है, कौन सा बीमा है, कितने साल का है, आपको क्या प्रोसेस होगा, क्या दस्तावेज होंगे, उसकी जानकारी आप जो नजदीकी मित्र है वहां से भी आप ले सकते हैं, या किसी किसान ने अगर कराया है तो आप उसके साथ बात करें। तो इस तरह से क्या है आप इससे जोखिमों से बच सकते हैं और जो सहायता है वो आपको समय से मिल जाएगी। तो इन चीजों का हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि आपने हमें बताया कि खेती में कौन कौन से जोखिम होते हैं और उनका प्रबंधन हमें कैसे करना है, यही बदलती जलवायु के लिए किसानों को कैसे पहले से तैयार रहने की जरूरत है?
0: देखिए, हम जलवायु की बात करते हैं तो वर्तमान में है जलवायु परिवर्तन है खेती के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और आने वाले समय में किसानों के लिए ऐसी खेती अपनानी होगी जो प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखे।
1: जी हाँ,
0: मतलब कि ऐसी खेती जो परंपरागत खेती थी हमारी जो जलवायु के अनुकूल थी और हम उसको कई वर्षों से करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसका स्वरूप है वो चेंज हुआ है, बदला है, कि अब रासायनिक खाद बहुत ज्यादा, आपने देखा होगा कि जब हम बात करते हैं खाद की तो कई बार ऐसा होता है कि यूरिया डीएपी के लिए लोग लाइन में लग जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जबकि अगर आपके पास में गोबर खाद बर्मी कंपोस्ट या कीड़ा का खाद है तो वो सबसे बेहतर है, तो हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। दूसरी जो हम बात करते हैं कि बदलते जो जलवायु या मौसम की बात करते हैं तो जल संरक्षण और मिट्टी संरक्षण पर हमें ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कि आपकी मिट्टी में खाद है लेकिन अधिक वर्षा से आपकी मिट्टी में कटाव हो रहा हो तो आपका सारा खाद है वो बहकर बाहर निकल जाएगा।
1: बिल्कुल,
0: तो इस तरह हमें प्रबंधन करना चाहिए। स्थानीय बीजों का उपयोग करना जरूरी है। अगर हम बात करते हैं कि बदलती जलवायु को नियंत्रण करना या उसके अनुसार चलना, तो हमें ये तैयारी करनी चाहिए कि हम अपना खेत का खुद का बीज और खाद का उपयोग करें। इसके साथ ही कम पानी और कम लागत वाली खेती को बढ़ावा देना चाहिए। इसके साथ एक चीज ये भी है कि जैसे हमने हांगणी की बात की है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सभी किसान भाई अगर हांगणी को अपनाते हैं तो जोखिम बहुत कम होती है। दूसरा, आपको अगर परिस्थितियां प्रतिकूल होती है तो भी आपको कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा, पूरी तरह से नष्ट नहीं होगी, तो आप हांगणी को अपनाना चाहिए आप लोगों को। इसके साथ में है जो पशुपालन बागवानी है पोषण बाड़ी है तो ये चीजें भी आपको करनी चाहिए।
1: जी हाँ।
0: दूसरी दो तरीके की जो फसलें हैं वो हमें जरूर करनी चाहिए। एक होती है कि हम अपने खाने के लिए करें, तो 12 महीने का अनाज हो उतना तो करें आप, लेकिन कुछ फसलें ऐसी चयन करें जिससे आपकी आयु हो सके, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, और लेकिन फसल वैसी होगी जो उस जलवायु के अनुसार हो। इसके साथ ही जो किसान समूह है वो आपस में जो जानकारी का आदान प्रदान है वो समय समय पर करते रहें, क्योंकि अगर आपके पास जानकारियां होगी तो किसी भी जोखिम हो उसका समाधान कहीं ना कहीं हमारे समुदाय में है और हम उसका उपयोग कई सालों से करते आए हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो इसलिए हम लोगों को ये सतर्क रहना पड़ेगा कि अगर मान लो भविष्य में किसी प्रकार की जोखिम आती है तो उसका प्रबंधन कैसे करना है, उससे निपटना कैसे है और उसके लिए क्या तैयारियां करनी है, तो इनका हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि आपने कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को ढेर सारी बातों से अवगत करवाया है कि किस तरीके से खेती में कौन कौन से जोखिम आते हैं और उनका प्रबंधन हमें कैसे करने की जरूरत है। तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: जी धन्यवाद।
1: जागृति बोन सीम के अवड़े आपड़े वैस में मांगीलाल जी सर जुड़ेता कहता ने एना आपड़ा ने घनी असल तरीका तक बताड़ू है कि खेती में जे जोखिम आवे एना नो हूं अर्थ है हूं महत्व है आनु प्रभाव आपड़े खेती माते हर ते पड़ी रू है ने बचाव ना उपाय आपड़ा ने हूं करवा सुवे। तो आशा कर रहा हूं कि आ हंगरी बाते जे है आपड़े भाई बहनों ने गमी होंगा किम के अभी टाइम थी गयो है आपड़े अणस कार्यक्रम तक सूट पड़वा। तो सूट तो पड़ पण साथे पहले हमरी लायक और गीत ने मोरे पड़ो सूट
2: होवे।

0: अंजलि बोन गीत तो आईशो पूरु नणस की थाते पड़ो सूट उम्मीद करो कि जे भी बातें रही कार्यक्रम खेतीवाड़ी माध्यम थकी ई बातें आपने किसान भाई बोनों ने गमी होगा। किसान भाई बोन आपने हमारो आज नो कार्यक्रम ने आनवे सालों वाला गीत आपने केवा लग्या एना बारे में आप राय सुझाव आली शको अपने अना पता माते।
1: हवे भाई बोनो लखी लो अमारु पतु है कार्यक्रम खेतीवाड़ी बागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कोपड़ा वागथरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। अमारो पिन कोड नंबर है 327001। अजी वधारे जानकारी बल्ले आप अमने फोन करी शको अमारा आना फोन नंबर माते। अमारो फोन नंबर है 9460051234।
0: तो भाई इन बोनो फेरी मलंगा अनस कार्यक्रम में एक ना विषय ने हाते तार हुदी
1: राम राम
0: राम राम, राम, राम।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ दोस्तों आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। कशिश, आज हमारे कार्यक्रम में श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है कि समय की बर्बादी से क्या छूटता है और किस तरीके से टाइम टेबल और अनुशासन बच्चों के लिए जरूरी है।
0: जी बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि समय बहुत ही अनमोल और सीमित संसाधन है। एक बार जो समय बीत गया वो फिर कभी वापस नहीं आता। श्रोता साथियों, बच्चों के लिए यह समय जीवन की नींव रखने का काल होता है, लेकिन जब बच्चे समय का सही उपयोग नहीं करते तो कई जरूरी चीजों से वंचित रह जाते हैं। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि समय की बर्बादी केवल पढ़ाई में पीछे रहने तक सीमित नहीं, बल्कि ये पूरे व्यक्तित्व के विकास को भी प्रभावित करती है।
0: बिल्कुल।
1: तो आज कार्यक्रम में हम यही जानेंगे कि समय की बर्बादी से क्या क्या छूटता है और क्यों टाइम टेबल और अनुशासन बच्चों के जीवन के लिए जरूरी है।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्या ना इसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोताओं को गीत सुनवाए हम पहले।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहेंगे हम कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि समय की बर्बादी से क्या छूटता है और बच्चों के लिए अनुशासन और टाइम टेबल का क्या महत्व है और ये क्यों जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समय जो है वो मनुष्य जीवन के लिए सबसे बड़ा मूल्यवान धन है। यह न किसी के लिए रुकता है और न किसी के लिए वापस लौटता है।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, बच्चों के जीवन में समय की विशेष भूमिका होती है क्योंकि यही वह समय होता है जब उनका भविष्य आकार लेता है। हम देखते हैं कि यदि इस अमूल्य समय का सही उपयोग किया जाए तो जीवन में सफलता सुनिश्चित होती है। साथियों,
1: बिल्कुल
0: इसके विपरीत अगर हम बात करें तो समय की बर्बादी अगर की जाए तो जीवन में पछतावा, असफलता और निराशा ही हाथ लगती है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही हमारे श्रोता साथियों को बताना चाहेंगे कि समय की बर्बादी से क्या क्या छूटता है। तो श्रोता साथियों, पढ़ाई और ज्ञान का नुकसान, यानी कि समय बर्बाद करने से बच्चे पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: समय पर पाठ याद न करने से परीक्षा में खराब परिणाम आते हैं। अधूरी शिक्षा आत्मविश्वास की कमी और भविष्य की कठिनाइयों का कारण बनती है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कशिश के बिना समय का सही उपयोग किए बच्चे अपने लक्ष्य नहीं तय कर पाते। पढ़ाई, खेल या कला, हर क्षेत्र में समय का अभ्यास जरूरी है।
0: जी जी,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि समय पर तैयारी न होने के कारण बच्चे प्रतियोगिताओं, स्कॉलरशिप और अन्य अवसरों से भी वंचित रह जाते हैं। काम अधूरे रहने से आत्मग्लानी होती है और बच्चों में आत्मविश्वास कम हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कशिश के समय का दुरुपयोग बच्चों को आलसी और लापरवाह बना देता है।
0: जी हाँ।
1: उन्हें आदत हो जाती है टालम टोल की, जो भविष्य में उनके लिए बाधक बनती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। दोस्तों, समय की बर्बादी का सीधा असर बच्चों के शारीरिक, मानसिक और शैक्षणिक विकास पर पड़ता है। जब बच्चे अपना कीमती समय टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया या फिर कोई अन्य निरर्थक गतिविधियों में गंवाते हैं तो कई महत्वपूर्ण चीजें छूट जाती हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि अंजलि जी आपने बताया कि वे पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं, आत्मविश्वास की उनमें कमी हो जाती है और इनका उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है।
1: जी हाँ।
0: दोस्तों, देखते हैं कि जब बच्चे सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताते हैं तो इससे उनकी नींद प्रभावित होती है, जिससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है। साथ ही सपनों से भी दूरी उनकी बनती है, यानी कि जो लक्ष्य उन्होंने तय किए होते हैं वे अधूरे रह जाते हैं और जीवन लक्ष्यहीन सा प्रतीत होने लगता है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही बात करें कि बच्चों के लिए टाइम टेबल क्यों जरूरी है, तो श्रोता साथियों, टाइम टेबल से बच्चों को पता होता है कि किस समय क्या करना है।
0: बिल्कुल,
1: इससे पढ़ाई, खेल, विश्राम और मनोरंजन सब संतुलित रहते हैं। हम देखते हैं कि एक निश्चित समय पर सोना, उठना, पढ़ना और खेलना बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाता है।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि समय के अनुसार पढ़ाई करने से विषय अच्छी तरह समझ में आता है और स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। टाइम टेबल कशिश बच्चों को अपने लक्ष्य की ओर नियमित रूप से बढ़ने में मदद करता है और जब काम समय पर होता है तो परीक्षा या अन्य जिम्मेदारियों के साथ तनाव भी नहीं होता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, अब यहीं अगर बात करें अनुशासन की तो दोस्तों, अनुशासन का भी बच्चों के जीवन में एक अलग ही महत्व है। देखा जाता है कि अनुशासन जीवन की रीढ़ मानी जाती है। बच्चों के लिए ये विशेष रूप से इसलिए जरूरी है क्योंकि वही उनके चरित्र, सोच और व्यवहार की नींव रखती है। देखते हैं कि अगर बच्चे अनुशासित हैं तो उनके जीवन में नियमितता आती है। अंजलि जी, अनुशासित बच्चा हर कार्य को समय पर करता है जिससे उसकी आदतें मजबूत होती है।
1: बिल्कुल,
0: कर्तव्यों की समझ बच्चों में आती है जिससे बच्चों को अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का एहसास रहता है। अनुशासन जीवन में आत्मविश्वास, संयम और संयोजन लाता है साथियों, जिससे बच्चों के सकारात्मक सोच का विकास होता है।
1: बिल्कुल,
0: अनुशासन से बच्चों में दूसरों के प्रति आदर, सहयोग और सहनशीलता के गुण भी देखे जाते हैं जो कि समाज में उनके सामाजिक व्यवहार को दर्शाता है। दोस्तों, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने वाले लोग हमेशा अनुशासित होते हैं, जिससे हम देखते हैं कि बच्चों का भविष्य भी सफलता पर ही टिका होता है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है। आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हम जान रहे थे कि समय की बर्बादी से क्या क्या छूटता है और किस तरीके से बच्चों के लिए टाइम टेबल और अनुशासन का महत्व है। और जैसा कि हम अनुशासन को लेकर गीत से पहले बात ही कर रहे थे, तो श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि अनुशासन बच्चों को खुद पर नियंत्रण रखना सिखाता है, जिससे वे गलत संगत, सोशल मीडिया और अन्य व्यसनों से बच पाते हैं। अनुशासन से बच्चे समय पर कार्य करना, बड़ों का आदर करना और जिम्मेदारी निभाना सीखते हैं।
1: जी हाँ।
0: कशिश इतिहास गवाह है कि जो व्यक्ति अनुशासित रहा वही सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा है।
1: बिल्कुल।
0: अनुशासित बच्चे समाज के नियमों का पालन करते हैं और अच्छे नागरिक बनते हैं। अब यही बात करें कशिश के बच्चों को समय प्रबंधन, टाइम टेबल और अनुशासन कैसे सिखाएं, तो बड़े बच्चे जो है वो बड़ों को देखकर सीखते हैं। यदि अभिभावक और शिक्षक समय का आदर करते हैं तो बच्चे भी ऐसा करने लगते हैं। बच्चों को अपनी दिनचर्या खुद तय करने दें और उसी अनुसार कार्य करना सिखाएं। दीवार पर टाइम टेबल चिपका दें ताकि वो हमेशा सामने रहे, तो बच्चों को दिखता रहेगा और बच्चे नियम अनुसार अपनी पढ़ाई को पूरी तरीके से करेंगे।
1: बिल्कुल।
0: यह देखना होगा हमें कि बच्चा टाइम टेबल का पालन कर रहा है या नहीं। अच्छे प्रदर्शन पर प्रोत्साहन दे और गलती पर प्यार से हमें समझाना है।
1: जी हाँ।
0: श्रोता साथियों, केवल पढ़ाई पर जोर न दें बल्कि खेल, टीवी, रचनात्मक कार्य के लिए भी समय दें। अनुशासन का मतलब सख्ती नहीं बल्कि व्यवस्था है। बच्चों को इसका उद्देश्य भी हमें समझाना है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, क्योंकि हम देखते हैं कि समय की बर्बादी बच्चों के उज्जवल भविष्य को अंधकार में ढकेल सकती है। साथियों, जो बच्चे समय का सम्मान करते हैं वे जीवन में कभी भी असफल नहीं होते हैं। साथ ही दोस्तों, टाइम टेबल और अनुशासन बच्चों को न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि पूरे जीवन में एक मजबूत नींव प्रदान करेगा।
0: बिल्कुल।
1: ये जरूरी है अंजलि जी कि बच्चों को बचपन से ही समय का सही उपयोग करना, दिनचर्या का सही पालन करना और अनुशासन में रहना सिखाया जाए, ताकि वे एक सफल, संस्कारी और सशक्त नागरिक बन सके।
0: बिल्कुल।
1: दोस्तों, हम जानते हैं कि समय वह अध्याय है जो हर रोज लिखा जाता है। बस हमें यह तय करना है कि हम उसमें क्या लिख रहे हैं, सफलता या फिर पछतावा।
0: बिल्कुल कशिश, हम कह सकते हैं कि समय की बर्बादी बच्चों के उज्जवल भविष्य को धुंधला बना सकती है, लेकिन यदि बच्चे समय का महत्व समझे, टाइम टेबल बनाकर चले और अनुशासित जीवन अपनाए, तो वे न केवल अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं बल्कि एक सफल, सम्मानित और संतुलित जीवन भी जी सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: आज यदि हमने बच्चों को समय और अनुशासन का मूल्य सिखाया, तो कल का उनका हर क्षण सफलता की कहानी कहेगा।
1: जी जी।
0: श्रोता साथियों, बचपन वह समय है जब नींव मजबूत रखी जाती है और समय ही वह ईंट है जिससे भविष्य की इमारत तैयार होती है। अगर बच्चे समय को समझदारी से नहीं अपनाते तो न केवल पढ़ाई में पिछड़ते हैं बल्कि आत्मविश्वास, लक्ष्य और जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों से भी दूर हो जाते हैं।
1: जी जी।
0: श्रोता साथियों, टाइम टेबल और अनुशासन बच्चों को ये सिखाते हैं कि हर चीज का एक समय होता है, पढ़ाई, खेल, विश्राम और मनोरंजन सभी के लिए।
1: जी
0: एक
1: हाँ।
0: सुव्यवस्थित दिनचर्या न केवल पढ़ाई को आसान बनाती है बल्कि बच्चों को तनाव मुक्त और संतुलित बनाती है। अनुशासन बच्चों को आत्मनियंत्रण, आदर, जिम्मेदारी और परिश्रम जैसी आदतें सिखाता है।
1: बिल्कुल।
0: जो उन्हें जीवन में किसी भी परिस्थिति पे टिके रहने की ताकत देता है। इसलिए श्रोता साथियों, समय की बर्बादी को रोक कर और समय का सही उपयोग सिखा कर हम बच्चों को न केवल अच्छा विद्यार्थी बना सकते हैं बल्कि एक बेहतर इंसान और जिम्मेदार नागरिक भी बना सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: समय की कद्र करें, अनुशासन को अपनाएं और अपने सपनों की ओर आत्मविश्वास से बढ़ें। यही
1: हाँ।
0: सफलता का सच्चा रास्ता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, तो इस तरीके से साथियों कहा जा सकता है कि जहाँ टाइम टेबल बच्चों को संतुलन, संयम और नियमितता सिखाता है, वही अनुशासन उनके आचरण और सोच को सकारात्मक बनाता है।
0: बिल्कुल।
1: माता पिता और शिक्षकों को चाहिए कि वे अपने बच्चों को समय का मूल्य भी सिखाएं, एक प्रेरणादायक वातावरण दें और उन्हें अनुशासित जीवन जीने के लिए प्रेरित करें।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि दोस्तों, समय को जो साध लेता है वह जीवन में सब कुछ पा लेता है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए बच्चों को बचपन से ही सिखाना चाहिए कि समय की कद्र करो, अनुशासन अपनाओ और हर दिन को सुनहरा बनाओ।
0: बिल्कुल। तो कशिश, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो गई हैं और अब समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम सच्चा बचपन अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में होने वाले बातचीत, सुनाए जाने वाले गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपनी साथी मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी आदत की जो चुपचाप हमारे सपनों, हमारी प्रतिभा और हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करती रही है।
0: बिल्कुल,
1: हम अक्सर इसे आलस से समझ लेते हैं, लेकिन सच ये है श्रोता साथियों कि कई बार टालमटोल आलस से नहीं होता बल्कि डर का एक रूप होता है। कई बार हम काम इसलिए नहीं टालते कि हम आलसी हैं, बल्कि इसलिए टालते हैं मनीषा क्योंकि हमें असफलता का डर होता है, आलोचना का डर होता है, या फिर ये डर होता है कि कहीं हम अपेक्षाओं पर खरे न उतर पाए।
0: जी हाँ,
1: तो कशिश आज के इसी महत्वपूर्ण विषय पर हमारी विस्तार से चर्चा रहने वाली है हमारे श्रोता साथियों के साथ में, लेकिन शुरुआत में हम सुनना चाहेंगे कार्यक्रम का पहला गीत।
2: बिल्कुल जागृति जी, तो आइए युवा साथियों सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं टालम टोल आलस नहीं बल्कि यह डर का संकेत है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: कशिश और जागृति जी, हम देखते हैं कि हम सभी ने जीवन में कभी न कभी किसी काम को टालने की आदत का अनुभव किया है। परीक्षा की तैयारी हो, किसी प्रतियोगिता का फॉर्म भरना हो, नया व्यवसाय शुरू करना हो या जीवन का कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो,
1: जी जी,
0: अक्सर हम काम को कल पर छोड़ देते हैं। श्रोता साथियों, समाज में ऐसे लोगों को आलसी समझ लिया जाता है, लेकिन मनोविज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो हर बार टालम टोल का कारण आलस नहीं होता। जागृति जी,
1: जी हाँ।
0: कई बार इसके पीछे असफलता का डर होता है कशिश, आलोचना का डर होता है और अस्वीकार किए जाने का डर होता है।
1: बिल्कुल।
0: स्वयं पर विश्वास की कमी छिपी होती है। साथ ही हम देखते हैं कि आज के युवाओं में यह समस्या तेजी से बढ़ रही है। सोशल मीडिया, बढ़ती प्रतिस्पर्धा, सफलता के दबाव ने युवाओं के मन में अनेक प्रकार के भय पैदा कर दिए हैं।
1: बिल्कुल।
0: परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि वे कई अवसरों को खो देते हैं। इसीलिए श्रोता साथियों, यह समझना हमारे लिए आवश्यक है कि टालम टोल केवल समय की बर्बादी नहीं बल्कि यह मन के भीतर छिपे हुए डर का संकेत हो सकती है।
2: बिल्कुल मनीषा, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये बताना चाहेंगे कि टालम टोल का मतलब किसी जरूरी काम को जानते हुए भी बात के लिए छोड़ देना। श्रोता साथियों, मनोवैज्ञानिक का मानना है कि टालम टोल का संबंध केवल समय प्रबंधन से नहीं है बल्कि भावनाओं से भी होता है।
1: बिल्कुल।
2: कशिश, जब कोई काम हमें कठिन लगता है, जब उसमें असफल होने की संभावना दिखती है या जब हमें लगता है कि लोग हमारा मूल्यांकन करेंगे, तब मन डरने लगता है।
1: बिल्कुल।
2: ये डर हमें उस काम से दूर भागने के लिए प्रेरित करता है। मनीषा, हम काम नहीं करते और कुछ समय के लिए राहत महसूस करते हैं, लेकिन बाद में वही काम और बड़ा बोझ बन जाता है।
1: बिल्कुल।
2: तो श्रोता साथियों, आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि डर से भागना आसान है, लेकिन सफलता का रास्ता सामना करने से जरूर बनता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। अब यही बात ये आती है कि यह टालम टोल और आलस्य वास्तव में एक जैसे हैं। दोस्तों, आलस्य और टालम टोल दो अलग अलग बातें होती हैं। आलसी व्यक्ति आमतौर पर काम करने की इच्छा ही नहीं रखता, वह मेहनत से बचना चाहता है। जागृति जी,
2: जी हाँ।
1: लेकिन जो टालम टोल करने वाला व्यक्ति होता है, वह अक्सर काम तो करना चाहता है क्योंकि वह जानता है कि काम महत्वपूर्ण है।
2: बिल्कुल।
1: उसके मन में उसे पूरा करने की इच्छा भी होती है साथियों, फिर भी वह उसे शुरू नहीं कर पाता। देखते हैं कि इन दोनों बातों का अंतर ही हमें ये बताता है कि टालम टोल केवल आलस्य नहीं है। कई बार साथियों, व्यक्ति घंटों तक उस काम के बारे में सोचता रहता है जिसे उसे करना है,
2: जी हाँ।
1: लेकिन फिर भी वह उस कार्य को शुरू नहीं कर पाता है। जागृति जी,
2: बिल्कुल।
1: हम देखते हैं कि इसका कारण उसकी मानसिक स्थिति होती है, न कि केवल काम चोरी।
0: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम बात करें कि असफलता का डर ही वो टालम टोल के पीछे छुपा हुआ डर क्यों है। तो हम देखते हैं कि श्रोता साथियों, यह टालम टोल का सबसे बड़ा कारण है।
1: बिल्कुल।
0: कई युवा सोचते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी। श्रोता साथियों, इन्हीं सवालों के कारण वे काम शुरू नहीं कर पाते।
1: बिल्कुल।
0: उन्हें लगता है कि प्रयास न करना असफल होने से बेहतर है, लेकिन यह सच है कि प्रयास न करना सबसे बड़ी असफलता है।
2: जी हाँ मनीषा, क्योंकि कई लोग हर काम बिल्कुल परफेक्ट करना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि जब तक सब कुछ आदर्श नहीं होगा तब तक शुरुआत नहीं करेंगे।
1: बिल्कुल।
2: यही सोच कशिश उन्हें शुरुआत करने से रोक देती है। सच्चाई ये श्रोता साथियों कि दुनिया का कोई भी बड़ा काम शुरुआत में परफेक्ट नहीं होता। हर सफलता छोटे और अपूर्ण कदमों से ही शुरू होती है। समाज में बहुत से लोग दूसरों की राय से प्रभावित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने कुछ नया किया और गलती हो गई तो लोग क्या कहेंगे।
1: बिल्कुल।
2: यही सोच उन्हें अपने सपनों पर काम करने से रोक देती है श्रोताओं।
1: जी
2: लेकिन
1: हाँ।
2: इतिहास गवाह है कि हर बड़े बदलाव की शुरुआत आलोचना के बीच ही हुई है। जो लोग दुनिया बदलते हैं, वे दूसरों की नकारात्मक बातों से नहीं रुकते हैं।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि हम युवा साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से बात कर रहे हैं कि टालम टोल आलस्य नहीं बल्कि इसका मतलब डर भी हो सकता है।
2: बिल्कुल।
1: तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर सुनते हैं अभी एक प्यारा सा गीत।
2: बिल्कुल
0: बिल्कुल कशिश, तो आइए दोस्तों।

श्रोताओं, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और हमारी बातें चल रही थी कि टालम टोल आलस्य नहीं, इसका मतलब है डरना। इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए श्रोता साथियों आपसे

0: कहना चाहेंगे कि समाज में बहुत से लोग दूसरों की राय से प्रभावित हो जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: मनीषा और कशिश, उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने कुछ नया किया और गलती होगी तो लोग क्या कहेंगे, यही सोच उन्हें अपने सपनों पर काम करने से रोक देती है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन श्रोता साथियों, जैसा कि हम बार बार आपको बताते हैं कि इतिहास गवाह है कि हर बड़े बदलाव की शुरुआत आलोचनाओं के बीच ही होती है। जब व्यक्ति खुद पर भरोसा नहीं करता तब भी टालमटोल शुरू हो जाती है। उसे लगता है कि वो ये काम नहीं कर पाएगा, वो अपनी क्षमताओं को कम आंकने लगता है। धीरे धीरे ये सोच आदत बन जाती है और व्यक्ति अवसरों को खोने लगता है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए याद रखिए, आत्मविश्वास काम करने से बढ़ता है, इंतजार करने से नहीं।
2: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ अगर बात करें पूर्णता की चाह की, तो देखते हैं कि कई युवा हर काम को बिल्कुल परफेक्ट करना चाहते हैं।
1: बिल्कुल।
2: क्योंकि वे ऐसा सोचते हैं कि जब तक सब कुछ सही नहीं होगा मैं शुरुआत ही नहीं करूंगा।
1: बिल्कुल।
2: लेकिन दोस्तों, पूर्णता की यह चाह अक्सर शुरुआत को ही रोक देती है। आप याद रखिए कि पूर्णता से अधिक महत्वपूर्ण प्रगति होती है। जागृति जी, जब व्यक्ति अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं करता है तब वह कार्य को टालने लगता है।
1: बिल्कुल।
2: क्योंकि वह सोचता है कि वह उस कार्य को नहीं कर पाएगा, उससे नहीं होगा और कोई दूसरा उससे बेहतर इस कार्य को कर सकता है।
1: जी हाँ।
2: ऐसे में दोस्तों, ये जो नकारात्मक सोच है वो व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे टालम टोल की भावना को भर देती है और फिर टालम टोल की जो प्रवृत्ति है वो आलस्य में बदल जाती है।
1: बिल्कुल
3: जी, बिल्कुल कशिश। यही अगर हम बात करें सफलता के डर की, तो हम देखते हैं कि श्रोता साथियों, यह सुनने में तो अजीब लग सकता है, लेकिन कई बार लोग सफलता से भी डरने लगते हैं। जागृति जी,
2: जी जी,
3: उन्हें लगता है कि सफलता मिलने के बाद उनकी जिम्मेदारियां हैं वे और बढ़ जाएंगी, लोग उनसे अधिक अपेक्षाएं रखने लगेंगी, इसीलिए वे अनजाने में अवसरों को टालने लगते हैं।
0: और हम कह सकते हैं मनीषा कि कई बार हम ये समझ नहीं पाते कि हम किस बात से डर रहे हैं। इसीलिए श्रोता साथियों, सबसे पहले खुद से सवाल पूछिए कि क्या मुझे असफलता का डर है, क्या मुझे लोगों की राय का डर है, क्या मुझे गलती करने का डर है, क्या मुझे सफलता की जिम्मेदारियों का डर है।
2: जी हाँ
0: श्रोताओं, जब हम डर को पहचान लेते हैं तब उससे लड़ना आसान हो जाता है। और ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको किए, आज जो प्रश्न किए, वो खुद से एक बार जरूर पूछिएगा, तभी हमारा जो डर है वो निकल पाएगा और हम आलस्य करना भूल जाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका होता है कशिश, छोटे छोटे कदम उठाना। यदि कोई काम बहुत बड़ा लग रहा है श्रोताओं, तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए।
1: जी हाँ,
0: जी हाँ। एक एक कदम आगे बढ़ाइए, धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और डर कम होता जाएगा।
2: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज का समय डिजिटल युग का समय है। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स और मनोरंजन के अनगिनत साधन युवाओं के सामने उपलब्ध हैं। दोस्तों, इनका संतुलित उपयोग लाभदायक है हमारे लिए, लेकिन वहीं जब इसका हम ज्यादा उपयोग करते हैं तो ये टालम टोल की भावना को बढ़ावा देता है।
1: बिल्कुल।
2: जैसे कि इस चीज के ढेर सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि लगातार मोबाइल का उपयोग करना, जिसके कारण हमारा ध्यान भटक जाता है, समय प्रबंधन की कमी भी रहती है जागृति जी, लक्ष्य हमारे स्पष्ट नहीं हो पाते हैं, आत्मानुशासन की कमी देखी जाती है और इससे फिर दूसरों से तुलना की भावना भी हमारे अंदर आ जाती है।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल।
2: दोस्तों, कह सकते हैं कि यदि इस आदत को समय रहते नहीं बदला जाए तो इसके ढेर सारे गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं, जैसे कि इसका शिक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है। जो हमारे युवा छात्र हैं जागृति जी, वो पढ़ाई को टालते रहते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि परीक्षा में तनाव ज्यादा बढ़ जाता है, अंक कम आते हैं तो निराशा उत्पन्न हो जाती है, जिससे हमारे युवा साथियों का आत्मविश्वास घट जाता है।
3: बिल्कुल कशिश। साथ ही हम श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि पूर्णता पर नहीं प्रगति पर ध्यान दें। हर कार्यों को परफेक्ट बनाने की कोशिश छोड़िए साथियों, गलतियां सीखने का हिस्सा हैं।
1: बिल्कुल।
3: सफल लोग पूर्ण नहीं होते हैं बल्कि लगातार सुधार करने का प्रयास करते हैं। श्रोता साथियों, हर दिन अपने डर को लिखिए, अपने मन में मौजूद डर को कागज पर लिखिए। अक्सर लिखने पर पता चलता है जागृति जी कि हमारा वास्तविक डर क्या है।
1: बिल्कुल।
0: और इसी के साथ हम एक उदाहरण हमारे श्रोता साथियों को बताना चाहेंगे कि एक युवक है जो हमेशा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने की सोचता है कशिश
1: जी। जी जी।
0: हर बार किताब खुलता है मनीषा और फिर बंद कर देता है। उसे लगता था कि शायद वो सफल नहीं होगा। समय बीतता गया और वो तैयारी टालता रहा। एक दिन श्रोता साथी, उसके शिक्षक ने कहा, तुम पढ़ाई नहीं टाल रहे, तुम अपने डर से भाग रहे हो। ये बात उसके दिल को छू गई। उसने उसी दिन से रोज केवल एक घंटा पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे एक घंटा दो घंटे में कब बदल गया पता ही नहीं चला।
1: बिल्कुल।
0: कुछ वर्षों बाद वही युवक परीक्षा में सफल हुआ। उसने समझ लिया था कि समस्या उसकी क्षमता नहीं थी बल्कि उसका डर था।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए कहा गया है कि डर से लड़ने वाला ही मंजिल तक पहुंचने वाला बनता है।
1: जी हाँ
0: साथियों, आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसा काम है जिसे आप बार बार टाल रहे हैं, तो खुद को आलसी मत कहिए। एक बार रुक कर ये समझने की कोशिश कीजिए कि कहीं उसके पीछे कोई डर तो नहीं छिपा।
1: बिल्कुल।
0: हो सकता है कि हमें असफलता का डर हो सकता है हमें गलती करने का डर हो सकता है कि हमें आलोचना का डर हो, लेकिन याद रखिए डर कोई दीवार नहीं है, वो केवल एक परछाई है और परछाई तब तक बड़ी लगती है जब तक हम उसकी ओर कदम नहीं बढ़ाते।
2: बिल्कुल।
0: आज अपने मन से एक वादा कीजिए श्रोता साथी इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आप डर को अपनी पहचान नहीं बनने देंगे,
2: जी
0: आप कोशिश करेंगे, सीखेंगे, गिरेंगे, संभलेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जीवन में जीत उन्हीं को मिलती है जो डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं।
2: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हम टालमटोल को केवल आलस से मान ले तो ये समस्या की जड़ को समझने से इनकार करने जैसा कार्य है।
0: बिल्कुल।
2: जी हाँ दोस्तों, अधिकांश मामलों में टालमटोल के पीछे कोई ना कोई डर तो छिपा होता ही है, जैसे कि असफलता का डर हो, आलोचना का डर हो या पूर्णता की चाह का डर। दोस्तों जब हम अपने डर को पहचानते हैं, उसका सामना करना सीखते हैं, तब टालमटोल धीरे धीरे समाप्त होने लगता है।
0: बिल्कुल।
2: ऐसे में हमारे युवा साथियों के लिए समझना बहुत जरूरी है मनीषा और जागृति जी कि सफलता का मार्ग कार्य करने से बनता है, केवल सोचने से नहीं।
3: बिल्कुल।
2: डर को श्रोता साथियों अपने सपनों का पहरेदार मत बनने दीजिए, पहला कदम उठाइए, क्योंकि सफलता उन लोगों के पास ही आती है जो शुरुआत करने का साहस रखते हैं।
3: बिल्कुल।
2: आज का काम आज ही कीजिए, क्योंकि कल कभी नहीं आता।
3: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि युवावस्था सपनों को साकार करने का समय है। यदि इस उम्र में डर और टालमटोल की आदत बना ली जाए तो जीवन में हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते।
2: बिल्कुल।
3: और जो अवसर है वो हमारे हाथ से निकल जाते हैं। युवा साथियों हमेशा याद रखिए, साहस का अर्थ डर का नहीं होना नहीं है, साहस का अर्थ है डर के बावजूद आगे बढ़ना।
0: बिल्कुल।
3: पहला कदम हमेशा श्रोता साथियों कठिन लगता है, शुरुआत छोटे छोटे कदमों से करें लेकिन उसका प्रभाव बड़ा होता है। हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे प्रयास से ही होती है।
2: बिल्कुल मनीषा, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवा साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है, और अब हम देख रहे हैं जागृति जी कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
3: जी हाँ,
2: तो विदा तो युवा साथियों हम जरूर लेंगे कार्यक्रम से, लेकिन कार्यक्रम के दस्तूर को निभाते हुए पहले सुनते हैं अंतिम गीत।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेना चाहेंगे। अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि डर के कारण जो रुक गया वो मंजिल से दूर रह गया, जो डर की आंखों में आंखें डालकर आगे बढ़ गया वही सफलता का हकदार बन गया।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, डर से मत हारो, खुद पर विश्वास करो। आज का कदम छोटा हो सकता है लेकिन यही कदम कल की आपकी सबसे बड़ी जीत की शुरुआत बनेगा।
1: बिल्कुल,
0: तो श्रोता साथियों, यही है आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज का संदेश। तालम टोल को आलस से मत समझिए, उसके पीछे छिपे डर को पहचानिए और अपने जीवन की दिशा बदल दीजिए।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बातें बहुत सारी हो चुकी हैं और हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बहुत अच्छा संदेश भी दिया है। उम्मीद करते हैं कि ये संदेश आप अपने जीवन में उतारेंगे और आप भी इन आदतों से छुटकारा पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
2: इसी के साथ दोस्तों आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
1: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल
2: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
3: नमस्कार।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातें रहने वाली है। विषय रहेगा पानी, जंगल और जमीन का संरक्षण। श्रोता साथियों, हम कह सकते हैं कि यदि हम अपने जीवन की मूल आवश्यकताओं पर नजर डालें तो पाएंगे कि भोजन, हवा, पानी और आश्रय, इन सब का आधार कहीं न कहीं पानी, जंगल और जमीन ही है। अगर ये तीनों सुरक्षित है तो जीवन सुरक्षित है, समाज सुरक्षित है और देश का भविष्य सुरक्षित है। लेकिन यदि इनका संतुलन बिगड़ जाए तो विकास के सारे दावे खोखले साबित हो सकते हैं।
0: बिल्कुल। तो जागृति जी, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। तो साथियों, आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय बताया था कि आज हमारी बातें रहने वाली है पानी, जंगल और जमीन के संरक्षण को लेकर।
1: बिल्कुल,
0: कहा गया अंजलि कि पानी, जंगल, जमीन हम बचाएंगे तभी हम सुखी और समृद्ध भारत बना पाएंगे।
1: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि जल ही जीवन है और यह केवल एक नारा नहीं है बल्कि एक शाश्वत सत्य है। मनुष्य बिना भोजन के तो कुछ दिन रह सकता है, लेकिन हम देखते हैं कि मनुष्य पानी के बिना नहीं रह सकता।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में श्रोता साथियों, हमें हमारे जीवन में पानी का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। आज दुनिया के कई हिस्सों में पानी का संकट गहरा रहा है। हम देखते हैं जागृति जी की नदियाँ सूख रही है और तालाब जो है उनका भी पानी सूख रहा है, भूजल स्तर जो है वो नीचे जा रहा है। पहले हम देखते थे कि अगर हम जमीन में खड्डा खोद रहे हैं तो कुछ ही फीट पर हमें पानी मिल जाता था।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन अभी का समय है जिसमें हम देखते हैं कि बहुत लंबा गड्ढा खोदने के बाद भी बहुत सी बार पानी नहीं मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पानी की समस्या है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है।
0: बिल्कुल,
1: ये गांवों से लेकर शहरों हर क्षेत्र में फैल रही है।
0: बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है पानी का अंधाधुंध दोहन और उसकी बर्बादी।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि हम कहीं पर जा रहे हैं तो कहीं नल खुला छोड़ देते हैं लोग, वर्षा जल को सहेजते नहीं है, जल स्रोतों को प्रदूषित करते रहते हैं। अगर ये स्थिति बनी रही तो आने वाली पीढ़ियों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथी, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये कहना चाहेंगे कि हमें वर्षा जल संचयन को अपनाना होगा। घर, स्कूल और सार्वजनिक भवनों में वर्षा के पानी को संग्रहित करने की व्यवस्था करनी होगी।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही जल संरक्षण को जीवन शैली का हिस्सा बनाना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे अंजलि तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम जल नहीं बचा पाएंगे, और जल नहीं बचा पाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें ही कोसेंगी, बताएगी कि हमारी जो दादा परदादा जो थे वो हमारे लिए इतना भी बचाकर नहीं गए।
1: बिल्कुल जागृति जी, कहते हैं ना, हर बूंद का मान करें, जल संरक्षण का अभियान करें।
0: बिल्कुल,
1: अगर हम जल संरक्षण अभियान में भाग लेंगे तो हम देखेंगे कि हम पानी का संरक्षण कर पाएंगे।
0: जी हाँ।
1: और जैसा कि आज कार्यक्रम में हम बात ही कर रहे हैं जल, जंगल और जानवरों को लेकर, यही बात करें जंगल की तो जंगल जो है वो प्रकृति के फेफड़े के समान है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं होता है, जीवन का विशाल संसार भी होता है। जंगल हमें ऑक्सीजन देता है, वर्षा देता है, तापमान को नियंत्रित करता है, और साथ ही जागृति जी हम देखते हैं कि जो जीव प्रकृति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं उन सबका आश्रयदाता भी जंगल ही होता है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि उन्हें वहाँ पर ही रहने की, खाने पीने की सारी उनकी जो जरूरतें हैं वो उनसे ही पूरी होती हैं।
0: जी हाँ।
1: जब जंगल कटते हैं तो केवल पेड़ नहीं गिरते बल्कि प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ जाता
0: जी
1: है।
0: हाँ।
1: जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़ और बढ़ता तापमान कहीं ना कहीं वनों की कटाई से ही जुड़ा हुआ है।
0: बिल्कुल अंजलि, आपने बिल्कुल सही बात बोली, क्योंकि आज विकास के नाम पर हम देख रहे हैं कि जंगलों का तेजी से दोहन हो रहा है। सड़क, उद्योग और भवन जरूरी है लेकिन उनका निर्माण प्रकृति को नष्ट करके नहीं होना चाहिए। श्रोता साथियों, आज हम देखते हैं कि हमारे ऐशो आराम के लिए हम पेड़ों को काटते हैं लेकिन कभी एक पेड़ हम नहीं लगाते। श्रोता साथियों, अगर हमें हमारे ऐशो आराम के लिए बहुत सारी चीजें करनी है तो हमें एक पेड़ लगाना होगा, क्योंकि अगर पेड़ नहीं लगाएंगे तो ये हमारे लिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा।
1: बिल्कुल,
0: विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने होंगे लेकिन केवल वृक्षारोपण ही पर्याप्त नहीं है अंजलि, लगाए गए पेड़ों की देखभाल भी उतनी ही जरूरी है। आज हर इंसान ये कहते हैं कि हमें पेड़ लगाना है लेकिन हम कई बार इन लोगों की बातें नहीं सुनते हैं और हम पेड़ों को, जंगलों को काटते रहते हैं। तो श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही कहना चाहेंगे कि जंगल, प्रकृति, ये प्रकृति ने हमें उपहार दिए हैं, अगर इन्हें हम नहीं बचाएंगे तो ये हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत नुकसानदायक हो जाएंगे। आज हम देखते हैं कि कहीं हमारे बीच में आज से पहले कोरोना महामारी आई थी जिसने हमें बहुत बड़े संकट में डाल दिया था, और ये सब संकट किस लिए आया कि पेड़ कट रहे हैं, हम पानी को नहीं बचा रहे हैं। ये सारी चीजें अगर हम कम करेंगे या अपने ऐशो आराम को थोड़ा सा कम करेंगे, प्रकृति के बीच में रहेंगे तो हो सकता है कि हम इन सब चीजों से बच जाए।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है जल, जंगल और जमीन को लेकर, ये बातें निरंतर आगे कार्यक्रम में श्रोता साथियों से यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने जल और जंगल के बारे में जाना, जागृति जी, यही बात करें जमीन की, तो जमीन भी जीवन और आजीविका का सबसे महत्वपूर्ण आधार होती है।
1: बिल्कुल,
0: जमीन केवल श्रोता साथियों मिट्टी नहीं होती है, वह धरा है जो हमें भोजन देती है, रोजगार देती है और सभ्यता को आगे बढ़ाती है। लेकिन आजकल जागृति जी हम देख रहे हैं कि भूमि क्षरण बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि अगर हमारी जमीन स्वस्थ नहीं होगी तो हमारे जो किसान भाई बहन है उनकी आजीविका खतरे में आ सकती है। इसलिए हमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग न करके जैविक तरीके से हमारी मिट्टी को बनाकर रखना है, क्योंकि जब मिट्टी स्वस्थ होगी तो उससे मिलने वाला उत्पादन भी अच्छा होगा और साथ ही वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा। हम कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा हमारे श्रोता साथियों को बताते रहते हैं, जो जैविक उत्पादन होते हैं उनकी बाजार में मांग भी ज्यादा है, उनसे हमें आय तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य और हमारे पोषण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी के समय में हम देख रहे हैं कि हमारी जो जीवन शैली है वो इतनी ज्यादा बिगड़ गई है कि उसमें अगर सही पोषण नहीं होगा तो हम हर पल बीमार पड़ते रहेंगे।
1: बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा, क्योंकि जब मिट्टी कमजोर होती है तो उत्पादन घटता है, किसानों की आय प्रभावित होती है और खाद्य सुरक्षा पर खतरे मंडराने लगते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए श्रोता साथियों हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना होगा, मिट्टी के स्वास्थ्य को समझना होगा और ऐसी कृषि पद्धतियों को अपनाना होगा जो जमीन को नुकसान न पहुंचाए। इसी के साथ, जैसे कि हमने जल जंगल जमीन के बारे में बात की अंजलि, यही हमारे श्रोता साथियों को जल जंगल और जमीन के अटूट संबंध के बारे में बताते हैं।
0: जी जी
1: श्रोताओं, पानी जंगल और जमीन तीन अलग अलग विषय नहीं है, ये एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं।
0: बिल्कुल,
1: जंगल होंगे तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो जल स्रोत भरेंगे, जल स्रोत भरेंगे तो जमीन उपजाऊ होगी और उपजाऊ जमीन से समृद्धि आएगी।
0: जी जी।
1: यदि जंगल कटेंगे तो वर्षा कम होगी और वर्षा कम होगी तो जल संकट पड़ेगा, जल संकट पड़ेगा तो जमीन बंजर होने लगेगी अंजलि। इसीलिए इन तीनों संसाधनों को एक साथ समझना, संरक्षित करना बहुत ही जरूरी है।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, आज तेजी से बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव डाल रही है।
1: बिल्कुल,
0: कई स्थानों पर हम देखते हैं कि नदियां प्रदूषित हो रही है, जंगलों की कटाई जारी है और भूमि क्षरण बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण जागृति जी मौसम चक्र भी असंतुलित हो रहा है। बाढ़ और सूखे जैसी आपदाएं अब पहले से अधिक दिखाई देने लगी हैं। श्रोता साथियों, यह केवल एक कोई प्राकृतिक घटना नहीं है बल्कि कई बार मानवीय गतिविधियों का भी परिणाम है।
1: बिल्कुल,
0: यदि हमने समय रहते इन चुनौतियों का सामना नहीं किया तो हम देखेंगे कि इसका नुकसान केवल पर्यावरण को ही नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता पर होगा।
1: जी हाँ अंजलि, और हम कह सकते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। गांव की अर्थव्यवस्था आज भी पानी जंगल और जमीन पर आधारित है। किसान के खेतों में फसल उगाते हैं, पशुपालक अपने पशुओं का पालन करते हैं और ग्रामीण समुदाय प्राकृतिक संसाधनों से अपनी आजीविका को प्राप्त करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जब गांव के तालाब सूखते हैं अंजलि, जंगल नष्ट होते हैं और जमीन बंजर होती है तो सबसे अधिक असर ग्रामीण जीवन पर ही पड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए श्रोता साथी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये कहना चाहेंगे कि ग्राम स्तर पर जल संरक्षण, वृक्षारोपण और भूमि संरक्षण की योजनाओं को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। कहा भी गया है कि सशक्त गांव की पहचान ही सुरक्षित जल जंगल और जमीन है।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ कहना चाहेंगे कि इसमें युवा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: किसी भी बदलाव की सबसे बड़ी ताकत हमारे युवा साथी ही होते हैं। आज युवा यदि पर्यावरण संरक्षण का संकल्प ले तो बहुत कुछ बदल सकता है। युवाओं को वृक्षारोपण अभियान, जल संरक्षण कार्यक्रम, स्वच्छता अभियानों में भागीदारी लेनी चाहिए। सोशल मीडिया तकनीक का उपयोग करके भी वे जागरूकता फैला सकते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में भी पर्यावरण शिक्षा को व्यावहारिक रूप से महत्व देना चाहिए। युवा केवल दर्शक नहीं बल्कि परिवर्तन के वाहक बन सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, और कहा गया है कि युवा अगर जागेंगे तो देश सवरेगा और देश सवरेगा तो प्रकृति से प्रेम करके भविष्य अपने आप ही निखर जाएगा।
0: जी जी
1: श्रोता साथियों, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण अकेले किसी एक व्यक्ति या संस्था के बस की बात नहीं है। जब पूरा समुदाय मिलकर कार्य करता है अंजलि, तभी स्थायी परिणाम प्राप्त होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: गांव में जल समितियां, वन संरक्षण समूह और भूमि सुधार समितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सामूहिक प्रयासों से सूखे तालाब पुनर्जीवित किए जा सकते हैं, नए पेड़ लगाए जा सकते हैं और भूमि संरक्षण के कार्य किए जा सकते हैं।
0: जी,
1: हम कह सकते हैं कि मिलकर कदम बढ़ाएंगे तो प्रकृति को फिर मुस्कुराता हुआ देख पाएंगे।
0: बिल्कुल जागृति, कहा भी गया है कि गांधी जी का स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था, उनका सपना था श्रोता साथियों आत्मनिर्भर और जागरूक समाज का।
1: बिल्कुल,
0: सच्चा स्वराज तभी संभव है जब हमारे गाँव आत्मनिर्भर हो, हमारे जल स्रोत सुरक्षित हो, हमारे जंगल जो है वो फिर से हरे भरे हो और हमारी जमीन उपजाऊ हो।
1: बिल्कुल,
0: जो समाज अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा नहीं कर सकता वह लंबे समय तक समृद्ध नहीं रह सकता। इसलिए पानी, जंगल और जमीन का संरक्षण केवल पर्यावरणीय मुद्दा नहीं बल्कि सच्चे स्वराज का आधार है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए कहा गया है कि प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान, यही है सच्चे स्वराज की पहचान।
1: बिल्कुल अंजलि, तो हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से, जब भी हम किसी पेड़ को बचाते हैं तब हम केवल एक पेड़ नहीं बचाते बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सांसें सुरक्षित करते हैं।
0: जी जी।
1: जब हम पानी की एक बूंद बचाते हैं तब हम भविष्य की प्यास बुझाने का काम करते हैं। जब हम जमीन की रक्षा करते हैं तब आने वाली कल की रोटी सुरक्षित होती है। इसलिए याद रखिए श्रोता साथियों, प्रकृति हमारे पूर्वजों की विरासत नहीं है जिसे हम केवल उपभोग करें, ये हमारे बच्चों की धरोहर है जिसे हम सुरक्षित करके सौंपना है। इसलिए हमारे मन में हमें संकल्प लेना होगा कि हम पानी की हर बूंद का सम्मान करेंगे, हरियाली बढ़ाएंगे, मिट्टी की रक्षा करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। क्योंकि जब पानी सुरक्षित होगा तब जीवन सुरक्षित होगा, जब जंगल सुरक्षित होंगे तब पर्यावरण सुरक्षित होगा, जब जमीन सुरक्षित होगी तब भविष्य सुरक्षित होगा, और जब ये तीनों सुरक्षित होंगे तब सच्चे अर्थों में एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और खुशहाल भारत का निर्माण होगा।
0: बिल्कुल जागृति जी। इसलिए श्रोता साथियों, पानी बचाओ, जंगल सजाओ, जमीन सवारो, प्रकृति से प्रेम करो और सच्चे स्वराज का सपना साकार करो। इन्हीं बातों के साथ जागृति जी, अब कार्यक्रम सच्चा स्वराज से हम विदा लेते हैं, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे दोस्तों को हम कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल,

0: साथियों इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को
1: नमस्कार।

थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: जागृति बुन आपने कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदी है ये हुकी जाएंगा खेतर बंजर थी जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटले मन का कहे की पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ू जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा की नर ने खुल्लो नीर राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ू ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनों ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित है।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर
2: और आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर का प्यार भरा
3: नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
2: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
1: जी हाँ
2: कशिश और मनीषा, आज हमारी श्रोता साथियों से कार्यक्रम में बातचीत का विषय है कि स्वास्थ्य कोई लक्ष्य नहीं है, जीवन जीने का एक तरीका है। हम देखते हैं कि आज के समय में अधिकांश लोग स्वास्थ्य को एक लक्ष्य की तरह देखते हैं। कोई वजन कम करना चाहता है, तो कोई बीमारी से बचना चाहता है, तो कोई शरीर को आकर्षक बनाना चाहता है।
1: बिल्कुल।
2: लेकिन श्रोता साथियों, वास्तव में स्वास्थ्य कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसे एक बार प्राप्त कर लेने के बाद हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जा सके। स्वास्थ्य एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक जीवन शैली है जिसे हमें हर दिन अपने व्यवहार आदतों और सोच के माध्यम से अपनाना पड़ता है। स्वास्थ्य केवल बीमारी का अभाव नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से संतुलित जीवन जीने की कला है।
1: जी हाँ।
2: जिस प्रकार कशिश और मनीषा, एक पौधे को हर दिन पानी और देखभाल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार स्वस्थ रहने के लिए भी नियमित प्रयास की आवश्यकता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें करने वाले हैं। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है,
2: जी हाँ,
1: तो क्या ना दोस्तों को पहले इसी गीत के साथ मनोरंजन हम करवाएं?
0: बिल्कुल कशिश, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय आपको बता चुके और बातचीत की शुरुआत भी हो चुकी है कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि स्वास्थ्य कोई लक्ष्य नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। हम देखते हैं साथियों कि बहुत से लोग स्वास्थ्य को केवल शरीर की मजबूती से जोड़कर देखते हैं अंजलि जी, जबकि श्रोता साथियों स्वास्थ्य का जो दायरा है वो इससे कहीं ज्यादा जरूरी होता है।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, यदि व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है लेकिन मानसिक रूप से तनावग्रस्त है तो वह स्वस्थ नहीं कहा जा सकता।
1: बिल्कुल
0: स्वास्थ्य के कुछ प्रमुख आयाम होते हैं जैसे कि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य और साथ ही सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी होता है। साथियों, जब ये सभी पहलू संतुलित रहते हैं तभी व्यक्ति वास्तविक रूप से स्वस्थ माना जाता है।
2: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। यही अगर बात करें कि स्वास्थ्य लक्ष्य क्यों नहीं है,
1: बिल्कुल,
2: तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि लक्ष्य वो होता है जिसे प्राप्त करने के बाद व्यक्ति रुक जाता है।
0: बिल्कुल,
2: उदाहरण के लिए परीक्षा पास करना, नौकरी पाना या कोई प्रतियोगिता जीतना।
1: जी जी।
2: लेकिन श्रोता साथियों स्वास्थ्य ऐसा नहीं है। यदि किसी व्यक्ति ने अपना वजन कम कर लिया है और वह फिर से पुरानी आदतों की ओर लौट गया तो उसका स्वास्थ्य फिर से बिगड़ सकता है।
1: बिल्कुल।
2: इसी प्रकार श्रोता साथियों, यदि कोई व्यक्ति बीमारी से ठीक हो जाए लेकिन स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही को बरते कशिश, तो वह दोबारा बीमार पड़ सकता है अंजलि जी। इसीलिए श्रोता साथियों को कहना चाहेंगी कि स्वास्थ्य कोई मंजिल नहीं बल्कि एक निरंतर चलने वाली यात्रा है।
1: बिल्कुल मनीषा, अगर यही बात करें श्रोता साथियों से कि जीवन शैली और स्वास्थ्य का क्या संबंध है, तो श्रोता साथियों हमारी दैनिक आदतें ही हमारे स्वास्थ्य का निर्माण करती है। समय पर उठना, संतुलित भोजन करना, नियमित व्यायाम करना, पर्याप्त पानी पीना, पर्याप्त नींद लेना और सकारात्मक सोच रखना। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों, ये छोटी छोटी आदतें मिलकर स्वस्थ जीवन शैली बनाती है। स्वास्थ्य अचानक नहीं बनता मनीषा और कशिश, बल्कि रोज किए गए छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होता है।
2: जी हाँ,
1: स्वस्थ जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार संतुलित आहार होता है। कहना चाहेंगे दोस्तों कि हम जो खाते हैं वही हमारे शरीर और मन को प्रभावित करता है। ताजे फल, हरी सब्जियां, दालें, अंकुरित अनाज और पर्याप्त पानी शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं। इसके विपरीत अत्यधिक तला भुना भोजन जो होता है, जंक फूड है, मीठे पेय पदार्थ, धीरे धीरे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं।
2: हाँ।
1: इसलिए मनीषा और कशिश, श्रोता साथियों को भोजन को केवल पेट भरने का साधन न मानकर स्वास्थ्य का आधार मानना चाहिए, जो अनेक बीमारियों से बचा सकता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, साथ ही हम देखते हैं कि इसमें नियमित व्यायाम की भूमिका भी होती है। जैसे कि दोस्तों व्यायाम जो है वो केवल वजन घटाने का माध्यम नहीं होता।
1: बिल्कुल,
0: ये शरीर को सक्रिय बनाता है, रक्त संचार बेहतर करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करता है।
2: जी हाँ
0: अंजलि जी, ऐसा बताया जाता है कि व्यायाम के लिए महंगे उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती। इसमें हम तेज चलना, योग, साइकिल चलाना, दौड़ना या हल्का शारीरिक श्रम भी कर सकते हैं। ये भी श्रोता साथियों एक तरह का व्यायाम ही है।
2: बिल्कुल,
0: जो व्यक्ति नियमित रूप से शरीर को सक्रिय रखता है वह अधिक ऊर्जावान भी रहता है और स्वयं को स्वस्थ महसूस करता है।
1: बिल्कुल
2: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं और ये बातें हम आगे ही ऐसे ही जारी रखेंगे। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल,
0: तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में, आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
2: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से स्वास्थ्य कोई लक्ष्य नहीं है बल्कि जीवन जीने की एक कला है।
1: बिल्कुल,
0: यही बात आती है मानसिक स्वास्थ्य के महत्व की। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में मनीषा, मानसिक स्वास्थ्य एक बड़ी चुनौती बन चुका है। तनाव, चिंता, अवसाद और प्रतिस्पर्धा का दबाव लोगों को मानसिक रूप से कमजोर बना रहा है। इसलिए श्रोता साथियों, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए हमें सकारात्मक सोच, अनावश्यक चिंता से बचना होगा, परिवार और मित्रों के साथ समय बिताना होगा, ध्यान और योग करना होगा और अपनी भावनाओं को साझा करना होगा।
1: जी हाँ।
0: इसी के साथ श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कशिश कि स्वस्थ मन ही स्वस्थ शरीर का आधार है, इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रखने की जरूरत है।
1: जी बिल्कुल। जी हाँ दिलीप जी, तो ये तो आपने बताया मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। अब यहीं अगर पर्याप्त नींद के महत्व को हम जाने तो दोस्तों, कई लोग काम की व्यस्तता में नींद के महत्व को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि अच्छी नींद शरीर की मरम्मत और मानसिक संतुलन के लिए बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: जी हाँ, जैसे कि अगर हम श्रोता साथियों अपनी दिनचर्या में पर्याप्त नींद को शामिल करते हैं तो इससे हमारी याददाश्त बेहतर होती है।
0: बिल्कुल।
1: तनाव हमें कम होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है अंजलि जी और मनीषा, और साथ ही कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है।
2: जी हाँ,
1: इसलिए डॉक्टरों द्वारा भी ये कहा जाता है कि नींद को हमें अपने स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा मानना चाहिए।
0: जी जी।
1: और पर्याप्त नींद और पर्याप्त रूप से हमें नींद जरूर लेनी चाहिए।
2: जी बिल्कुल कशिश, यही अगर बात करें कि सकारात्मक सोच और स्वास्थ्य का क्या संबंध है, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि विचारों का हमारे स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
1: बिल्कुल।
2: सकारात्मक सोच रखने वाले लोग कठिन परिस्थितियों का सामना बेहतर ढंग से कर पाते हैं।
0: बिल्कुल।
2: वे तनाव कम महसूस करते हैं और जीवन में अधिक संतुष्ट रहते हैं।
1: बिल्कुल।
2: वहीं श्रोता साथियों, नकारात्मक सोच शरीर और मन दोनों को प्रभावित करती है, इसीलिए स्वस्थ जीवन के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ।
2: श्रोता साथियों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, परिवार, मित्र और समाज के साथ अच्छे संबंध व्यक्ति को भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करते हैं। अंजलि जी, जो लोग अपने प्रियजनों के साथ जुड़े रहते हैं वे मानसिक रूप से अधिक मजबूत होते हैं।
0: बिल्कुल।
2: अकेलापन कई बार श्रोता साथियों तनाव और अवसाद का कारण बन सकता है, इसीलिए स्वस्थ संबंध भी स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
0: बिल्कुल मनीषा, यही बात आती है तकनीक और स्वास्थ्य की। तो आज हम देखते हैं कि तकनीक ने जीवन को आसान बनाया है, लेकिन इसके साथ अत्यधिक उपयोग ने स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी बढ़ा दी है।
2: बिल्कुल।
0: लंबे समय तक मोबाइल चलाना, घंटों स्क्रीन के सामने बैठना, शारीरिक गतिविधियों में कमी, ये आदतें आंखों, गर्दन, पीठ और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है।
2: बिल्कुल।
0: इसलिए कहना चाहेंगे मनीषा और कशिश कि तकनीक का उपयोग हमें संतुलित तौर पर करना है ताकि इसके विपरीत प्रभाव जो है वो हमारे स्वास्थ्य पर ना पड़े। स्वस्थ जीवन के लिए जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है। नियमित स्वास्थ्य जांच, स्वच्छता, टीकाकरण और सही जानकारी व्यक्ति को अनेक बीमारियों से बचा सकती है।
2: जी हाँ।
0: इसलिए श्रोता साथियों, स्वास्थ्य संबंधित गलत धारणाओं और अफवाहों से बचना भी आवश्यक है। आज हम देखते हैं मनीषा और कशिश कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक वातावरण अधिक होता है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी हो सकती है। शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन तनाव, प्रदूषण और व्यस्त जीवन शैली स्वास्थ्य को प्रभावित करती है।
2: बिल्कुल।
0: दोनों ही परिस्थितियों में संतुलित जीवन शैली अपनाकर स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है।
1: जी हाँ दिलीप जी, अब यही अगर बात करें तो देखते हैं श्रोता साथियों कि स्वस्थ रहने के लिए आत्म अनुशासन भी बहुत जरूरी है।
2: जी हाँ,
1: क्योंकि सही समय पर भोजन करना, नियमित रूप से व्यायाम करना, मादक पदार्थों और नशे से दूर रहना, साथ ही अच्छी आदतों को अपनाना श्रोता साथियों, ये सभी अनुशासन का ही हिस्सा है।
2: जी हाँ,
1: अनुशासित व्यक्ति लंबे समय तक स्वस्थ और सक्रिय जीवन जी सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा अच्छा स्वास्थ्य कोई एक ऐसी मंजिल नहीं है जहाँ पहुँच कर हम रुक जाएं।
2: जी हाँ,
1: बल्कि ये जीवन जीने का एक तरीका है साथियों। स्वस्थ रहने के लिए हमें हर दिन अपने खान पान, दिनचर्या, सोच और व्यवहार पर ध्यान देना पड़ता है।
2: जी,
1: बिल्कुल। जब स्वास्थ्य हमारी आदत बन जाता है साथियों, तब जीवन अधिक सुखद, ऊर्जावान और संतुलित हो जाता है।
0: बिल्कुल।
2: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगी कि स्वास्थ्य कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसे एक बार में हासिल कर लेने के बाद श्रोता साथियों हमेशा के लिए सुरक्षित रहा जा सके, बल्कि यह जीवन भर अपनाई जाने वाली एक अच्छी आदत, संतुलित दिनचर्या और सकारात्मक सोच का परिणाम है।
1: बिल्कुल।
2: स्वस्थ जीवन के लिए महंगे साधनों की नहीं बल्कि श्रोता साथियों नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद, मानसिक शांति और आत्म अनुशासन की आवश्यकता होती है।
0: बिल्कुल।
2: यदि हम स्वास्थ्य को अपने जीवन जीने का तरीका बना ले श्रोता साथियों, तो न केवल बीमारियों से हम बच सकते हैं बल्कि खुशहाल, ऊर्जावान और संतुलित जीवन भी जी सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो इस तरीके से मनीषा और कशिश आज हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रही कि किस तरीके से स्वास्थ्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए बल्कि हमारे जीवन जीने का एक तरीका बनाकर इसे हमें स्वस्थ रखने की जरूरत है।
2: बिल्कुल,
0: आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ दिलेजी।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य और हमारी स्वास्थ्य प्रद बातें अब यही समाप्त होती है।
1: बिल्कुल,
0: हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे अच्छे स्वास्थ्य को लेकर जो हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी जी।
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
2: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: बिल्कुल,
2: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को,
2: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को,
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
0: नमस्कार।

0: ભાઈ ને બોનો, આપે ક્યારે વિચાર કર્યો હે કે જૈયા પેડ ની છાવ મેં આપણે રહ યા આપણને કેટલી શાંતિ મળે હે, જેની હવા મેં આપણે હાલ રહ ઈ ભી આપણા થકી કઈ આશ રાખે હે. હવે અગર પેડ ને રહેંગા તો આપણે હરતે જીવંગા. પ્રકૃતિ આપણી જરૂરત નથી બલ્કી આપણી જિમ્મેદારી હે. એક પેડ લગાડંગા, પાણી ને બચાડંગા ને આપણી ધરતી ને જીવનદાન આલંગા. હવે પ્રકૃતિ ને બચાવો, ભવિષ્ય ને હદારો. હવે આજે નાના નાના કદમ હે એ આબાવાળા કાલ ને બદલાવ ની શરૂઆત હે. વાગડ રેડિયો વાગધરા સંસ્થા દ્વારા જનહિત મે પ્રસારિત.
1: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार. बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू. भारतीय नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो.
0: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा. वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित.
1: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर.
2: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है.
0: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की. जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा.
1: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर.
2: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो.
0: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है. हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है.
1: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा.
0: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक.
1: वागड़ रेडियो वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित.

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर और स्वागत करती हूं आप सभी का कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर हाजिर होते हैं तो हमारा आपसे बातचीत का एक नया विषय रहता है। तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नए विषय को लेकर मेरी आपसे बातचीत होगी। दोस्तों आज हम एक ऐसे गुण को लेकर बात करने जा रहे हैं जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन जीवन की हर सफलता की नींव होता है और वो है धैर्य। साथियों आज की दुनिया तेज है, आप सभी जानते हैं, हर कोई जल्दी में है, जल्दी सफलता चाहिए, जल्दी परिणाम चाहिए, जल्दी सब कुछ चाहिए, सब कुछ जल्दी जल्दी जल्दी। लेकिन साथियों जीवन की सच्चाई तो ये है कि जो चीजें जल्दी मिलती है वो अक्सर टिकती नहीं है। धीरे धीरे चलने वाला ही श्रोता साथियों दूर तक जाता है और यही सच्ची बात है। क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं कि धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं होता बल्कि सही समय का इंतजार करते हुए अपने प्रयासों को लगातार जारी रखना होता है। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर मैं आपसे ढेर सारी बातें करूंगी। तो कार्यक्रम में मजा आएगा साथियों, क्योंकि गीत संगीत भी कार्यक्रम में रहेंगे और गीत संगीत से मुझे याद आया कि शुरुआत में भी पहले मैं आपको मनोरंजन करवाती हूँ एक गीत के साथ में। तो साथियों आज भी सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। आप सभी बने रहिएगा आपका अपना रेडियो, आपकी अपनी आवाज वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि साथियों, गीत से पहले विषय में आपको बता चुकी हूँ कि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे गुण की जो दिखता तो नहीं है लेकिन हमारे जीवन में महत्व बहुत रखता है, और वो गुण है धैर्य का गुण। साथियों, हम देखते हैं कि धैर्य का मतलब है मुश्किल समय में टूटना नहीं, परिस्थितियों के सामने हार नहीं माननी और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। लेकिन साथियों, जल्दी जल्दी नहीं, आराम आराम से, क्योंकि धैर्य वह शक्ति है जो मुश्किल समय को भी आसान बना देती है। हम देखते हैं साथियों कि जब हम अपने जीवन में धैर्य रखते हैं तो हम हर परिस्थिति को समझदारी से देख पाते हैं। हम जल्दबाजी में कभी गलत फैसले नहीं लेते श्रोता साथियों, बल्कि सोच समझकर आगे बढ़ते जाते हैं, और वो कैसे, क्योंकि हम धैर्य के गुण को अपनाते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं साथियों कि आज के समय में धैर्य के गुण की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि साथियों आप खुद ही मुझे ये बताइए कि आपने कहीं धैर्य रखने वाला व्यक्ति देखा है, और अगर देखा भी है और गलती से हमें कहीं मिल भी गया तो लोग उसे पता नहीं क्या क्या नाम से पुकारते हैं और उससे उसका धैर्य भी खत्म हो जाता है। तो श्रोता साथियों, कहने का मतलब यही है कि हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत का परिणाम हमें तुरंत मिले, हम चाहते हैं कि हमारी कोशिश सफल हो, हम चाहते हैं साथियों कि कोई भी कठिनाई हमारे रास्ते में न आए। लेकिन जीवन ऐसा नहीं होता, क्योंकि दोस्तों जो इंतजार करना नहीं जानते वे सफलता की गहराई को भी कभी नहीं समझ पाते। कई बार श्रोता साथियों, हम सिर्फ इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि परिणाम देर से मिलने वाला है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि परिणाम देर से नहीं मिलता, वह श्रोता साथियों सही समय पर मिलता है, और उस सही समय का हम इंतजार नहीं करते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है श्रोता साथियों हमारे लिए, क्योंकि धैर्य जैसा गुण हर व्यक्ति में होना चाहिए, जो कि वर्तमान में हमें कहीं नहीं देखने को मिलता। हम देखते हैं श्रोता साथियों कि धैर्य और सफलता का बहुत ही गहरा संबंध होता है, वो कैसे, तो साथियों हर बड़ी सफलता के पीछे धैर्य छुपा होता है, ऐसा हमने सुना भी है और देखा भी है। कोई भी व्यक्ति एक दिन में सफल नहीं होता श्रोता साथियों, उसके पीछे उसके कई वर्षों की मेहनत, ढेर सारे संघर्ष और कई दिनों का धैर्य होता है साथियों। और आपने सुना भी होगा कि बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है। अगर साथियों किसान बीज बोने के अगले दिन ही फल की उम्मीद करे तो क्या कभी वह सफल हो सकता है? नहीं हो सकता ना श्रोता साथियों, क्योंकि बीज बोने के बाद भी तो पौधा बनता है और पौधे के बाद पेड़ बनता है। तो अगर आपको भी अपने जीवन में सफलता चाहिए श्रोता साथियों, तो आपको धैर्य को अपने जीवन में अपनाना होगा। तो दोस्तों, जैसा कि बातें मेरी कार्यक्रम के माध्यम से आपसे बहुत अच्छी चल रही है, और हम जान पा रहे हैं कि आज के समय में धैर्य जैसे गुण की हमें कमी देखने को मिल रही है, लेकिन श्रोता साथियों हम प्रयास करेंगे, हम धैर्य को अपने जीवन में अपनाएंगे तो कह सकते हैं कि धैर्य का गुण हमें सब में देखने को मिलेगा और हम अपने जीवन में सफल भी हो पाएंगे। तो श्रोता साथियों, बातें आगे कार्यक्रम में और होंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद फिर से हम रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में और बढ़ते हैं साथियों फिर से हमारे विषय की ओर। जैसा कि हम धैर्य के गुण को लेकर बातचीत कर रहे थे और गीत से पहले हमने जाना था कि आज के समय में धैर्यपूर्ण व्यक्ति हमें बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, और अगर कहीं मिल भी गए तो लोग उन्हें ऐसे ऐसे नामों से पुकारते हैं जिससे उनका धैर्य भी खत्म हो जाता है। तो श्रोता साथियों, कहने का मतलब यही है कि धैर्य रखना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि अगर हम धैर्य को अपने जीवन में अपनाते हैं तो कह सकते हैं कि हम सफलता के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं। क्योंकि श्रोता साथियों, वर्तमान में सफल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सफलता एक ऐसी कह सकते हैं कि चीज है जिसे अगर हमने नहीं पाया या फिर हमें वो नहीं मिली तो हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारा जीवन ही बेकार है। तो कहने का मतलब यही है साथियों कि सफलता पाने के लिए आपको धैर्य की आवश्यकता होगी, और धैर्य के बारे में आपको कैसे पता चलेगा? आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो साथियों, अब जानते हैं कि धैर्य हमें क्या सिखाता है। साथियों, धैर्य हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाता है, जैसे कि हमें शांत रहना, कठिन परिस्थितियों का सामना करना और मजबूत बनना। हमें सही निर्णय लेने में भी धैर्य मदद करता है साथियों, और हमें अपनी गलतियों से सीखने का अवसर भी देता है। क्योंकि श्रोता साथियों, किसी ने सही कहा है कि धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी कमजोर नहीं होता, बल्कि वही सबसे मजबूत होता है। जब हम धैर्य रखते हैं श्रोता साथियों, तो हम हर समस्या को एक नए नजरिए से देखते हैं,

हम घबराते नहीं हैं, बल्कि समाधान ढूंढने के प्रयास करते हैं। तो श्रोता साथियों, इस तरीके से हम कार्यक्रम के माध्यम से ये जान पाए हैं कि धैर्य हमें क्या क्या सिखाता है। अब यहीं अगर बात करें धैर्य की परीक्षा की, तो साथियों जीवन में कई ऐसे पल आते हैं जब हमारा धैर्य परीक्षा में होता है। वो कैसे? तो जब मेहनत का फल हमें नहीं मिलता तो हमारे धैर्य की परीक्षा होती है। जब परिस्थितियाँ हमारे खिलाफ होती है तब भी हमारे धैर्य की परीक्षा होती है। और जब लोग हमारा साथ नहीं देते हैं, हम बिल्कुल अकेले हो जाते हैं श्रोता साथियों, तब भी धैर्य के गुण की परीक्षा होती है। ऐसे समय में दोस्तों मन करता है हार मान लेने का और ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन साथियों वही सही समय होता है जब हमें सबसे ज्यादा धैर्य की जरूरत होती है। और धैर्य अगर हमारे पास है तो हमें किसी भी चीज से घबराने की आवश्यकता तो है ही नहीं साथियों। क्योंकि दोस्तों अगर धैर्य है तो कठिन समय भी आएगा और जो कठिन समय है वो हमें धैर्य के साथ मजबूत बनाता है। अगर हम श्रोता साथियों उस समय टिक जाते हैं तो हम खुद को और मजबूत बना लेते हैं और यही हमारे धैर्य की पहचान है श्रोता साथियों। इसलिए आपसे कहना चाहूंगी कि धैर्य की परीक्षा में सफल होना बहुत जरूरी है। और जो इस परीक्षा में सफल हो गया श्रोता साथियों, तो वो तो आप समझ लीजिए कि जीवन रूपी समंदर में नैया पार हो गई। तो श्रोता साथियों कहने का मतलब यही है कि आपको अपने जीवन में धैर्य को अपनाना चाहिए, क्योंकि धैर्य ही एक ऐसा गुण है श्रोता साथियों जो आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करेगा। अब श्रोता साथियों आप ये सोच रहे होंगे कि आप धैर्य की बात तो कर रहे हैं, लेकिन धैर्य को हम अपने जीवन में विकसित कैसे करें? बिल्कुल, वो भी मैं अगर आपको बताऊं साथियों, तो धैर्य एक दिन में कभी नहीं आता, ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। इसे श्रोता साथियों धीरे धीरे विकसित करना पड़ता है। वो कैसे? तो खुद पर भरोसा रखें, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें साथियों, जल्दबाजी करने से आपको बिल्कुल बचना है और हर स्थिति को समझने की कोशिश करनी है और फिर ही प्रतिक्रिया देनी है। क्योंकि साथियों धैर्य जैसे गुण अभ्यास से आते हैं और अभ्यास ही सफलता की कुंजी होती है। इसलिए श्रोता साथियों जब हम खुद को समय देते हैं तो हम खुद के लिए बेहतर बन रहे होते हैं और जब हम बेहतर बन जाते हैं तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए साथियों याद रखें कि धैर्य वह कुंजी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। जो धैर्य रखता है वही अंत में जीतता है साथियों। आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखनी चाहिए श्रोता साथियों कि हर बड़ी सफलता के पीछे लंबा इंतजार होता है, इसलिए धैर्य रखिए, सही समय जरूर आएगा। तो श्रोता साथियों जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में हमने ये जाना कि धैर्य जीवन की सबसे बड़ी ताकत है, ये हमें मजबूत बनाता है, हमें सही दिशा देता है और हमें सफलता तक भी पहुंचाता है। तो श्रोता साथियों आपसे यही कहना चाहूंगी कि जब धैर्य और मेहनत साथ होते हैं तो सफलता निश्चित होती है श्रोता साथियों। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए साथियों, धैर्य जैसे गुण को मत खोइए, अपने लक्ष्य पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ अब मैं कार्यक्रम से विदा लेने की अनुमति चाहूंगी, क्योंकि देख रहे हैं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का और बातें भी मेरी आपसे पूरी हो चुकी हैं। तो दोस्तों विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं एक और गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, जैसा कि आप सुन रहे थे कार्यक्रम सपनों की उड़ान, और आज का हमारा विषय भी बहुत ही प्यारा सा था, धैर्य के गुण को लेकर। तो उम्मीद करती हूँ साथियों कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी मेरी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है साथियों 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक नई सोच और एक नई प्रेरणा के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। नमस्कार साथियों।

0: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
1: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
0: हिंडो स्कूल जा, आपड़े आपड़ा भी अपना पूरा करो।
1: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
1: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

भाइनो बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार कर रही है। मानी दुआ, पिता ने उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, किनकी घेरे कोई आपरो इंतजार कर रही है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था नाना अंजलि बुन हूँ था का अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदी है ये हुकी जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा। ओ अंजलि बुन एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है। होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, आज धरती माता नु संबल है। होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो। आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा। होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। भाई ने बोनो, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े नी कितली शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपने धरती ने जीवन दान आलंगा। होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो। होवे आज नाना कदम है ये अबावरा काल ने बदलाव ने शुरुआत है। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
2: नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, आज हमारी आपसे कार्यक्रम में बातचीत का विषय है रिश्ता वही है पर कहानी बदल गई है।
0: बिल्कुल।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, रिश्ते धागों से नहीं भरोसों से बंधे होते हैं। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन सबसे अधिक तब दर्द होता है जब रिश्ता वो नहीं रहता पर उसकी कहानी बदल जाती है।
0: बिल्कुल।
1: आज कार्यक्रम में हमारी आपसे इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी कि क्या हमारे रिश्तों में बदलाव आया है और क्यों ये बदलाव आ रहा है।
0: जी जी।
1: यह विषय केवल कशिश पति पत्नी माता पिता या भाई बहन तक सीमित नहीं है, यह दोस्ती पड़ोस गुरु शिष्य सहकर्मियों और हर उस रिश्ते की कहानी है जहाँ कभी अपनापन था लेकिन आज वही रिश्ता पहले जैसा महसूस नहीं होता।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो बातें ढेर सारी हम करेंगे आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों से, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत के साथ पहले हम मनोरंजन दोस्तों को करवाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो क्यों ना आज भी शुरुआत में इस गीत को सुन लिया जाए।
1: बिल्कुल। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को, आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं, रिश्ता वही है बस कहानी बदल चुकी है।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य का जीवन रिश्तों के बिना अधूरा है। जन्म लेते ही हमारा पहला रिश्ता हमारी माँ से जुड़ता है, फिर धीरे धीरे पिता, भाई बहन, मित्र, जीवन साथी, पड़ोसी और समाज में अनेक रिश्ते ऐसे बनते चले जाते हैं। साथियों, ये रिश्ते ही हमारे जीवन को अर्थ, सहारा और खुशियाँ देते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन समय के साथ अक्सर ऐसा महसूस होने लगा है कि रिश्ते तो वही हैं, पर उनकी कहानियाँ बदल रही हैं।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि रिश्ता वही है, फिर क्या बदला है। तो दोस्तों, कभी घर लूटते ही सबसे पहला हमारा सवाल रहता था कि आज का दिन कैसा रहा।
0: बिल्कुल,
1: आज वही लोग एक ही घर में रहते हैं, लेकिन बातचीत सिर्फ जरूरत सीमित के अनुसार करते हैं। कभी लोग बिना बुलाए घर आते थे, आज मिलने से पहले कई बार सोचना पड़ता है कि सामने वाले के पास समय होगा या नहीं। कभी माता पिता बच्चों के साथ बैठकर खाना खाते थे, आज एक ही घर में चार लोग चार अलग अलग कमरों में मोबाइल देखते हुए खाना खाते हैं। रिश्ते टूटे नहीं हैं, लेकिन उनमें पहले जैसे गर्माहट कम होती जा रही है।
0: बिल्कुल,
1: आज जीवन पहले से अधिक तेज हो गया है, हर किसी के पास काम और जिम्मेदारियां हैं, लक्ष्य है। लेकिन श्रोता साथियों, इस दौड़ में सबसे अधिक जो चीजें पीछे छूट रही है वह है रिश्तों के लिए निकाला जाने वाला समय।
0: बिल्कुल,
1: आज लोग अपने करियर, पैसे में असफलता और कई सारी चीजों के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन अगर सफलता की कीमत रिश्तों की दूरी बन जाए तो वह सफलता अधूरी लगने लगती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि पहले जिन रिश्तों में अपनापन, त्याग, विश्वास और साथ था, आज उनमें व्यस्तता, अपेक्षाएं, औपचारिकता और दुनिया और दूरियां बढ़ती जा रही है। देखते हैं साथियों की रिश्तों के नाम बदले हैं, लेकिन उन्हें निभाने का तरीका भी बदल चुका है।
1: जी जी,
0: इसी कारण से कि आज उनमें व्यस्तता, अपेक्षाएं और दूरियां बढ़ती जा रही है। आज लोग भीड़ में रहकर भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं अंजलि जी, और इस विषय पर विचार करना आज के समय की सबसे बड़ी सामाजिक आवश्यकता है। क्योंकि दोस्तों, हम देखते हैं कि रिश्ता हमारी असली पहचान है। रिश्ता केवल खून का नहीं होता, बल्कि विश्वास, सम्मान और अपनत्व का भी होता है।
1: बिल्कुल,
0: कोई भी रिश्ता अंजलि जी तभी मजबूत बनता है जब उसमें दोनों पक्ष एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे के सुख दुख में भी साथ खड़े रहें और बिना स्वार्थ के एक दूसरे का सम्मान करते रहें।
1: बिल्कुल कशिश, मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने दुनिया को छोटा बना दिया है। हम हजारों लोगों से जुड़े हैं, लेकिन अपने घर के लोगों से बात करने का समय कम होता जा रहा है।
0: बिल्कुल,
1: ऑनलाइन शुभकामनाएं भेजना आसान हो गया है, लेकिन किसी के सामने बैठकर उसकी बातें सुनना मुश्किल होता जा रहा है। यही कारण है कि रिश्ता वही है, लेकिन उसकी कहानी बदलती जा रही है।
0: बिल्कुल,
1: रिश्ता उम्मीदों पर टिका होता है, लेकिन जब अपेक्षाएं जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती हैं, तब शिकायतें भी बढ़ने लगती हैं।
0: जी जी,
1: आज लोग समझने से ज्यादा समझाने से ज्यादा समझे जाने की उम्मीद करते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि सामने वाला उसकी भावनाओं को समझे, लेकिन खुद दूसरे की परिस्थितियां समझने को तैयार ही नहीं होता है।
0: बिल्कुल,
1: यही से रिश्ते की कहानी बदलने लगती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, देखते थे साथियों कि पहले रिश्तों की नींव प्रेम और विश्वास पर टिकी होती थी। लोग छोटी छोटी बातों पर ही नाराज तो होते थे, लेकिन मन में दूरी नहीं आने देते थे।
1: जी जी,
0: आज परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी है। ऐसे में दोस्तों, हमें रिश्तों को महत्व देना सीखना होगा। हम देखते हैं कि पहले के रिश्ते और आज के रिश्ते में भिन्नता है। कुछ दशक पहले परिवार संयुक्त तो हुआ करते थे।
1: जी जी।
0: दादा दादी, चाचा चाची, चाची, भाई बहन सभी एक साथ रहते थे। घर में मतभेद होते थे, लेकिन मतभेद दिल में नहीं होते थे साथियों।
1: जी हाँ।
0: आज परिवार छोटे हो गए हैं, हर व्यक्ति अपने काम, करियर और निजी जीवन में इतना व्यस्त है कि रिश्तों के लिए समय निकालना कठिन हो गया है। पहले लोग मिलने जाते थे, अब केवल मोबाइल पर संदेश भेजकर अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ लेते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसी वजह से अंजलि जी, रिश्ता वही है, लेकिन उनकी कहानी पूरी तरह बदल चुकी है।
1: जी हाँ कशिश, कई रिश्ते किसी बड़ी गलती से नहीं टूटते, वे धीरे धीरे चुप्पियों के कारण कमजोर हो जाते हैं। जब लोग अपनी बातें कहना बंद कर देते हैं, जब मन की बात मन में ही रह जाती है, जब नाराज की बातचीत की जगह ले लेती है, तब रिश्ता बाहर से तो वही दिखाई देता है, लेकिन अंदर से बदल चुका होता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत विश्वास होता है।
0: बिल्कुल,
1: यदि विश्वास टूट जाए तो जोड़ना आसान नहीं होता। एक झूठ, एक धोखा, एक गलत फहमी कई वर्षों की निकटता को कमजोर कर सकती है।
0: जी हाँ अंजलि जी,
1: रिश्तों में सच्चाई और पारदर्शिता सबसे जरूरी मानी जाती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं और जान रहे हैं कि पहले के रिश्ते और आज के रिश्तों में भिन्नता कैसे देखी जा रही है, तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी क्यों ना एक और गीत के साथ यहाँ पर मनोरंजन कर ले।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ की ओर। जैसा कि आज कार्यक्रम में हम बहुत अच्छे विषय पर बातचीत कर रहे हैं कि रिश्ता तो वही है लेकिन उसकी कहानी बदल चुकी है। श्रोता साथियों, हम अक्सर कहते हैं कि समय नहीं मिलता, लेकिन सच ये है कि समय नहीं, प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। जिस व्यक्ति के लिए कभी घंटों बैठते थे, उसके लिए 5 मिनट निकालना भी कठिन लगने लगता है।
1: बिल्कुल,
0: यही बदलाव कशिश धीरे धीरे रिश्तों की कहानी बदल देता है। आज संयुक्त परिवार कम होते जा रहे हैं, बुजुर्ग अकेलापन महसूस करते हैं, बच्चे अपने माता पिता के साथ कम समय बिता पाते हैं, पति पत्नी दोनों का काम में व्यस्त रहना, ये जो सारी चीजें हैं वो परिवार के रिश्तों को बदल देती है।
1: बिल्कुल,
0: हर व्यक्ति अपने संघर्ष में इतना उलझा हुआ है कशिश के, साथ रहने के बावजूद साथ होने का एहसास कम होता जा रहा है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। और देखते हैं कि मोबाइल और इंटरनेट ने दूर बैठे लोगों को जोड़ तो दिया है, लेकिन पास बैठे लोगों के बीच दूरी बढ़ा दी है।
0: जी जी
1: साथियों, आज परिवार एक कमरे में बैठे होते हैं लेकिन हर व्यक्ति अपने मोबाइल में व्यस्त रहता है, बातचीत कम है और स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है।
0: बिल्कुल,
1: पहले त्योहारों पर लोग घर घर जाकर शुभकामनाएं दिया करते थे, अब एक संदेश सैकड़ों लोगों तक भेज दिया जाता है। तकनीक सुविधा है लेकिन साथियों, जब वो रिश्तों की जगह लेने लगे तो समस्या बन जाती है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए आज हमें ध्यान देना होगा कि उम्मीदें बढ़ी हैं, अपनापन घटा है। आज अधिकांश रिश्ते अपेक्षाओं के बोझ तले दब चुके हैं अंजलि जी।
0: जी जी,
1: लोग सोचते हैं कि सामने वाला हमारी इच्छा पूरी करे, हमारी बातें माने और हमारी भावनाओं को समझे।
0: जी जी,
1: ऐसे में जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो रिश्तों में शिकायतें शुरू हो जाती है, और जबकि मजबूत रिश्ते लेने से अधिक देने की भावना पर टिके होते हैं।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि हम देखते हैं कि पहले के समय में दोस्त वो होता था जो कठिन समय में साथ खड़ा हो। आज कई बार दोस्त लाइक, कमेंट और ऑनलाइन चैट तक सीमित होकर रह जाते हैं।
1: जी जी,
0: सच्ची दोस्ती आज भी मौजूद है लेकिन उसे निभाने के लिए समय, विश्वास और समर्पण चाहिए होता है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, क्या हर बदलता रिश्ता गलत होता है? तो नहीं, हर बदलाव बुरा नहीं होता, कुछ रिश्ते समय के साथ और मजबूत भी होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: परिपक्वता आने पर लोग एक दूसरे को बेहतर समझने लगते हैं, कम शब्दों में भी अपनापन महसूस होने लगता है। इसलिए बदलाव से डरना नहीं है, सही दिशा में बदलने की जरूरत है।
1: जी हाँ,
0: रिश्तों को बचाने के लिए हमें रोज कुछ मिनट अपने लोगों से बातचीत करनी होगी, उनकी बातों को ध्यान से सुनने की आदत विकसित करना होगा, छोटी छोटी बातों पर अहंकार नहीं लाना है, गलती होने पर माफी मांगने में संकोच भी नहीं करना है। धन्यवाद और जैसे छोटे शब्द का प्रयोग करके हम रिश्तों को बचा सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: मोबाइल से ज्यादा श्रोता साथियों, महत्व सामने बैठे व्यक्ति को हमें देना है। त्योहार, जन्मदिन और छोटे अवसर साथ मिलकर मनाने हैं, और विश्वास को कभी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि यही सारी चीजें कशिश हमारे रिश्ते को मजबूत बनाती है। अगर हम इन छोटी बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारे रिश्ते बहुत ज्यादा मजबूत बने रहते हैं और उनमें कभी भी कड़वाहट नहीं आती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। इसी के साथ हम देखते हैं कि आज हर व्यक्ति सफलता की दौड़ में लगा हुआ है। नौकरी, व्यापार, पढ़ाई और आर्थिक जिम्मेदारियों के बीच रिश्तों के लिए संभव समय कम होता जा रहा है। समय न देने के कारण दोस्तों धीरे धीरे बातचीत कम हो रही है।
0: बिल्कुल,
1: और फिर गलत फहमियां बढ़ जाती है। रिश्ते अचानक नहीं टूटते बल्कि धीरे धीरे कमजोर होते हैं। हर मजबूत रिश्ते की नींव संवाद होती है अंजलि जी।
0: जी जी,
1: आज लोग अपनी भावनाएं व्यक्त करने से बचते हैं, मन की बातें मन में ही रह जाती है, इसलिए रिश्तों को जीवित रखने के लिए नियमित बातचीत भी बहुत जरूरी है।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बैंक बैलेंस, बड़ी गाड़ी या ऊंचा पद नहीं, बल्कि वे लोग हैं जो हमारे सुख दुख में बिना किसी स्वार्थ के हमारे साथ खड़े रहते हैं।
1: बिल्कुल,
0: समय का पहिया लगातार घूमता रहता है, परिस्थितियां बदलेंगी, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, उम्र भी आगे बढ़ेगी, लेकिन यदि हम अपने रिश्ते की देखभाल करना नहीं छोड़ेंगे तो कोई भी बदलाव उन्हें कमजोर नहीं कर पाएगा।
1: जी जी,
0: रिश्तों को जीवित रखने के लिए बड़े बड़े उपहारों की आवश्यकता नहीं होती है। कभी एक सच्ची मुस्कान, कभी कुछ पल साथ बैठकर, कभी बिना किसी कारण हालचाल पूछ लेना, कभी अपनी गलती स्वीकार कर लेना भी रिश्तों में नई जान डाल देता है।
1: बिल्कुल,
0: जब हम अहंकार से ऊपर उठकर अपनापन चुनते हैं कशिश, जब रिश्ते केवल नाम के नहीं रहते बल्कि जीवन का सबसे मजबूत सहारा बन जाते करते हैं तब हमारे रिश्तों की मजबूती बनती है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए आज ही अपने किसी को हमें फोन करना है और उसके साथ बैठकर बहुत सारी बातें करनी है
1: जी,
0: और उसे एहसास दिलाना है कि आप उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि समय बीत जाने के बाद अक्सर लोग नहीं केवल यादें बचती हैं। कोशिश कीजिए कि आपकी यादों में दूरी, शिकायतें और चुप्पी नहीं, बल्कि विश्वास, सम्मान, स्नेह की खुशबू बसी रहे, और यही प्रयास है जो हमारे रिश्तों की कहानी को फिर से सुंदर बना सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। इसी के साथ अगर बात करें तो अहंकार ने रिश्तों को कमजोर किया है। साथियों, कई रिश्ते केवल इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि कोई भी पहले झुकना नहीं चाहता।
0: बिल्कुल,
1: पहले वही फोन करे, पहले वही माफी मांगे, गलती उसकी थी, ऐसी सोच रिश्तों को धीरे धीरे खत्म कर देती है। साथियों, जी जी। हम देखते हैं झुकना हमेशा हार नहीं होता, कई बार वही रिश्ते बचाने की सबसे बड़ी जीत होती है। अंजलि जी,
0: बिल्कुल।
1: इसी के साथ अगर बात करें आर्थिक बदलाव और रिश्तों की, तो पहले आर्थिक स्थिति चाहे जैसे भी हो, परिवार साथ रहते थे। आज आर्थिक सफलता कई बार रिश्तों का आधार बनती जा रही है।
0: जी हाँ,
1: धन का महत्व है, लेकिन यदि रिश्तों का मूल्य केवल पैसों से तय होने लगे तो अपनापन हम देखेंगे अंजलि जी के समाप्त होने लग जाएगा।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो श्रोता साथियों से जैसा कि कार्यक्रम में हमारी बातें चल ही रही हैं कि किस तरीके से अभी के समय में रिश्ते तो वही हैं, लेकिन उनका स्वरूप धीरे धीरे बदलता जा रहा है।
1: बिल्कुल,
0: स्वरूप को हमें कैसे सुंदर बनाना है, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखने की जरूरत है, यही सारी बातें हम श्रोता साथियों से कर रहे हैं। बातें और भी आगे निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी मन कर रहा है एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में, आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
0: और आपके अपनी साथी अंजलि पाराशर के साथ में।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि कार्यक्रम के माध्यम से विषय हमारा आपसे बातचीत का चल रहा है कि रिश्ता वही है, बस कहानी बदल चुकी है, और गीत से पहले भी हमारी बातें बहुत अच्छी चल रही थी अंजलि जी।
1: बिल्कुल।
0: इससे कि अगर आगे बात करें सोशल मीडिया की दिखावटी दुनिया की, तो आज लोग अपनी खुशियां सोशल मीडिया पर भी दिखाते हैं, लेकिन अपने घर के लोगों को बैठकर खुलकर बात नहीं करते।
1: जी जी।
0: दुनिया को खुश दिखाने की कोशिश में कई लोग अपने वास्तविक रिश्तों से दूर होते जा रहे हैं। श्रोता साथियों, रिश्ते लाइक्स और कमेंट्स से नहीं बल्कि समय और विश्वास से मजबूत होते हैं। हम देखते हैं कि पहले बच्चों के पास संसाधन कम है, लेकिन साथ बैठकर बातें करने का समय अधिक था। आज सुविधाएं बढ़ गई हैं, तो परिवार के साथ बैठने का समय भी नहीं है। ऐसे में माता पिता बच्चों के भविष्य के लिए मेहनत करते रहे और बच्चे अपने सपनों की दौड़ में व्यस्त है। श्रोता साथियों, दोनों का उद्देश्य अच्छा है, लेकिन संवाद की कमी दूरी पैदा कर रही है।
1: जी जी, बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि रिश्तों की खूबसूरती इस बात में नहीं होती कि उनमें कभी मतभेद ना आए, बल्कि इस बात में होती है कि कभी मतभेद के बाद भी मनभेद ना हो पाए। समय हर इंसान को बदलता है, परिस्थितियां हर परिवार की दिशा बदलती है, और जिम्मेदारियां हर रिश्ते की परीक्षा लेती है। लेकिन जो लोग इन सबके बीच भी एक दूसरे का साथ थामे रहते हैं, वही रिश्तों की असली ताकत को समझते हैं। किसी भी संबंध की उम्र वर्षों से नहीं, बल्कि उसमें बने विश्वास, सम्मान और अपनेपन से तय होती है।
0: बिल्कुल।
1: आज आवश्यकता इस बात की है श्रोता साथियों, कि हम अपने रिश्तों को पहले जैसा बनाने की कोशिश करें, बल्कि यह समझने की है कि आज की परिस्थितियों में उन्हें बेहतर कैसे बनाया जा सके।
0: जी,
1: हर पीढ़ी की सोच अलग होती है, हर व्यक्ति का संघर्ष अलग होता है, और हर व्यक्ति का जीवन जीने की जो गति होती है वो भी अलग होती है। यदि हम केवल अपनी बात मनवाने के बजाय सामने वाले की स्थिति को समझने का प्रयास करें, तो कई गलतफहमियां बिना किसी जय के समाप्त तो हो सकती है।
0: बिल्कुल।
1: रिश्तों को जीतने के लिए तर्कों से अधिक संवेदनाओं की आवश्यकता होती है। याद रखिए श्रोता साथियों, कि किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी हार तब नहीं होती जब लोग दूर चले जाते हैं, बल्कि तब होती है जब पास रहकर भी एक दूसरे के दर्द, खुशी और भावनाओं से अनजान हो जाते हैं। इसलिए अपने घर, परिवार, मित्रों और समाज में ऐसा वातावरण बनाएं जहां लोग बिना किसी डर के अपनी बात कह सके, बिना झिझक अपनी बांट सके, और बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे का साथ दे सके।
0: जी हाँ।
1: छोटी छोटी कोशिशें आने वाली पीढ़ियों को भी मजबूत रिश्तों की विरासत देगी।
0: बिल्कुल।
1: आज एक छोटा सा संकल्प लें कशिश हम सभी, कि हम रिश्तों में शिकायतों की जगह संवाद को देंगे, अहंकार की जगह विनम्रता को देंगे, दूरी की जगह अपनापन को, और औपचारिकता की जगह आत्मीयता को स्थान देंगे।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि जब इंसान अपने रिश्तों को समय देना सीख जाता है, तब जीवन की सबसे कठिन राहें भी आसान लगने लगती हैं। आखिरकार जीवन की सबसे सुंदर कहानी वही होती है जिसमें लोग एक दूसरे के साथ केवल अच्छे दिनों में नहीं, बल्कि हर मौसम में बड़े खड़े दिखाई दें।
0: बिल्कुल।
1: रिश्ते सिर्फ नाम के नहीं, बल्कि जीवन की सबसे अनमोल पूंजी बन जाते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, ये बात आपने सही कही, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे जीवन में रिश्तों का महत्व ही अधिक है साथियों। जैसे कि जब हम एक सच्चे मित्र के रिश्ते की बात करते हैं, तो सच्चा मित्र जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है।
1: बिल्कुल।
0: पहले दोस्त कठिन समय में सबसे पहले साथ खड़े होते थे, आज सोशल मीडिया पर हजारों मित्र हो सकते हैं, लेकिन संकट की घड़ी में कुछ ही लोग साथ दिखाई देते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए मित्रों की संख्या नहीं, गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है। आज पति पत्नी दोनों कामकाजी हो सकते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, ऐसे में यदि दोनों एक दूसरे को समय, सम्मान और सहयोग देंगे, तो रिश्ता मजबूत बनता है अंजलि जी।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन यदि केवल शिकायतें और तुलना बढ़ जाए, तो दूरियां आना स्वाभाविक है। हम कह सकते हैं श्रोता साथियों, कि रिश्तों का रुख आज बदल रहा है। यह क्यों बदल रहा है? क्योंकि समय की कमी है, अत्यधिक अपेक्षाएं हैं, संवाद की कमी है, और रिश्तों की जगह अहंकार ने ले ली है।
1: बिल्कुल कशिश।
0: तुलना की आदत बढ़ चुकी है अंजलि जी। सोशल मीडिया का प्रभाव देखा जा रहा है, क्षमा करने से ज्यादा कह सकते हैं कि लोगों में अहंकार है, क्षमा करने की क्षमता कम हो रही है, परिवार के साथ कम समय बीत रहा है, और संवाद की भी कमी है। तो इस तरीके से अंजलि जी, ऐसा कहा जा सकता है कि हमें अपने रिश्तों को बचाना चाहिए।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि जब रिश्ते मजबूत होंगे, तभी हमारा जीवन मजबूत होगा।
1: जी हाँ कशिश, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम हमारे श्रोता साथियों को ये बात समझाना चाहेंगी। ये कहानी का नाम है पुरानी डायरी का आखिरी पन्ना।
0: जी
1: हाँ श्रोता साथियों, एक छोटे से शहर में दो बहनें रहती थी, सिया और नेहा। बचपन में दोनों एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त थी। स्कूल जाना हो, खेलना हो, पढ़ाई करनी हो या कोई शरारत करनी हो, दोनों हमेशा साथ ही रहती थी। उनकी माँ अक्सर मुस्कुराकर कहती थी, तुम दोनों का रिश्ता कभी नहीं बदलेगा। समय बीतता गया, पढ़ाई पूरी हुई, फिर दोनों की शादी हो गई। अब दोनों अलग अलग शहरों में रहने लगी। शुरुआत में रोज फोन होता था, फिर सप्ताह में एक बार, फिर महीने में एक बार, और धीरे धीरे बातचीत सिर्फ त्योहारों और जन्मदिन तक ही सीमित रह गई।
0: बिल्कुल।
1: एक दिन कशिश पिता की तबीयत खराब हो गई। दोनों बहनें मायके पहुंची। घर तो वही था, आंगन वही था, दीवारें भी वही थी, लेकिन उनके बीच पहले जैसी हंसी नहीं थी। बातें हो रही थी पर उनमें अपनापन कम और औपचारिकता ज्यादा थी। घर की सफाई करते समय सिया को एक पुरानी डायरी मिली, वह उसकी माँ की थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारा रिश्ता बदल गया है तो ये मत सोचना कि प्यार खत्म हो गया है। अक्सर प्यार वही रहता है, बस उसे जताने का समय तरीका बदल जाता है।
0: बिल्कुल।
1: रिश्ते तब नहीं टूटते जब लोग दूर हो जाते हैं, रिश्ते तब टूटते हैं जब कोई भी पहले कदम बढ़ाने को तैयार नहीं होता। दोनों बहनों ने वह पन्ना पढ़ा और कुछ पल के लिए चुप हो गई। उनकी आंखों में आंसू थे, उन्हें एहसास हुआ कि उनके बीच कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई थी, बस व्यस्तता, जिम्मेदारियां और पहले वह फोन करे जैसे सोच ने दूरी पैदा कर दी।
0: बिल्कुल।
1: धीरे से सिया का हाथ पकड़कर कहा, हमारा रिश्ता तो आज भी वही है, बस उसकी कहानी बदल गई थी। क्या हम फिर से पहले जैसे नहीं बन सकते?
0: बिल्कुल।
1: सिया मुस्कुराई और बोली, कहानी बदली है लेकिन उसका अंत अभी हमारे हाथों में है।
0: जी
1: उस दिन के बाद दोनों ने एक नियम बनाया, चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, हर रविवार आधा घंटा सिर्फ एक दूसरे के लिए होगा। धीरे धीरे पुरानी हंसी लौट आई, बच्चों में भी अपनापन बढ़ा और परिवार फिर से पहले जैसा लगने लगा। तो श्रोता साथियों, ये कहानी हमें सीख देती है कि रिश्ते अचानक नहीं बदलते, वे छोटी छोटी अनदेखियों, अधूरी बातों, बढ़ती दूरियों से बदलते हैं। लेकिन जिस तरह दूरी धीरे धीरे बढ़ती है, उसी तरह प्यार, संवाद और थोड़ा सा समय देकर रिश्तों को फिर से खूबसूरत भी बनाया जा सकता है।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि रिश्ता वही रहता है, बस कहानी को नया और बेहतर मोड़ देने का फैसला हमें करना होता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि रिश्ता जो है वो हमारे लिए एक सबसे बड़ी पूंजी होती है। समय के साथ परिस्थितियाँ, सोच और जीवन शैली बदलती रहती है, लेकिन रिश्तों का महत्व कभी कम नहीं होता।
1: जी हाँ।
0: लेकिन दोस्तों, आज के इस आधुनिक युग में यह कहना बिल्कुल उचित है कि रिश्ता वही है, बस कहानी बदल रही है।
1: बिल्कुल।
0: यानी कि रिश्ते तो पहले जैसे है ही अंजलि जी, बस उन्हें निभाने का तरीका, भावनाओं की अभिव्यक्ति और जीवन की परिस्थितियाँ बदल रही है।
1: जी जी।
0: जैसा कि हमने हमारे साथियों को पहले भी बताया कि पहले के समय में परिवार संयुक्त हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में परिवार का स्वरूप बदल चुका है और एकल परिवार बढ़ चुके हैं। दोस्तों, तकनीक ने भी रिश्तों की कहानी बदल दी है। पहले जो लोग हैं वो पत्र लिखा करते थे, अपने सुख दुख साझा करते थे मिलकर, लेकिन आज मोबाइल, वीडियो कॉल और सोशल मीडिया के माध्यम से पल भर में बातचीत हो जाती है। संवाद का माध्यम बदल गया है, लेकिन अपनापन और स्नेह की आवश्यकता आज भी उतनी ही है अंजलि जी।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो जैसा कि कार्यक्रम में बातें ढेर सारी चल रही हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें हम श्रोता साथियों के साथ कर रहे हैं, ये बातें निरंतर आगे और भी यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो आइए साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की और आपको कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि इंसान अपने काम, सफलता और उपलब्धियों से पहचान जरूर जाता है, लेकिन उसे जीने की ताकत उसके रिश्ते देते हैं। जब जीवन में कठिन समय आता है तब धन, पद और प्रतिष्ठा एक सीमा तक ही साथ निभाती है कशिश, जबकि अपने लोगों का विश्वास, एक स्नेह भरा स्पर्श और कुछ दिलासा देने वाले शब्द टूटे हुए मन को फिर से खड़ा कर देते हैं।
1: जी हाँ,
0: रिश्तों की देखभाल करना कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं बल्कि जीवन को अर्थपूर्ण बनाने का सबसे सुंदर निवेश है। हमें यह समझना होगा कशिश कि हर रिश्ता समय के साथ नए दौर से गुजरता है।
1: बिल्कुल,
0: बचपन की निश्चितता, युवावस्था की व्यस्तता और बढ़ती जिम्मेदारियों के बीच रिश्तों का स्वरूप बदलना स्वाभाविक है, लेकिन यदि इन बदलावों के बीच सम्मान, संवेदनशीलता और संवाद जीवित रहे तो कोई भी परिस्थिति रिश्तों की जड़ों को कमजोर नहीं कर सकती।
1: बिल्कुल,
0: रिश्तों को बचाने के लिए चमत्कार नहीं बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें ही काफी होती हैं। एक हालचाल पूछ लेना, किसी की बात धीरे से सुनना, बिना कारण मुस्कुरा देना, सब अपने ही हाथों होता है।
1: बिल्कुल,
0: हम अपने जीवन में यह संकल्प ले श्रोता साथियों कि किसी भी रिश्ते को अहंकार, गलतफहमी या अनकहे शब्दों की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। यदि कोई अपना रूठ गया है तो पहल करके उसे मनाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। यदि कोई अकेला महसूस कर रहा है तो उसके लिए समय निकालेंगे। यदि किसी रिश्ते में दूरी आ गई है तो उसे किस्मत मानकर स्वीकार नहीं करेंगे बल्कि उसे फिर से जोड़ने का साहस सिखाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: मजबूत रिश्ते अपने आप नहीं

0: बनते उन्हें हर दिन प्रेम, विश्वास और धीर से सींचना पड़ता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। हम देखते हैं साथियों कि हमें अपने रिश्तों को बचाना होगा, जैसे कि रोज कुछ समय हमें परिवार के साथ बैठना है, बातचीत करनी है। मोबाइल से अधिक लोगों को महत्व दे साथियों, छोटी छोटी बातों पर माफ करना सीखे और संवाद बनाए रखे।
0: बिल्कुल,
1: दूसरों की बात ध्यान से हमें सुननी चाहिए अंजलि जी, और साथ ही धन्यवाद और क्षमा जैसे शब्दों का उपयोग करना चाहिए। तुलना से बचना है और मुश्किल समय में साथ खड़े रहना है श्रोता साथियों।
0: जी हाँ,
1: क्योंकि यदि परिवार मजबूत होंगे तो समाज भी मजबूत होगा। बच्चों को केवल अच्छी शिक्षा देना ही काफी नहीं है, अच्छे रिश्तों का महत्व भी सिखाना होगा। बुजुर्गों का सम्मान, माता पिता का आदर, मित्रों का विश्वास और पड़ोसियों के साथ सहयोग साथियों, ये सभी स्वस्थ समाज की पहचान है।
0: बिल्कुल बिल्कुल कशिश, क्योंकि समय हर कहानी का नया अध्याय लिखता है, लेकिन उस अध्याय का स्वरूप हमारे व्यवहार से तय होता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए कोशिश कीजिए श्रोता साथियों कि आपके कारण किसी रिश्ते में उम्मीद जगे, किसी चेहरे पर मुस्कान लौटे और किसी दिल को ये भरोसा मिले कि दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, कुछ अपने ऐसे हैं जो हर परिस्थिति में साथ खड़े रहेंगे।
1: बिल्कुल,
0: यही रिश्तों की सबसे बड़ी जीत है और यही परिवार की सबसे बड़ी ताकत और यही एक खुशहाल समाज की सबसे मजबूत नींव भी होती है।
1: जी हाँ,
0: रिश्ते की असली पहचान उसके सुनहरे दिनों से नहीं बल्कि कठिन समय में निभाए गए साथ से होती है। जीवन में आना बदलाव तय होता है, उम्र बदलेगी, परिस्थितियां बदलेंगी, जिम्मेदारी बढ़ेगी और लोगों की प्राथमिकताएं भी बदलेंगी। लेकिन यदि दिलों में अपनापन, व्यवहार में सम्मान और संबंधों में ईमानदारी बनी रहे कशिश, तो कोई भी बदलाव रिश्तों की नींव को हिला नहीं सकता।
1: बिल्कुल,
0: रिश्तों को जीवित रखने के लिए बड़े वादों की नहीं बल्कि छोटे छोटे सच्चे प्रयासों की आवश्यकता होती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, क्योंकि रिश्ते केवल नाम से नहीं चलते साथियों, उनका एक आधार होता है, जैसे कि विश्वास जो हर संबंध की नींव है, सम्मान अंजलि जी जो रिश्तों को स्थायी बनाता है, संवाद जो गलतफहमियों को दूर करता है, त्याग और धैर्य जो कठिन परिस्थितियों में रिश्तों की रक्षा करते हैं, क्षमा श्रोता साथियों जो टूटे हुए संबंधों को फिर से जोड़ सकती है। हम देख सकते हैं कि जहाँ ये गुण होते हैं वहाँ रिश्ते समय की हर परीक्षा में सफल होते हैं।
0: जी हाँ,
1: क्योंकि रिश्ते पेड़ की जड़ों के समान होते हैं साथियों, जड़ें दिखाई नहीं देती फिर भी पूरा वृक्ष उन्हीं के सारे खड़ा रहता है।
0: जी हाँ,
1: ठीक उसी प्रकार रिश्तों में प्रेम, विश्वास और त्याग हमेशा दिखाई नहीं देते, लेकिन वही जीवन को स्थिरता और शक्ति प्रदान करते हैं। आज कहानी इसलिए बदली है क्योंकि पहले लोग रिश्तों के लिए समय निकालते थे और अब समय मिलने पर रिश्तों को याद करते हैं।
0: जी हाँ,
1: पहले लोग अपनों को समझने का प्रयास करते थे, आज कई बार उन्हें बदलने का प्रयास कर रहे हैं। यही परिवर्तन रिश्तों की कहानी को एक नया रूप देता है अंजलि जी।
0: जी बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो यही श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि हमें ये स्वीकार करना होगा कि हर रिश्ता कभी न कभी परीक्षा के दौर से गुजरता है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे समय में ये तय करना हमारे हाथ में होता है कि हम शिकायतों की दीवार खड़ी करेंगे या समझदारी का पुल बनाएंगे। अक्सर एक सच्ची माफी, एक खुली बातचीत और एक छोटा सा कदम वर्षों की दूरियों को मिटा सकता है।
1: बिल्कुल,
0: जीतने की कोशिश रिश्ते पर नहीं बल्कि रिश्तों के लिए होनी चाहिए।
1: जी हाँ,
0: आज से हम अपने जीवन में यह बदलाव लाएं कि किसी अपने के मन में यह भावना कभी न आने दें कि वह अकेला है या उसकी अहमियत कम हो गई है। अपने रिश्तों को समय दें, उन्हें सुने, उन्हें समझे और समय समय पर यह एहसास दिलाते रहें कि हमारे जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है ये रिश्ते। क्योंकि जब अपने साथ होते हैं तो संघर्ष भी आसान लगता है, सफलताएं कई गुना अधिक हमें मिलती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से आज हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी हैं, और हम देख रहे हैं कि समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे दोस्तों को हम यहाँ पर एक और गीत सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम से विदा लेना चाहेंगे। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: तो दोस्तों, लिख ली, इसी के साथ हम हमारे इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं। तो दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेश्वर को। नमस्कार।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर, और स्वागत करती हूं दोस्तों आप सभी का कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश को लेकर हम रोज़ाना हाजिर हो जाते हैं सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। इसी बीच श्रोता साथियों, आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे कार्यक्रम में नए हैं और आप भी अपनी फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं, हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ज़रूर पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, हमें इंतज़ार रहेगा आपकी फरमाइश गीतों का। अब जैसा कि कार्यक्रम में फरमाइशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो मैं अनुमति चाहूँगी पहली फरमाइश की ओर बढ़ने की। दोस्तों, पहली फरमाइश आई है गंजुटवारा उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है नदिया के पार। गीत के बोल है, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं मास्टर खिल्लो परवेज, बेगम इमराना नार, नाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी, राधा नामदेव जी। इसी बीच हमारे और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं लखनपुर छत्तीसगढ़ से, विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा मीना, अश्विल विपुल कामड़े जी। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं खरगोन मध्य प्रदेश से, तिलोक चंद्र वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, अमित वर्मा, समरराज आर्यन, आरोही ऐशिका, श्वेता वर्मा जी। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा चेतन, सुलोचना भगत। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं रतलाम से जुड़ना चाह रहे हैं जगदीश धाकड़ जी, रंजुबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़। करेली बरेली से हैं मोहम्मद आमिर अंसारी, नशीन अंसारी, शमा अंसारी, शमीम अंसारी, माहिनूर अंसारी जी। इसी बीच गंजुड़वारा से जुड़ रहे हैं मोहम्मद यासिन आशमी, तेज नाजमा, बेगम आशमी, तौशीफ आशमी, तैमूर आशमी, कलीम अंसारी जी। तो आइए दोस्तों, मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल है, कौन दिशा में लेके चला रे बटुया।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत है गंजुटवाला से आया है। फिल्म का नाम है आज का अर्जुन, गीत के बोल हैं गोरी हैं कलाइयाँ। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी और शब्बीर कुमार जी ने। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं मोहम्मद याशिन हाशमी, तैमूर हाशमी, कलीम अंसारी जी। इसी बीच हमारे और भी श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं। आपको नाम बताना चाहूँगी। जफराबाद से हैं सुधाकर राजे यादव, प्रशांत राजे यादव, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणय देशमुख, सर्वत देशमुख, सानवी देशमुख, हर्षदा देशमुख। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में। अमरावती महाराष्ट्र से हैं प्रवीण हांगोड़े, योगिता हांगोड़े, प्रियाली हांगोड़े, पार्थ हांगोड़े और समस्त हांगोड़े परिवार सदस्यगण। भाऊपुर मड़ियाहू जौनपुर से हैं इरशाद अमन अंसारी, कामरान इरशाद, अरमा इशराज और नवेद इरशाद, हजरत तबस्सुम जी। बनारस से जुड़ रहे मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी, आफिया परवीन जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं और भी दोस्त जो पसंद करते हैं इसी गीत को। पंडरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशा शिंदे, शिव शिंदे, कृष्णा घोड़के जी। रोहिदास चौक पंडरपुर शहर से हैं रशा शिंदे, प्रशांत शिंदे, कृष्णा घोड़के। बागपत से हैं आसिफ अली खान, मोमिन अनाज, मुस्कान सादिक अली खान, सारिक अली खान। उत्तर प्रदेश से जुड़ना चाह रहे सुरेश चौरसिया, सरोज चौरसिया, सरोज चौरसिया जी, सुबोध चौरसिया जी। कश्मीर से फैजारा मेराजुद्दीन, नजमुद्दीन, क्वासिरुद्दीन। श्रोता साथी नवाज शहर से हैं सुरेंद्र सांधो, नीता सांधो, रोहित सांधो, ऋषेश सांधो, शिक्षा सांधो, प्रतीक्षा सांधो और मेक्स जी। मजनू कटेला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत के साथ में मनोरंजन करते हैं। गीत के बोल हैं गोरी है कलाइयाँ। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे भी चाहे है दोस्तों, बताना चाहूँगी कौका भिलाई से। फिल्म का नाम है हिना। गीत के बोल हैं, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। लता मंगेशकर जी और सुरेश वाडकर जी ने इसे आवाज़ दी है। साथियों, फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं उत्तम सिंह जंगेल, मोरल संगेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंगेल, नंदनी जंगेल, अमित जंगेल, शकुन, आरुषि, ओशिका आदित्य, अंजलि जंगेल। पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं बलकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, प्रहलाद वर्मा, ज्योति वर्मा, मुरली अमित वर्मा। और भी दोस्त हमारे इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। परमा टॉकिश नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लव शाह, प्रकर शाह, कुशल शाह, नितेश शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन जी शाह, राजेंद्र जी शाह, सुषमा कपूर जी। इसी बीच हमारे और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं। हरियाणा से हैं जसवीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, कमरजीत कौर। लाहौलड़ा जिला बागपत से जुड़ना चाह रहे हैं जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनेश देवी जी, अर्जुन भारती, अंजलि जी, नितिन जगमोहन, सुधर नूतन, शिष्पाल अकेला जी, भुवनेश्वरी देवी जी। दिल्ली से जुड़ना चाह रहे हैं रामनाथ प्रजापति, सुमन देवी जी। इसी बीच बागपत से हैं अब्दुल सत्तार अब्बासी, अब्दुल मेहराब अब्बासी जी। गाजियाबाद से हैं शिष्पाल अकेला जी, तेजपाल प्रजापति जी। बोरखेड़ा पितरामल से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मया कमौड़त, चेतन नाटा, दिलीप सिंह पंवार, दीक्षा कुश मूणत जी। तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंत श्रीवास, करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक श्रीवास, बेबी आशीष श्रीवास। छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमू, मानस राज। तो आइए श्रोता साथियों, मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे भी चाहिए है श्रोता साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगी। फिल्म का नाम है दोस्तों सरगम, गीत के बोल हैं डफली वाले डफली बजा। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में, आपको बताना चाहूंगी दोस्तों जुड़ रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंत श्रीवास, करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक श्रीवास, बेबी आयुष श्रीवास। छत्तीसगढ़ से हैं मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमू, मानस राज। इसी बीच श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं कौरपे बेलतरा छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमू, मानस राज। और भी दोस्त बाबा कुटीर रायगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं शिव कुमार सोच चौहान, संक्रांति चौहान, आशिक चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष चौहान। गंजुटवाड़ा से श्रोता साथी इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाहते हैं शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी जी। गेडिया झारखंड से हैं मोहम्मद यासिन अंजान, सावा नवाज, असन नवाज, बाबू अहट, मिफरा नवाज, बेबी चाहत। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज किंतरपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी, दिशा गोस्वामी जी। साथियों पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन जी। जाखोद राजस्थान से शंभुदाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुनलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा खटक। नेहरू चौक पैठन से सुरेश जाधव, अनिता जाधव, आरती पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव। जराना शहर से सोमनाथ, गीता जाधव, ओम सुभाष चंदन, एकनाथ जाधव, संगीता जाधव। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, न्यूटन लक्ष्मण मल्होत्रा, लाडोकल मल्होत्रा, नानक चल मल्होत्रा। रोहतक से पीयूष सिक्का, कुनिका डुक्कू, कोयल सिक्का, भाविका सिक्का जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं डफली वाले डफली बजा।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है सदर बाजार कुरावली से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों राम लखन। गीत के बोल हैं, तेरा नाम लिया तुझे याद किया। सदर बाजार कुरावली से श्रोता साथी इस गीत को सुनना चाह रहे हैं अनिल कुमार वर्मा, माँ देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनित कुमार वर्मा, सोनम वर्मा जी, आजाद नगर अक्सर हरिद्वार से ताज मदनसारी, गुलाम शाबी रही महराज जहां, और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं बटापरा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा।

बघेल साहिल भारती बघेल, महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े वकील वाल्मीकि धाड़े, निनाजी धाड़े सपिल धाड़े अजय खिरोड़कर। इसी बीच बक्सर बिहार से श्रोता साथी जोड़ रहे हैं सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुरित रमेश साहू जी। डुमराव बिहार से डब्ल्यू अंसारी, सोनम अरीबा, दानिश अंसारी जी। गोलबाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य, परमानंद आर्य। सरिमपुर से बक्सर से हैं राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी जी। कुम्भार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिका दले, जीविका दले, सनिका दले। पुनावलेपुरे से अजय सोनवने, करिश्मा अविका सोनवने, विशाखा मंगलकर जी। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार। साथी जुड़ रहे हैं बाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेसर साहू, करण राहुल साहू, चंपा साहू। नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवाड़कर, निमल नवाड़कर, विशाल नवाकर। मलकापुर से नारायण इंग्लिश, सोपान ताडे, आशीष मुहेरकर जी। बिहार कॉलोनी से जुड़ना चाह रहे तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चेतन मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से राहुल, रचिता खुराना, केशवरी दान खुराना जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, तेरा नाम लिया तुझे याद किया।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है दोस्तों, बताना चाहूंगी। फिल्म का नाम है आशा। गीत के बोल है, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। फरमाइश करता है इस गीत से जुड़ना चाह रहे हैं मलोट से रमेश कुमार जाजोरिया, गीतरानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू जी। इसी बीच और भी दोस्त अंबाला से जुड़ना चाह रहे हैं रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका गुरकिरत सिंह राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल। सदर बाजार बिलड़ा राजस्थान से जुड़ना चाह रहे हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल है, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

श्रोता साथियों, जैसे कि फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम के माध्यम से बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छी फरमाइशी कार्यक्रम के माध्यम से हम श्रोता साथियों पूरी कर रहे हैं और जान रहे हैं। इसी बीच बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश चाहिए धनौरी तेलेवाला उत्तराखंड से। फिल्म का नाम है बादल, गीत के बोल हैं जुगनी जुगनी। बताना चाहूंगी श्रोता साथियों, फरमाइश इस गीत के साथ जुड़ रहे हैं कर्ता जो हैं निशा सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयन बाबू जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं झारखंड से अब्बास आलम, अमजद अली, लाडली, निशा और सभी सदस्यगण। किशोरनगर अमरावती से हीरावन शिंदे, शीला देवी शिंदे, सिद्धार्थ गुणा ने, अर्चना ताई गुणा ने। कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी प्रतीक्षा, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रतिमेश चंदन, संतोष पांडुरंग कुम्हार जी। सहारनपुर से सैयद मसूर, साइना अक्सा, नाबमिया, आफिया इब्राहिम जी। तो आइए दोस्तों मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं जुगनी जुगनी। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, मैं हाजिर हो चुकी हूँ कार्यक्रम आपकी फरमाइश को लेकर अपनी नियत समय पर एक नई प्यारी सी फरमाइश के साथ। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त अंजलि पारेश्वर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश जो है 11 से 1 बजे तक चलता है। इसी बीच आप आपके फरमाइशों के गीतों को हमें व्हाट्सएप SMS के माध्यम से भेज सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9460051234। जैसा कि 12 बज चुकी है और मैं आपके साथ जुड़ चुकी हूँ और आप अभी फरमाइशों का गीत सुन रहे हैं। फिल्म का नाम है बादल, गीत के बोल हैं जुगनी जुगनी। तो साथियों आप बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर के साथ में।

साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, जुगनी जुगनी। अगली फरमाइश आई है, गीत के बोल है, परदेसी परदेसी जाना नहीं। फरमाइश करता है इस गीत की कलारून से है नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, और भी दोस्त हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं। साथियों, सिंधी बुजुर्ग महाराष्ट्र से हैं किशोर वड़तकर, शुभम वड़तकर, पुन्नू वड़तकर। सहारनपुर से हैं जोन, रोची, पर्ल और विलेश। जमशेदपुर से हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया। अनुरोध करता है साथियों इस गीत के साथ जुड़ रहे हैं। राहुल नगर अमरावती से हैं सिद्धार्थ गोडानी, अर्चना गोडानी, प्रणय प्रसिद्धि, हीरामन शिंदे जी। लोरबी चचेरी छत्तीसगढ़ से हैं कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ मरावी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आपकी फरमाइश किस गीत को। गीत के बोल है परदेसी परदेसी जाना नहीं।

साथियों, अगली फरमाइश आई है। गीत के बोल हैं, हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। इस गीत को आवाज़ दी है अलका याग्निक, उदित नारायण और अनु मलिक ने। फरमाइश करता है इस गीत की, छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से हैं, राजेश सेन, सुरेखा सेन, शुभम सेन, अक्षय सेन। छत्तीसगढ़ से हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। श्रीरामपुर महाराष्ट्र से हैं नासिर शेख, नाजा नासिर, शाजी शाहिया। अहमदनगर से हैं जुनेद मुजावर, सबिहा मुजावर, मिखाइल, जैनब मुजावर। राहुल बंसोड़ा, सम्यक शरण बंसोड़ा, मीरा बंसोड़ा, लुबिन नगर अकोला से हैं ये। महाराष्ट्र से रुपेश संगे, महेश संगे, प्रगेश संगे, प्रीति संगे, पूरा संगे परिवार। अनारकली बाजार जंगराव पंजाब से हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मनोत्रा, गव्या मनोत्रा, भाई सूचा सिंह पाठक। बीड़शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर भट्टी, संगीता कट्टे, साक्षी, महेश्री मैतरे, जयश्री मैतरे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय और पीपी कुलथी। गोविंद वैष्णव, पूनम वैष्णव, मुस्कान वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद दागी, यह नरसिंहगढ़ राजगढ़ मध्य प्रदेश से हैं। तो आइए साथ ही सुनते हैं आपकी फरमाइश किस गीत को। गीत के बोल हैं, हमें तुमसे हुआ है प्यार।

साथियों, अगली फरमाइश आई है गीत के बोल हैं ये गलियां ये चौबारा। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने और फिल्म का नाम है प्रेम रोग। फरमाइश करता है इस गीत की मुरादाबाद दुलापुर उत्तर प्रदेश से हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राशाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह। बुलंदशहर से मुंबई से दिब्बासी, निकस परवीन अब्बासी, सरनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अरजान, अबानपुर अब्बासी परिवार। उत्तम नगर दिल्ली से हैं भूतराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश। पतरोड से विजय अम्बाडकर, सुनीता अम्बाडकर, अक्षय अम्बाडकर, ऋषिकेश अम्बाडकर और राधिका अम्बाडकर। गगनदीप धादी और तृप्ता कुमारी, प्रियंका, प्रशांत प्रीमियम, वामिका और वाणी धादी। आकोट से विनायक बिंडी, श्रीमती मंगला बिंडी, शुभम बेड़े, पवन जनीरे और संजीव डाबे राव। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आपकी फरमाइश किस गीत को। गीत के बोल हैं ये गलियां ये चौबारा।

साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, ये गलियां ये चौबारा प्रेम रोग फिल्म का। इसी बीच अगली फरमाइश आई है, गीत के बोल है हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, फिल्म का नाम है सड़क। फरमाइश करता है इस गीत की गनगुला दातागंज बदायूं से है इशरात खान, शहबाज खान, रहूब खान, सावरीन बेगम, शहबाज खान, शेफ खान, ईशान खान, आजम खान, अरहान खान। अमरावती से हैं हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर, पूरा रामेकर परिवार। जमशेदपुर से हैं तस्नीम कोशर, इशिता सहानी। तिलैया से हैं सोनम। बरकाना से हैं नाजीनी अफजल और इफितार। हनुमानगढ़ से हैं भाई प्रेम सिंह बड़वार, सुखवीर काजल, लखवीर बड़वार, रानू कृष्णा, श्रीमती छिंदू, प्रवीण शीतल, नवीन रंगीला, निशान अनमोल, चटकू मटकू। कालेगांव जराफाबाद से हैं सुधाकर राजे यादव, प्रशांत राजे यादव, सचिन प्रथमेश, प्रणाली सरवत, सानवी और हर्षदा देशमुख। पोटियाकला दुर्ग से हैं संजय शाहू, सुजाता शाहू, शशांक शाहू, सीमा शाहू। और भी दोस्त हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में। उत्तराखंड से हैं उमा सिंह, श्रीमती महेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि बन्नी, आरुष, शौर्य, दिनेश। शाबाजगंज चौराहा यूपी से हैं सुरेश चौरसिया, श्रीमती सरोज चौरसिया, सुबोध सलोनी, संजू लल्ला, बाबू शिवा चौरसिया, शिवानी, पवन और योगेंद्र नाथ। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आपकी फरमाइश किस गीत को। गीत के बोल हैं हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते।

साथियों, अगली फरमाइश आई है गीत के बोल हैं सुना सुना। फरमाइश करता है इस गीत के जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश ककनीजा, पूनम ककनीजा, विशाल प्रिया, दिशानी, निमित हुचा, और भी दोस्त हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं। साथियों, महाराष्ट्र से हैं हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर, रुचिका रामेकर, रामेकर परिवार के सभी सदस्य। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं छन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रंजन शाहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास और भी साथी हैं जो जुड़ रहे हैं। डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, अजमाना अंसारी, शबनम बानू। बक्सर से हैं राज एसडी अंसारी, फातमा नास। दिल्ली से हैं डॉक्टर सोनम, डॉक्टर अदीबा, और छत्तीसगढ़ से हैं प्रभा रानी। बिहारी कॉलोनी दिल्ली से हैं तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन। चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु और रियान खुराना। और भी दोस्त हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं। साथियों, भिलाई से हैं बेगम अनुश्री, प्रदीप, राजश्री, प्रमिला प्रदीप। रायगढ़ से हैं जानवी डोनिम, पिंकी और दीपा डोनिम। लोहार से हैं फर्जी हरिशंकर बेलदार, फर्जू प्रभा रानी। रायगढ़ से हैं उमा राज, जगदीश राज। तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंत शिवास, करुणा शिवास, आयुष शिवास, वीक शिवास, आयुषु शिवास, मोहन श्री राज, अनीता राज, सुमित, सोमू मानस राज। और भी दोस्त हैं जो जुड़ रहे हैं। गुनोर लोनी से है नसीमुल इस्लाम गुनोरी, प्रकाश वीर राजपूत। बालोद से हैं कमलेश जयपुरिया। खंडवा से हैं पिंकी, मिंकी, शिंकी, रिंकी। रायगढ़ से हैं लालचंद्र मिश्रा, रमेश चंद्र, कुमकुम मिश्रा। बुलंदशहर से हैं नरेंद्र कुमार डॉन, सरिता बन्ना, प्रभा बन्ना, डॉली और अंजलि डॉम। बालोद से हैं सुनील कुमार, आशा देवी। राजनांदगांव से हैं रविशंकर जयपुरिया, प्रभा फर्जी, विक्रम, सचिन, सतीश, योगेश। हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं ये। संभाजी नगर से हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आपकी फरमाइश किस गीत को। गीत के बोल हैं सुना सुना।

साथियों, अगली फरमाइश आई है। फिल्म का नाम है मोहब्बती। गीत के बोल है, चलते चलते यहीं रुक जाता हूँ मैं। फरमाइश करता है इस गीत की सरगुजा मेन पार्ट से हैं प्रभा डोनीम, प्रमिला डोनीम, आशा, अनीशा और पूरा डोनीम परिवार। छत्तीसगढ़ से हैं रमेश कुमार शाहू, मीरा देवी, गंगा देवी, मिश्री देवी शाहू। अनुरोध करता है। डुमराव से है राज एस डी अंसारी, नसरीन अंसारी, वल्लीउल्लाह अंसारी। दिल्ली से है अजीम वकार। लोहार से है प्रभा रानी बेलदार, कुमारी दुर्गा बेलदार, शंकर देव बेलदार। मोहाली पंजाब से है बबन मनोत्रा, ओम प्रकाश मनोत्रा। महाराष्ट्र से है मास्टर विठल सुरोशी, सुषमा सुरोशी, परिधि सुरोशी, मायरा सुरोशी। महाराष्ट्र से है अनिल कुमार घोड़की, वैशाली अनिल, प्रचक्ता घोड़की, वैष्णवी घोड़की, गायत्री घोड़की, यज्ञेश घोड़की। जौनपुर से है इरशाद अहमद अंसारी, कमरान इरशाद, अरमान इरशाद, नावेद इरशाद, अजरा तबस्सुम। बनारस से है मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी, आफिया परवीन। सरधना मेरठ से है अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवम जैन, अंश जैन, आदि जैन, भव्य जैन, मेरठ से ही है ये। फाजिलका पंजाब से है भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाडी खेड़ा, विशाल खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा। बिहार से है उमाराज, पवन उमा, संजय उमा, दीपक उमा, कमल उमा। खंडवा से है राधिका, अनीता, सपना, राकेश थाई। रायगढ़ से है निशा डोनीम, उमा डोनीम, जानवी डोनीम। सहारनपुर से है देवशंकर यादव, प्रभा रानी यादव, सुरेश यादव और नरेंद्र यादव। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरविंदर सिंह चावला, श्रीमती बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, बीबी वेदही जोशी, बीबी हंसिका जोशी, कुमारी अंकिता जोशी। खंडवा मध्य प्रदेश से हैं अब्दुल गफार डाबर जी। झारखंड से हैं अब्बास आलम, अजमत अली, निशा और सभी मित्रगण उनकी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आपकी फरमाइश के इस गीत को। यही हमारे फरमाइश कार्यक्रम का अंतिम गीत है।

श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागुर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।

श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाक रेडियो 90.8 FM और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट। साथियों, अब वक्त है शाम के खास कार्यक्रमों का, जो आपके हर पल को बनाएगा खास। तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए आज के शाम के कार्यक्रम की रूपरेखा। साथियों, शाम 5 बजे शुरू होगा कार्यक्रम आराधना, भक्ति शांति और सुकून से भरे सुरों के साथ दिन भर की थकान को अलविदा कहने का समय। इसी के साथ अगला कार्यक्रम होगा शाम 5:30 पर युवाओं की आवाज, जहां सपने बोलते हैं, विचार उड़ान भरते हैं और युवा अपनी बात खुलकर रखते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी आपकी रेडियो साथी जागृति भट्ट यानी कि मैं और कशिश पाराशर। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है श्रोता साथियों शाम 6 बजे कार्यक्रम सच्चा बचपन। इसे लेकर आएंगे हमारे रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे बच्चों की मासूमियत, मुस्कान और बचपन की यादों से भरा प्यारा सा सफर। अगली कड़ी में हमारा कार्यक्रम है खेतीबाड़ी, इसे आप सुन पाएंगे 6:30 पर। ये कार्यक्रम किसानों के काम की बात, जमीन से जुड़ी सच्ची जानकारी और अनुभव है। इसे लेकर आएंगे हमारे रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी कि मैं। श्रोता साथियों, जैसे कि कार्यक्रम की रूपरेखा चल रही है तो हम अगला कार्यक्रम आपको बताते हैं। अगला कार्यक्रम शुरू होगा 7 बजे और इस कार्यक्रम का नाम है सच्चा स्वराज। साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे समाज, सोच और सच्चाई से जुड़ी आवाज जो हमें जागरूक बनाती है। अगली कड़ी में हमारा कार्यक्रम होगा हमारा स्वास्थ्य, जो कि सेहत और सम्मान की बातों के साथ होगा। इसे आप सुन पाएंगे 7:30 पर। इसे लेकर आएंगी आज कशिश पाराशर और हमारे रेडियो साथी मनीषा पटेल। अगली कड़ी में हमारा कार्यक्रम है सपनों की उड़ान, इसे आप सुन पाएंगे 8 बजे। तो श्रोताओं, जैसे कि कार्यक्रमों की रूपरेखा मैं आपको बता रही हूँ तो अंत में आप सुनेंगे 9:00 शाम कसले। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सुनेंगे अल्फाज जो छू जाए, एहसास जो ठहर जाए, सुकून भरी रात की शुरुआत। तो श्रोताओं, शाम की घड़ियां यूं ही नहीं गुजरती, ये वो पल है जहाँ भक्ति भी है, युवा सोच भी है, बचपन की हंसी भी है, किसान की मेहनत भी है, सच की आवाज भी है, सेहत और सम्मान की बात भी है, संगीत का जादू भी है और गजलों का सुकून भी है। यही है हमारी शाम और यही है हमारा वागर रेडियो। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना से।

जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पद पर दूसरे पद के विषय में कोई निर्णय करना ही पड़ता है और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, ना केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, अनिश्चय से भर जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। अधिकतर निर्णय हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं, केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है। किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। स्वयं विचार कीजिएगा।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाइयों बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: भाई ने बोलो, आप इकारे विचार करियो है कि जैया पेड़ की छाव में आपने रह हूं या आपने ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपने हाल हूं, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है।
1: होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपने हरते जीवंगा।
0: प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना ना कदम है ये आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
0: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
2: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था।
4: नाना अंजलि बोन, हूँ था का?
1: अरे जागृति बोन, आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
4: ओ अंजलि बोन, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
1: होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
4: होवे अंजलि बोन, आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बावारी पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
1: होवे होवे जागृति बोन, आपड़े भाई बोनो ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
0: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज सुनने वाले सभी साथियों को आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी आदत की जो चुपचाप हमारे सपनों, हमारी प्रतिभा और हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करती रही है।
0: बिल्कुल,
1: हम अक्सर इसे आलस से समझ लेते हैं, लेकिन सच ये है श्रोता साथियों कि कई बार टालमटोल आलस से नहीं होता बल्कि डर का एक रूप होता है। कई बार हम काम इसलिए नहीं टालते कि हम आलसी हैं, बल्कि इसलिए टालते मनीषा क्योंकि हमें असफलता का डर होता है, आलोचना का डर होता है, या फिर ये डर होता है कि कहीं हम अपेक्षाओं पर खरे न उतर पाए।
0: जी हाँ,
1: तो कशिश आज के इसी महत्वपूर्ण विषय पर हमारी विस्तार से चर्चा रहने वाली है हमारे श्रोता साथियों के साथ में, लेकिन शुरुआत में हम सुनना चाहेंगे कार्यक्रम का पहला गीत।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आइए युवा साथियों सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं, टालम टोल आलस नहीं बल्कि यह डर का संकेत है।
1: बिल्कुल।
0: कशिश और जागृति जी, हम देखते हैं कि हम सभी ने जीवन में कभी न कभी किसी काम को टालने की आदत का अनुभव किया है। परीक्षा की तैयारी हो, किसी प्रतियोगिता का फॉर्म भरना हो, नया व्यवसाय शुरू करना हो या जीवन का कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो,
1: जी
0: अक्सर हम काम को कल पर छोड़ देते हैं। श्रोता साथियों, समाज में ऐसे लोगों को आलसी समझ लिया जाता है, लेकिन मनोविज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो हर बार टालम टोल का कारण आलस नहीं होता। जागृति जी,
1: जी
0: कई बार इसके पीछे असफलता का डर होता है। कशिश, आलोचना का डर होता है और अस्वीकार किए जाने का डर होता है।
1: बिल्कुल।
0: स्वयं पर विश्वास की कमी छिपी होती है। साथ ही हम देखते हैं कि आज के युवाओं में यह समस्या तेजी से बढ़ रही है। सोशल मीडिया, बढ़ती प्रतिस्पर्धा, सफलता के दबाव ने युवाओं के मन में अनेक प्रकार के भय पैदा कर दिए हैं।
1: बिल्कुल।
0: परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि वे कई अवसरों को खो देते हैं। इसीलिए श्रोता साथियों, यह समझना हमारे लिए आवश्यक है कि टालम टोल केवल समय की बर्बादी नहीं बल्कि यह मन के भीतर छिपे हुए डर का संकेत हो सकती है।
2: बिल्कुल मनीषा, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये बताना चाहेंगे कि टालम टोल का मतलब किसी जरूरी काम को जानते हुए भी बात के लिए छोड़ देना। श्रोता साथियों, मनोवैज्ञानिक का मानना है कि टालम टोल का संबंध केवल समय प्रबंधन से नहीं है बल्कि भावनाओं से भी होता है।
1: बिल्कुल।
2: कशिश, जब कोई काम हमें कठिन लगता है, जब उसमें असफल होने की संभावना दिखती है या जब हमें लगता है कि लोग हमारा मूल्यांकन करेंगे, तब मन डरने लगता है।
1: बिल्कुल।
2: ये डर हमें उस काम से दूर भागने के लिए प्रेरित करता है। मनीषा, हम काम नहीं करते और कुछ समय के लिए राहत महसूस करते हैं, लेकिन बाद में वही काम और बड़ा बोझ बन जाता है।
1: बिल्कुल।
2: तो श्रोता साथियों, आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि डर से भागना आसान है, लेकिन सफलता का रास्ता सामना करने से जरूर बनता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। अब यही बात ये आती है कि यह टालम टोल और आलस्य वास्तव में एक जैसे हैं। दोस्तों, आलस्य और टालम टोल दो अलग अलग बातें होती हैं। आलसी व्यक्ति आमतौर पर काम करने की इच्छा ही नहीं रखता, वह मेहनत से बचना चाहता है। जागृति जी,
2: जी हाँ।
1: लेकिन जो टालम टोल करने वाला व्यक्ति होता है वह अक्सर काम तो करना चाहता है क्योंकि वह जानता है कि काम महत्वपूर्ण है।
2: बिल्कुल।
1: उसके मन में उसे पूरा करने की इच्छा भी होती है साथियों, फिर भी वह उसे शुरू नहीं कर पाता। देखते हैं कि इन दोनों बातों का अंतर ही हमें ये बताता है कि टालम टोल केवल आलस्य नहीं है। कई बार साथियों, व्यक्ति घंटों तक उस काम के बारे में सोचता रहता है जिसे उसे करना है,
2: जी हाँ।
1: लेकिन फिर भी वह उस कार्य को शुरू नहीं कर पाता है। जागृति जी,
2: बिल्कुल।
1: हम देखते हैं कि इसका कारण उसकी मानसिक स्थिति होती है, न कि केवल काम चोरी।
0: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम बात करें कि असफलता का डर ही वो टालम टोल के पीछे छुपा हुआ डर क्यों है। तो हम देखते हैं कि श्रोता साथियों, यह टालम टोल का सबसे बड़ा कारण है। कई युवा सोचते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी। श्रोता साथियों, इन्हीं सवालों के कारण वे काम शुरू नहीं कर पाते।
1: बिल्कुल।
0: उन्हें लगता है कि प्रयास न करना असफल होने से बेहतर है, लेकिन यह सच है कि प्रयास न करना सबसे बड़ी असफलता है।
2: जी हाँ मनीषा, क्योंकि कई लोग हर काम बिल्कुल परफेक्ट करना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि जब तक सब कुछ आदर्श नहीं होगा तब तक शुरुआत नहीं करेंगे।
1: बिल्कुल।
2: यही सोच कशिश उन्हें शुरुआत करने से रोक देती है। सच्चाई ये श्रोता साथियों कि दुनिया का कोई भी बड़ा काम शुरुआत में परफेक्ट नहीं होता। हर सफलता छोटे और अपूर्ण कदमों से ही शुरू होती है। समाज में बहुत से लोग दूसरों की राय से प्रभावित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने कुछ नया किया और गलती हो गई तो लोग क्या कहेंगे।
1: बिल्कुल।
2: यही सोच उन्हें अपने सपनों पर काम करने से रोक देती है श्रोताओं।
1: जी
2: लेकिन
1: हाँ।
2: इतिहास गवाह है कि हर बड़े बदलाव की शुरुआत आलोचना के बीच ही हुई है। जो लोग दुनिया बदलते हैं वे दूसरों की नकारात्मक बातों से नहीं रुकते हैं।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि हम युवा साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से बात कर रहे हैं कि टालम टोल आलस्य नहीं बल्कि इसका मतलब डर भी हो सकता है।
2: बिल्कुल।
1: तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर सुनते हैं अभी एक प्यारा सा गीत।
2: बिल्कुल
0: बिल्कुल कशिश, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और हमारी बातें चल रही थी कि तालम टोल आलस्य नहीं, इसका मतलब है डरना। इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए श्रोता साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि समाज में बहुत से लोग दूसरों की राय से प्रभावित हो जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: मनीषा और कशिश, उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने कुछ नया किया और गलती होगी तो लोग क्या कहेंगे। यही सोच उन्हें अपने सपनों पर काम करने से रोक देती है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन श्रोता साथियों, जैसा कि हम बार बार आपको बताते हैं कि इतिहास गवाह है कि हर बड़े बदलाव की शुरुआत आलोचनाओं के बीच ही होती है। जब व्यक्ति खुद पर भरोसा नहीं करता तब भी टालमटोल शुरू हो जाती है। उसे लगता है कि वो ये काम नहीं कर पाएगा। वो अपनी क्षमताओं को कम आंकने लगता है। धीरे धीरे ये सोच आदत बन जाती है और व्यक्ति अवसरों को खोने लगता है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए याद रखिए, आत्मविश्वास काम करने से बढ़ता है, इंतजार करने से नहीं।
2: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ अगर बात करें पूर्णता की चाह की, तो देखते हैं कि कई युवा हर काम को बिल्कुल परफेक्ट करना चाहते हैं।
1: बिल्कुल।
2: क्योंकि वे ऐसा सोचते हैं कि जब तक सब कुछ सही नहीं होगा मैं शुरुआत ही नहीं करूंगा।
1: बिल्कुल।
2: लेकिन दोस्तों, पूर्णता की यह चाह अक्सर शुरुआत को ही रोक देती है। आप याद रखिए कि पूर्णता

0: लोग सफलता से भी डरने लगते हैं जागृति जी।
1: जी जी,
0: उन्हें लगता है कि सफलता मिलने के बाद उनकी जिम्मेदारियां हैं वे और बढ़ जाएंगी, लोग उनसे अधिक अपेक्षाएं रखने लगेंगी, इसीलिए वे अनजाने में अवसरों को टालने लगते हैं।
2: और हम कह सकते हैं मनीषा कि कई बार हम ये समझ नहीं पाते कि हम किस बात से डर रहे हैं। इसलिए श्रोता साथियों, सबसे पहले खुद से सवाल पूछिए कि क्या मुझे असफलता का डर है, क्या मुझे लोगों की राय का डर है, क्या मुझे गलती करने का डर है, क्या मुझे सफलता की जिम्मेदारियों का डर है।
1: जी हाँ
2: श्रोताओं, जब हम डर को पहचान लेते हैं तब उससे लड़ना आसान हो जाता है। और ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको किए, आज जो प्रश्न किए, वो खुद से एक बार जरूर पूछिएगा, तभी हमारा जो डर है वो निकल पाएगा और हम आलस्य करना भूल जाएंगे।
1: बिल्कुल,
2: डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका होता है कशिश, छोटे छोटे कदम उठाना। यदि कोई काम बहुत बड़ा लग रहा है श्रोताओं, तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए।
1: जी हाँ, जी
2: हाँ। एक एक कदम आगे बढ़ाइए, धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और डर कम होता जाएगा।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज का समय डिजिटल युग का समय है। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स और मनोरंजन के अनगिनत साधन युवाओं के सामने उपलब्ध हैं। दोस्तों, इनका संतुलित उपयोग लाभदायक है हमारे लिए, लेकिन वहीं जब इसका हम ज्यादा उपयोग करते हैं तो ये टालम टोल की भावना को बढ़ावा देता है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि इस चीज के ढेर सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि लगातार मोबाइल का उपयोग करना, जिसके कारण हमारा ध्यान भटक जाता है। समय प्रबंधन की कमी भी रहती है जागृति जी, लक्ष्य हमारे स्पष्ट नहीं हो पाते हैं, आत्मानुशासन की कमी देखी जाती है और इससे फिर दूसरों से तुलना की भावना भी हमारे अंदर आ जाती है।
2: बिल्कुल
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, कह सकते हैं कि यदि इस आदत को समय रहते नहीं बदला जाए तो इसके ढेर सारे गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं, जैसे कि इसका शिक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है। जो हमारे युवा छात्र हैं जागृति जी, वो पढ़ाई को टालते रहते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि परीक्षा में तनाव ज्यादा बढ़ जाता है, अंक कम आते हैं तो निराशा उत्पन्न हो जाती है, जिससे हमारे युवा साथियों का आत्मविश्वास घट जाता है।
0: बिल्कुल कशिश, साथ ही हम श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि पूर्णता पर नहीं प्रगति पर ध्यान दें। हर कार्य को परफेक्ट बनाने की कोशिश छोड़िए साथियों, गलतियां सीखने का हिस्सा हैं।
1: बिल्कुल,
0: सफल लोग पूर्ण नहीं होते हैं बल्कि लगातार सुधार करने का प्रयास करते हैं। श्रोता साथियों, हर दिन अपने डर को लिखिए, अपने मन में मौजूद डर को कागज पर लिखिए। अक्सर लिखने पर पता चलता है जागृति जी कि हमारा वास्तविक डर क्या है।
2: बिल्कुल, और इसी के साथ हम एक उदाहरण हमारे श्रोता साथियों को बताना चाहेंगे कि एक युवक है जो हमेशा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने की सोचता है कशिश
1: जी। जी जी,
2: हर बार किताब खुलता है मनीषा और फिर बंद कर देता है। उसे लगता था कि शायद वो सफल नहीं होगा। समय बीतता गया और वो तैयारी टालता रहा। एक दिन श्रोता साथी उसके शिक्षक ने कहा, तुम पढ़ाई नहीं टाल रहे, तुम अपने डर से भाग रहे हो। ये बात उसके दिल को छू गई। उसने उसी दिन से रोज केवल एक घंटा पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे एक घंटा दो घंटे में कब बदल गया पता ही नहीं चला।
1: बिल्कुल,
2: कुछ वर्षों बाद वही युवक परीक्षा में सफल हुआ। उसने समझ लिया था कि समस्या उसकी क्षमता नहीं थी बल्कि उसका डर था।
1: बिल्कुल,
2: इसलिए कहा गया है कि डर से लड़ने वाला ही मंजिल तक पहुंचने वाला बनता है।
1: जी हाँ
2: साथियों, आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसा काम है जिसे आप बार बार टाल रहे हैं, तो खुद को आलसी मत कहिए। एक बार रुक कर ये समझने की कोशिश कीजिए कि कहीं उसके पीछे कोई डर तो नहीं छिपा।
1: बिल्कुल,
2: हो सकता है कि हमें असफलता का डर हो सकता है हमें गलती करने का डर हो सकता है कि हमें आलोचना का डर हो, लेकिन याद रखिए, डर कोई दीवार नहीं है, वो केवल एक परछाई है। और परछाई तब तक बड़ी लगती है जब तक हम उसकी ओर कदम नहीं बढ़ाते।
1: बिल्कुल,
2: आज अपने मन से एक वादा कीजिए श्रोता साथी इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आप डर को अपनी पहचान नहीं बनने देंगे।
1: जी
2: हाँ, कोशिश करेंगे, सीखेंगे, गिरेंगे, संभलेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जीवन में जीत उन्हीं को मिलती है जो डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हम टालम टोल को केवल आलस से मान ले तो ये समस्या की जड़ को समझने से इनकार करने जैसा कार्य है।
2: बिल्कुल
1: जी हाँ। दोस्तों, अधिकांश मामलों में टालम टोल के पीछे कोई ना कोई डर तो छिपा होता ही है, जैसे कि असफलता का डर हो, आलोचना का डर हो या पूर्णता की चाह का डर। दोस्तों, जब हम अपने डर को पहचानते हैं, उसका सामना करना सीखते हैं, तब टालम टोल धीरे धीरे समाप्त होने लगता है।
2: बिल्कुल,
1: ऐसे में हमारे युवा साथियों के लिए समझना बहुत जरूरी है मनीषा और जागृति जी, कि सफलता का मार्ग कार्य करने से बनता है, केवल सोचने से नहीं।
0: बिल्कुल,
1: डर को श्रोता साथियों अपने सपनों का पहरेदार मत बनने दीजिए, पहला कदम उठाइए, क्योंकि सफलता उन लोगों के पास ही आती है जो शुरुआत करने का साहस रखते हैं।
0: बिल्कुल,
1: आज का काम आज ही कीजिए, क्योंकि कल कभी नहीं आता।
0: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि युवावस्था सपनों को साकार करने का समय है। यदि इस उम्र में डर और टालमटोल की आदत बना ली जाए तो जीवन में हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते और जो अवसर है वो हमारे हाथ से निकल जाते हैं। युवा साथियों, हमेशा याद रखिए

0: चाहिए। साहस का अर्थ डर का नहीं होना नहीं है, साहस का अर्थ है डर के बावजूद आगे बढ़ना।
1: बिल्कुल।
0: पहला कदम हमेशा श्रोता साथियों कठिन लगता है, शुरुआत छोटे छोटे कदमों से करें लेकिन उसका प्रभाव बड़ा होता है। हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे प्रयास से ही होती है।
2: बिल्कुल मनीषा, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवा साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है और अब हम देख रहे हैं जागृति जी की समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: जी हाँ,
2: तो विदा तो युवा साथियों हम जरूर लेंगे कार्यक्रम से, लेकिन कार्यक्रम के दस्तूर को निभाते हुए पहले सुनते हैं अंतिम गीत।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेना चाहेंगे। अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि डर के कारण जो रुक गया वो मंजिल से दूर रह गया। जो डर की आंखों में आंखें डालकर आगे बढ़ गया वही सफलता का हकदार बन गया।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए श्रोता साथियों, डर से मत हारो, खुद पर विश्वास करो। आज का कदम छोटा हो सकता है लेकिन यही कदम कल की आपकी सबसे बड़ी जीत की शुरुआत बनेगा।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, यही है आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज का संदेश। टालम टोल को आलस्य मत समझिए, उसके पीछे छिपे डर को पहचानिए और अपने जीवन की दिशा बदल दीजिए।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बातें बहुत सारी हो चुकी हैं और हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बहुत अच्छा संदेश भी दिया है। उम्मीद करते हैं कि ये संदेश आप अपने जीवन में उतारेंगे और आप भी इन आदतों से छुटकारा पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
2: इसी के साथ दोस्तों आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
1: और आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल
2: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
3: नमस्कार।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ दोस्तों आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। कशिश, आज हमारे कार्यक्रम में श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है कि समय की बर्बादी से क्या छूटता है और किस तरीके से टाइम टेबल और अनुशासन बच्चों के लिए जरूरी है।
0: जी बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि समय बहुत ही अनमोल और सीमित संसाधन है। एक बार जो समय बीत गया वो फिर कभी वापस नहीं आता। श्रोता साथियों, बच्चों के लिए यह समय जीवन की नींव रखने का काल होता है, लेकिन जब बच्चे समय का सही उपयोग नहीं करते तो कई जरूरी चीजों से वंचित रह जाते हैं। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि समय की बर्बादी केवल पढ़ाई में पीछे रहने तक सीमित नहीं, बल्कि ये पूरे व्यक्तित्व के विकास को भी प्रभावित करती है।
0: बिल्कुल।
1: तो आज कार्यक्रम में हम यही जानेंगे कि समय की बर्बादी से क्या क्या छूटता है और क्यों टाइम टेबल और अनुशासन बच्चों के जीवन के लिए जरूरी है।
0: जी हाँ दिले जी, तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्या ना इसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोताओं को गीत सुनवाए हम पहले।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहेंगे हम कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि समय की बर्बादी से क्या छूटता है और बच्चों के लिए अनुशासन और टाइम टेबल का क्या महत्व है और ये क्यों जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समय जो है वो मनुष्य जीवन के लिए सबसे बड़ा मूल्यवान धन है। यह न किसी के लिए रुकता है और न किसी के लिए वापस लौटता है।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, बच्चों के जीवन में समय की विशेष भूमिका होती है क्योंकि यही वह समय होता है जब उनका भविष्य आकार लेता है। हम देखते हैं कि यदि इस अमूल्य समय का सही उपयोग किया जाए तो जीवन में सफलता सुनिश्चित होती है। साथियों,
1: बिल्कुल
0: इसके विपरीत अगर हम बात करें तो समय की बर्बादी अगर की जाए तो जीवन में पछतावा, असफलता और निराशा ही हाथ लगती है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही हमारे श्रोता साथियों को बताना चाहेंगे कि समय की बर्बादी से क्या क्या छूटता है। तो श्रोता साथियों, पढ़ाई और ज्ञान का नुकसान, यानी कि समय बर्बाद करने से बच्चे पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: समय पर पाठ याद न करने से परीक्षा में खराब परिणाम आते हैं। अधूरी शिक्षा आत्मविश्वास की कमी और भविष्य की कठिनाइयों का कारण बनती है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कशिश के बिना समय का सही उपयोग किए बच्चे अपने लक्ष्य नहीं तय कर पाते। पढ़ाई, खेल या कला, हर क्षेत्र में समय का अभ्यास जरूरी है।
0: जी जी,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि समय पर तैयारी न होने के कारण बच्चे प्रतियोगिताओं, स्कॉलरशिप और अन्य अवसरों से भी वंचित रह जाते हैं। काम अधूरे रहने से आत्मग्लानि होती है और बच्चों में आत्मविश्वास कम हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कशिश के समय का दुरुपयोग बच्चों को आलसी और लापरवाह बना देता है।
0: जी हाँ।
1: उन्हें आदत हो जाती है टालम टोल की, जो भविष्य में उनके लिए बाधक बनती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। दोस्तों, समय की बर्बादी का सीधा असर बच्चों के शारीरिक, मानसिक और शैक्षणिक विकास पर पड़ता है। जब बच्चे अपना कीमती समय टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया या फिर कोई अन्य निरर्थक गतिविधियों में गंवाते हैं तो कई महत्वपूर्ण चीजें छूट जाती हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि अंजलि जी आपने बताया कि वे पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं, आत्मविश्वास की उनमें कमी हो जाती है और इनका उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है।
1: जी हाँ।
0: दोस्तों, देखते हैं कि जब बच्चे सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताते हैं तो इससे उनकी नींद प्रभावित होती है, जिससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है। साथ ही सपनों से भी दूरी उनकी बनती है, यानी कि जो लक्ष्य उन्होंने तय किए होते हैं वे अधूरे रह जाते हैं और जीवन लक्ष्यहीन सा प्रतीत होने लगता है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही बात करें कि बच्चों के लिए टाइम टेबल क्यों जरूरी है। तो श्रोता साथियों, टाइम टेबल से बच्चों को पता होता है कि किस समय क्या करना है।
0: बिल्कुल,
1: इससे पढ़ाई, खेल, विश्राम और मनोरंजन सब संतुलित रहते हैं। हम देखते हैं कि एक निश्चित समय पर सोना, उठना, पढ़ना और खेलना बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाता है।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि समय के अनुसार पढ़ाई करने से विषय अच्छी तरह समझ में आता है और स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। टाइम टेबल कशिश बच्चों को अपने लक्ष्य की ओर नियमित रूप से बढ़ने में मदद करता है और जब काम समय पर होता है तो परीक्षा या अन्य जिम्मेदारियों के साथ तनाव भी नहीं होता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, अब यही अगर बात करें अनुशासन की तो दोस्तों, अनुशासन का भी बच्चों के जीवन में एक अलग ही महत्व है। देखा जाता है कि अनुशासन जीवन की रीढ़ मानी जाती है। बच्चों

0: के लिए ये विशेष रूप से इसलिए जरूरी है क्योंकि वही उनके चरित्र, सोच और व्यवहार की नींव रखती है। देखते हैं कि अगर बच्चे अनुशासित हैं तो उनके जीवन में नियमितता आती है। अंजलि जी, अनुशासित बच्चा हर कार्य को समय पर करता है जिससे उसकी आदतें मजबूत होती है।
1: बिल्कुल।
0: कर्तव्यों की समझ बच्चों में आती है जिससे बच्चों को अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का एहसास रहता है। अनुशासन जीवन में आत्मविश्वास, संयम और संयोजन लाता है साथियों, जिससे बच्चों के सकारात्मक सोच का विकास होता है।
1: बिल्कुल।
0: अनुशासन से बच्चों में दूसरों के प्रति आदर, सहयोग और सहनशीलता के गुण भी देखे जाते हैं जो कि समाज में उनके सामाजिक व्यवहार को दर्शाता है। दोस्तों, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने वाले लोग हमेशा अनुशासित होते हैं जिससे हम देखते हैं कि बच्चों का भविष्य भी सफलता पर ही टिका होता है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है। आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हम जान रहे थे कि समय की बर्बादी से क्या क्या छूटता है और किस तरीके से बच्चों के लिए टाइम टेबल और अनुशासन का महत्व है। और जैसा कि हम अनुशासन को लेकर गीत से पहले बात ही कर रहे थे, तो श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि अनुशासन बच्चों को खुद पर नियंत्रण रखना सिखाता है, जिससे वे गलत संगत, सोशल मीडिया और अन्य व्यसनों से बच पाते हैं। अनुशासन से बच्चे समय पर कार्य करना, बड़ों का आदर करना और जिम्मेदारी निभाना सीखते हैं।
1: जी हाँ।
0: कशिश इतिहास गवाह है कि जो व्यक्ति अनुशासित रहा वही सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा है।
1: बिल्कुल।
0: अनुशासित बच्चे समाज के नियमों का पालन करते हैं और अच्छे नागरिक बनते हैं। अब यही बात करें कशिश के बच्चों को समय प्रबंधन, टाइम टेबल और अनुशासन कैसे सिखाएं, तो बड़े बच्चे जो है वो बड़ों को देखकर सीखते हैं।
1: बिल्कुल।
0: यदि अभिभावक और शिक्षक समय का आदर करते हैं तो बच्चे भी ऐसा करने लगते हैं। बच्चों को अपनी दिनचर्या खुद तय करने दें और उसी अनुसार कार्य करना सिखाएं। दीवार पर टाइम टेबल चिपका दें ताकि वह हमेशा सामने रहे, तो बच्चों को दिखता रहेगा और बच्चे नियम अनुसार अपनी पढ़ाई को पूरी तरीके से करेंगे।
1: बिल्कुल।
0: यह देखना होगा हमें कि बच्चा टाइम टेबल का पालन कर रहा है या नहीं। अच्छे प्रदर्शन पर प्रोत्साहन दे और गलती पर प्यार से हमें समझाना है।
1: जी हाँ।
0: श्रोता साथियों, केवल पढ़ाई पर जोर न दें बल्कि खेल, टीवी, रचनात्मक कार्य के लिए भी समय दें। अनुशासन का मतलब सख्ती नहीं बल्कि व्यवस्था है। बच्चों को इसका उद्देश्य भी हमें समझाना है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, क्योंकि हम देखते हैं कि समय की बर्बादी बच्चों के उज्जवल भविष्य को अंधकार में ढकेल सकती है। साथियों, जो बच्चे समय का सम्मान करते हैं वे जीवन में कभी भी असफल नहीं होते हैं। साथ ही दोस्तों, टाइम टेबल और अनुशासन बच्चों को न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि पूरे जीवन में एक मजबूत नींव प्रदान करेगा।
0: बिल्कुल कशिश।
1: ये जरूरी है अंजलि जी कि बच्चों को बचपन से ही समय का सही उपयोग करना, दिनचर्या का सही पालन करना और अनुशासन में रहना सिखाया जाए, ताकि वे एक सफल, संस्कारी और सशक्त नागरिक बन सके।
0: बिल्कुल।
1: दोस्तों, हम जानते हैं कि समय वह अध्याय है जो हर रोज लिखा जाता है। बस हमें यह तय करना है कि हम उसमें क्या लिख रहे हैं, सफलता या फिर पछतावा।
0: बिल्कुल कशिश, हम कह सकते हैं कि समय की बर्बादी बच्चों के उज्जवल भविष्य को धुंधला बना सकती है, लेकिन यदि बच्चे समय का महत्व समझे, टाइम टेबल बनाकर चले और अनुशासित जीवन अपनाएं, तो वे न केवल अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं बल्कि एक सफल, सम्मानित और संतुलित जीवन भी जी सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: आज यदि हमने बच्चों को समय और अनुशासन का मूल्य सिखाया, तो कल का उनका हर क्षण सफलता की कहानी कहेगा। श्रोता साथियों, बचपन वह समय है जब नींव मजबूत रखी जाती है और समय ही वह ईंट है जिससे भविष्य की इमारत तैयार होती है। अगर बच्चे समय को समझदारी से नहीं अपनाते तो न केवल पढ़ाई में पिछड़ते हैं बल्कि आत्मविश्वास, लक्ष्य और जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों से भी दूर हो जाते हैं। श्रोता साथियों, टाइम टेबल और अनुशासन बच्चों को ये सिखाते हैं कि हर चीज का एक समय होता है, पढ़ाई, खेल, विश्राम और मनोरंजन सभी के लिए। एक सुव्यवस्थित दिनचर्या न केवल पढ़ाई को आसान बनाती है बल्कि बच्चों को तनाव मुक्त और संतुलित बनाती है। अनुशासन बच्चों को आत्मनियंत्रण, आदर, जिम्मेदारी और परिश्रम जैसी आदतें सिखाता है।
1: बिल्कुल।
0: जो उन्हें जीवन में किसी भी परिस्थिति पर टिके रहने की ताकत देता है। इसलिए श्रोता साथियों, समय की बर्बादी को रोक कर और समय का सही उपयोग सिखा कर हम बच्चों को न केवल अच्छा विद्यार्थी बना सकते हैं बल्कि एक बेहतर इंसान और जिम्मेदार नागरिक भी बना सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: समय की कद्र करें, अनुशासन को अपनाएं और अपने सपनों की ओर आत्मविश्वास से बढ़ें। यही
1: हाँ।
0: सफलता का सच्चा रास्ता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, तो इस तरीके से साथियों कहा जा सकता है कि जहाँ टाइम टेबल बच्चों को संतुलन, संयम और नियमितता सिखाता है, वही अनुशासन उनके आचरण और सोच को सकारात्मक बनाता है।
0: बिल्कुल।
1: माता पिता और शिक्षकों को चाहिए कि वे अपने बच्चों को समय का मूल्य भी सिखाएं, एक प्रेरणादायक वातावरण दे और उन्हें अनुशासित जीवन जीने के लिए प्रेरित करें।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि दोस्तों, समय को जो साध लेता है वह जीवन में सब कुछ पा लेता है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए बच्चों को बचपन से ही सिखाना चाहिए कि समय की कद्र करो, अनुशासन अपनाओ और हर दिन को सुनहरा बनाओ।
0: बिल्कुल। तो कशिश, आज कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो गई है और अब समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ अंजलि।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम सच्चा बचपन अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में होने वाले बातचीत, सुनाए जाने वाले गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
1: नमस्कार।

तकी निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पितानी उम्मीद, मुसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, किनकी घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात की शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात्काली ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे, सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे, स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। भाई ने बोनो, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े नी कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है। होवे, अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा। होवे, प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो। होवे, आज नाना कदम है ई आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: डीपी के लिए लोग लाइन में लग जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जबकि अगर आपके पास में गोबर खाद, बर्मी कंपोस्ट या केड़ा का खाद है तो सबसे बेहतर है, तो हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। दूसरी जो हम बात करते हैं कि बदलते जो जलवायु या मौसम की बात करते हैं, तो जल संरक्षण और मिट्टी संरक्षण पर हमें ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कि आपकी मिट्टी में खाद है लेकिन अधिक वर्षा से आपकी मिट्टी में कटाव हो रहा हो, तो आपका सारा खाद है वो बहकर बाहर निकल जाएगा।
1: बिल्कुल।
0: तो इस तरह हमें प्रबंधन करना चाहिए। स्थानीय बीजों का उपयोग करना जरूरी है। अगर हम बात करते हैं कि बदलती जलवायु को नियंत्रण करना या उसके अनुसार चलना, तो हमें ये तैयारी करनी चाहिए कि हम अपना खेत का खुद का बीज और खाद का उपयोग करें। इसके साथ ही कम पानी और कम लागत वाली खेती को बढ़ावा देना चाहिए। इसके साथ एक चीज ये भी है कि जैसे हमने हांगणी की बात की है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सभी किसान भाई अगर हांगणी को अपनाते हैं तो जोखिम बहुत कम होती है। दूसरा, आपको अगर परिस्थितियां प्रतिकूल होती है तो भी आपको कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा, पूरी तरह से नष्ट नहीं होगी, तो आप हांगणी को अपनाना चाहिए आप लोगों को। इसके साथ में है जो पशुपालन, बागवानी है, पोषण बाड़ी है, तो ये चीजें भी आपको करनी चाहिए।
1: जी हाँ।
0: दूसरी दो तरीके की जो फसलें हैं वो हमें जरूर करनी चाहिए। एक होती है कि हम अपने खाने के लिए करें, तो 12 महीने का अनाज हो उतना तो करें आप, लेकिन कुछ फसलें ऐसी चयन करें जिससे आपकी आयु हो सके, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और लेकिन फसल वैसी होगी जो उस जलवायु के अनुसार हो। इसके साथ ही जो किसान समूह है वो आपस में जो जानकारी का आदान प्रदान है वो समय समय पर करते रहें, क्योंकि अगर आपके पास जानकारियां होगी तो कैसी भी जोखिम हो उसका समाधान कहीं ना कहीं हमारे समुदाय में है और हम उसका उपयोग कई सालों से करते आए हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो इसलिए हम लोगों को ये सतर्क रहना पड़ेगा कि अगर मान लो भविष्य में किसी प्रकार की जोखिम आती है तो उसका प्रबंधन कैसे करना है, उससे निपटना कैसे है और उसके लिए क्या तैयारियां करनी है, तो इनका हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि आपने कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को ढेर सारी बातों से अवगत करवाया है कि किस तरीके से खेती में कौन कौन से जोखिम आते हैं और उनका प्रबंधन हमें कैसे करने की जरूरत है, तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: जी धन्यवाद।
2: જાગૃતિ બોન સીમ કે વડે આપણે વેસમે માંગીલાલજી સર જોડેતા કહતા ને એણે આપણને ઘણી અસલ તરીકા તકી બતાડ્યું હે કે ખેતી મે જે જોખમ આવે એણનો હું અર્થ હે હું મહત્વ હે આનો પ્રભાવ આપણે ખેતી માતે હરતે પડી રહ્યું હે ને બચાવના ઉપાય આપણને હું હું કરવા સુવે તો આશા કરો હો કે આ હંગરી વાતે જે હે આપણે ભાઈ બોનોને ગમી હોંગા કેમ કે હવે ટાઈમ થઈ ગયો હે આપણે અણસ કાર્યક્રમ તકી સૂટા પડવાનો
1: હોવે
2: તો સૂટા તો પડ પણ સાથે પહેલે હમરી લાયક ઓર ગીત ને મોરે પડો સૂટા
1: હોવે

0: अंजलि बोल गीत तो आई पूरु नणस गीत हाथे पड़ो सूट उम्मीद करो कि जे भी बातें रही कार्यक्रम खेतीवाड़ी माध्यम थकी ई बातें आपने किसान भाई बहनों ने गमी होंगा। किसान भाई बहन आपने हमारो आज नो आ कार्यक्रम ने आन में सालों वाला गीत आपने केवा लग्या एना बारे में आप राय सुझाव आली शको अपने अना पता माते
1: हवे भाई एन बोनू लखी लो अमारू पतु है कार्यक्रम खेतीवाड़ी बागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कोपड़ा वागथरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान अमारो पिन कोड नंबर है 327001। अजी वधारे जानकारी बल्ले आप अमने फोन करी शको अमारा अणा फोन नंबर माते अमारो फोन नंबर है 9460051234।
0: तो भाई इन बोनो फेरी मलंगा अणस कार्यक्रम में एक ना विषय ने हाते तारुदी
1: राम राम
0: राम राम, राम, राम।

0: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नर्तकी निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पितानी उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपनो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातें रहने वाली है। विषय रहेगा पानी, जंगल और जमीन का संरक्षण। श्रोता साथियों, हम कह सकते हैं कि यदि हम अपने जीवन के मूल आवश्यकताओं पर नजर डालें तो पाएंगे कि भोजन, हवा, पानी और आश्रय, इन सब का आधार कहीं न कहीं पानी, जंगल और जमीन ही है। अगर ये तीनों सुरक्षित है तो जीवन सुरक्षित है, समाज सुरक्षित है और देश का भविष्य सुरक्षित है। लेकिन यदि इनका संतुलन बिगड़ जाए तो विकास के सारे दावे खोखले साबित हो सकते हैं।
0: बिल्कुल। तो जागृति जी, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। तो साथियों, आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय बताया था कि आज हमारी बातें रहने वाली है पानी, जंगल और जमीन के संरक्षण को लेकर।
1: बिल्कुल,
0: कहा गया अंजलि कि पानी, जंगल, जमीन हम बचाएंगे तभी हम सुखी और समृद्ध भारत बना पाएंगे।
1: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि जल ही जीवन है और यह केवल एक नारा नहीं है बल्कि एक शाश्वत सत्य है। मनुष्य बिना भोजन के तो कुछ दिन रह सकता है, लेकिन हम देखते हैं कि मनुष्य पानी के बिना नहीं रह सकता।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में श्रोता साथियों, हमें हमारे जीवन में पानी का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। आज दुनिया के कई हिस्सों में पानी का संकट गहरा रहा है। हम देखते हैं जागृति जी की नदियाँ सूख रही है और तालाब जो है उनका भी पानी सूख रहा है, भूजल स्तर जो है वो नीचे जा रहा है। पहले हम देखते थे कि अगर हम जमीन में खड्डा खोद रहे हैं तो कुछ ही फीट पर हमें पानी मिल जाता था।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन अभी का समय है जिसमें हम देखते हैं कि बहुत लंबा गड्ढा खोदने के बाद भी बहुत सी बार पानी नहीं मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पानी की समस्या है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है।
0: बिल्कुल,
1: ये गांवों से लेकर शहरों हर क्षेत्र में फैल रही है।
0: बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है पानी का अंधाधुंध दोहन और उसकी बर्बादी।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि हम कहीं पर जा रहे हैं तो कहीं नल खुला छोड़ देते हैं लोग, वर्षा जल को सहेजते नहीं है, जल स्रोतों को प्रदूषित करते रहते हैं। अगर ये स्थिति बनी रही तो आने वाली पीढ़ियों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथी, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये कहना चाहेंगे कि हमें वर्षा जल संचयन को अपनाना होगा। घर, स्कूल और सार्वजनिक भवनों में वर्षा के पानी को संग्रहित करने की व्यवस्था करनी होगी।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही जल संरक्षण को जीवन शैली का हिस्सा बनाना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे अंजलि तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम जल नहीं बचा पाएंगे, और जल नहीं बचा पाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें ही कोसेंगी, बताएगी कि हमारे जो दादा परदादा जो थे वो हमारे लिए इतना भी बचाकर नहीं गए।
1: बिल्कुल जागृति जी, कहते हैं ना हर बूंद का मान करें, जल संरक्षण का अभियान करें।
0: बिल्कुल,
1: अगर हम जल संरक्षण अभियान में भाग लेंगे तो हम देखेंगे कि हम पानी का संरक्षण कर पाएंगे।
0: जी हाँ,
1: और जैसा कि आज कार्यक्रम में हम बात ही कर रहे हैं जल, जंगल और जानवरों को लेकर, यही बात करें जंगल की तो जंगल जो है वो प्रकृति के फेफड़े के समान है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं होता है, जीवन का विशाल संसार भी होता है। जंगल हमें ऑक्सीजन देता है, वर्षा देता है, तापमान को नियंत्रित करता है, और साथ ही जागृति जी हम देखते हैं कि जो जीव प्रकृति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं उन सबका आश्रय दाता भी जंगल ही होता है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि उन्हें वहाँ पर ही रहने की, खाने पीने की सारी उनकी जो जरूरतें हैं वो उनसे ही पूरी होती हैं।
0: जी हाँ,
1: जब जंगल कटते हैं तो केवल पेड़ नहीं गिरते बल्कि प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ जाता है।
0: हाँ,
1: जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़ और बढ़ता तापमान कहीं ना कहीं वनों की कटाई से ही जुड़ा हुआ है।
0: बिल्कुल अंजलि, आपने बिल्कुल सही बात बोली, क्योंकि आज विकास के नाम पर हम देख रहे हैं कि जंगलों का तेजी से दोहन हो रहा है। सड़क, उद्योग और भवन जरूरी है लेकिन उनका निर्माण प्रकृति को नष्ट करके नहीं होना चाहिए। श्रोता साथियों, आज हम देखते हैं कि हमारे ऐशो आराम के लिए हम पेड़ों को काटते हैं लेकिन कभी एक पेड़ हम नहीं लगाते। श्रोता साथियों, अगर हमें हमारे ऐशो आराम के लिए बहुत सारी चीजें करनी है तो हमें एक पेड़ लगाना होगा, क्योंकि अगर पेड़ नहीं लगाएंगे तो ये हमारे लिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा।
1: बिल्कुल,
0: विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने होंगे लेकिन केवल वृक्षारोपण ही पर्याप्त नहीं है अंजलि, लगाए गए पेड़ों की देखभाल भी उतनी ही जरूरी है। आज हर इंसान ये कहते हैं कि हमें पेड़ लगाना है लेकिन हम कई बार इन लोगों की बातें नहीं सुनते हैं और हम पेड़ों को, जंगलों को काटते रहते हैं। तो श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही कहना चाहेंगे कि जंगल, प्रकृति, ये प्रकृति ने हमें उपहार दिए हैं, अगर इन्हें हम नहीं बचाएंगे तो ये हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत नुकसानदायक हो जाएंगे। आज हम देखते हैं कि कहीं हमारे बीच में आज से पहले कोरोना महामारी आई थी जिसने हमें बहुत बड़े संकट में डाल दिया था, और ये सब संकट किस लिए आया कि पेड़ कट रहे हैं, हम पानी को नहीं बचा रहे हैं। ये सारी चीजें अगर हम कम करेंगे या अपने ऐशो आराम को थोड़ा सा कम करेंगे, प्रकृति के बीच में रहेंगे तो हो सकता है कि हम इन सब चीजों से बच जाएं।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है जल, जंगल और जमीन को लेकर, ये बातें निरंतर आगे कार्यक्रम में श्रोता साथियों से यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने जल और जंगल के बारे में जाना जागृति जी, यही बात करें जमीन की, तो जमीन भी जीवन और आजीविका का सबसे महत्वपूर्ण आधार होती है।
1: बिल्कुल,
0: जमीन केवल श्रोता साथियों मिट्टी नहीं होती है, वह धरा है जो हमें भोजन देती है, रोजगार देती है और सभ्यता को आगे बढ़ाती है। लेकिन आजकल जागृति जी हम देख रहे हैं कि भूमि क्षरण बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि अगर हमारी जमीन स्वस्थ नहीं होगी तो हमारे जो किसान भाई बहन है उनकी आजीविका खतरे में आ सकती है। इसलिए हमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग न करके जैविक तरीके से हमारी मिट्टी को बनाकर रखना है, क्योंकि जब मिट्टी स्वस्थ होगी तो उससे मिलने वाला उत्पादन भी अच्छा होगा और साथ ही वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा। हम कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा हमारे श्रोता साथियों को बताते रहते हैं, जो जैविक उत्पादन होते हैं उनकी बाजार में मांग भी ज्यादा है, उनसे हमें आय तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य और हमारे पोषण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी के समय में हम देख रहे हैं कि हमारी जो जीवन शैली है वो इतनी ज्यादा बिगड़ गई है कि उसमें अगर सही पोषण नहीं होगा तो हम हर पल बीमार पड़ते रहेंगे।
1: बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा, क्योंकि जब मिट्टी कमजोर होती है तो उत्पादन घटता है, किसानों की आय प्रभावित होती है और खाद्य सुरक्षा पर खतरे मंडराने लगते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए श्रोता साथियों हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना होगा, मिट्टी के स्वास्थ्य को समझना होगा और ऐसी कृषि पद्धतियों को अपनाना होगा जो जमीन को नुकसान न पहुंचाए। इसी के साथ, जैसे कि हमने जल जंगल जमीन के बारे में बात की अंजलि, यही हमारे श्रोता साथियों को जल जंगल और जमीन के अटूट संबंध के बारे में बताते हैं।
0: जी जी
1: श्रोताओं, पानी जंगल और जमीन तीन अलग अलग विषय नहीं है, ये एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं।
0: बिल्कुल,
1: जंगल होंगे तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो जल स्रोत भरेंगे, जल स्रोत भरेंगे तो जमीन उपजाऊ होगी और उपजाऊ जमीन से समृद्धि आएगी।
0: जी जी।
1: यदि जंगल कटेंगे तो वर्षा कम होगी और वर्षा कम होगी तो जल संकट पड़ेगा, जल संकट पड़ेगा तो जमीन बंजर होने लगेगी अंजलि। इसलिए इन तीनों संसाधनों को एक साथ समझना, संरक्षित करना बहुत ही जरूरी है।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, आज तेजी से बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव डाल रही है।
1: बिल्कुल,
0: कई स्थानों पर हम देखते हैं कि नदियां प्रदूषित हो रही है, जंगलों की कटाई जारी है और भूमि क्षरण बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण जागृति जी मौसम चक्र भी असंतुलित हो रहा है, बाढ़ और सूखे जैसी आपदाएं अब पहले से अधिक दिखाई देने लगी हैं। श्रोता साथियों, यह केवल एक कोई प्राकृतिक घटना नहीं है बल्कि कई बार मानवीय गतिविधियों का भी परिणाम है।
1: बिल्कुल,
0: यदि हमने समय रहते इन चुनौतियों का सामना नहीं किया तो हम देखेंगे कि इसका नुकसान केवल पर्यावरण को ही नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता पर होगा।
1: जी हाँ अंजलि, और हम कह सकते हैं कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है। गाँव की अर्थव्यवस्था आज भी पानी जंगल और जमीन पर आधारित है। किसान के खेतों में फसल उगाते हैं, पशुपालक अपने पशुओं का पालन करते हैं और ग्रामीण समुदाय प्राकृतिक संसाधनों से अपनी आजीविका को प्राप्त करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जब गांव के तालाब सूखते हैं अंजलि, जंगल नष्ट होते हैं और जमीन बंजर होती है तो सबसे अधिक असर ग्रामीण जीवन पर ही पड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए श्रोता साथी, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये कहना चाहेंगे कि ग्राम स्तर पर जल संरक्षण, वृक्षारोपण और भूमि संरक्षण की योजनाओं को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। कहा भी गया है कि सशक्त गांव की पहचान ही सुरक्षित जल जंगल और जमीन है।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ कहना चाहेंगे कि इसमें युवा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: किसी भी बदलाव की सबसे बड़ी ताकत हमारे युवा साथी ही होते हैं। आज युवा यदि पर्यावरण संरक्षण का संकल्प ले तो बहुत कुछ बदल सकता है। युवाओं को वृक्षारोपण अभियान, जल संरक्षण कार्यक्रम, स्वच्छता अभियानों में भागीदारी लेनी चाहिए। सोशल मीडिया तकनीक का उपयोग करके भी वे जागरूकता फैला सकते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में भी पर्यावरण शिक्षा को व्यावहारिक रूप से महत्व देना चाहिए। युवा केवल दर्शक नहीं बल्कि परिवर्तन के वाहक बन सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, और कहा गया है कि युवा अगर जागेंगे तो देश सवरेगा, और देश सवरेगा तो प्रकृति से प्रेम करके भविष्य अपने आप ही निखर जाएगा।
0: जी जी
1: श्रोता साथियों, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण अकेले किसी एक व्यक्ति या संस्था के पास की बात नहीं है। जब पूरा समुदाय मिलकर कार्य करता है अंजलि, तभी स्थायी परिणाम प्राप्त होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: गांव में जल समितियां, वन संरक्षण समूह और भूमि सुधार समितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सामूहिक प्रयासों से सूखे तालाब पुनर्जीवित किए जा सकते हैं, नए पेड़ लगाए जा सकते हैं और भूमि संरक्षण के कार्य किए जा सकते हैं।
0: जी,
1: हम कह सकते हैं कि मिलकर कदम बढ़ाएंगे तो प्रकृति को फिर मुस्कुराता हुआ देख पाएंगे।
0: बिल्कुल जागृति, कहा भी गया है कि गांधी जी का स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था, उनका सपना था श्रोता साथियों आत्मनिर्भर और जागरूक समाज का।
1: बिल्कुल,
0: सच्चा स्वराज तभी संभव है जब हमारे गाँव आत्मनिर्भर हो, हमारे जल स्रोत सुरक्षित हो, हमारे जंगल जो है वो फिर से हरे भरे हो और हमारी जमीन उपजाऊ हो।
1: बिल्कुल।
0: जो समाज अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा नहीं कर सकता वह लंबे समय तक समृद्ध नहीं रह सकता। इसलिए पानी, जंगल और जमीन का संरक्षण केवल पर्यावरणीय मुद्दा नहीं बल्कि सच्चे स्वराज का आधार है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए कहा गया है कि प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान यही है सच्चे स्वराज की पहचान।
1: बिल्कुल अंजलि। तो हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि जब भी हम किसी पेड़ को बचाते हैं तब हम केवल एक पेड़ नहीं बचाते बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सांसें सुरक्षित करते हैं।
0: जी जी।
1: जब हम पानी की एक बूंद बचाते हैं तब हम भविष्य की प्यास बुझाने का काम करते हैं। जब हम जमीन की रक्षा करते हैं तब आने वाली कल की रोटी सुरक्षित होती है। इसलिए याद रखिए श्रोता साथियों, प्रकृति हमारे पूर्वजों की विरासत नहीं है जिसे हम केवल उपभोग करें, ये हमारे बच्चों की धरोहर है जिसे हम सुरक्षित करके सौंपना है। इसलिए हमारे मन में हमें संकल्प लेना होगा कि हम पानी की हर बूंद का सम्मान करेंगे, हरियाली बढ़ाएंगे, मिट्टी की रक्षा करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। क्योंकि जब पानी सुरक्षित होगा तब जीवन सुरक्षित होगा, जब जंगल सुरक्षित होंगे तब पर्यावरण सुरक्षित होगा, जब जमीन सुरक्षित होगी तब भविष्य सुरक्षित होगा, और जब ये तीनों सुरक्षित होंगे तब सच्चे अर्थों में एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और खुशहाल भारत का निर्माण होगा।
0: बिल्कुल जागृति जी। इसलिए श्रोता साथियों, पानी बचाओ, जंगल सजाओ, जमीन सवारो, प्रकृति से प्रेम करो और सच्चे स्वराज का सपना साकार करो। इन्हीं बातों के साथ जागृति जी, अब कार्यक्रम सच्चा स्वराज से हम विदा लेते हैं, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे दोस्तों को हम कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को
1: नमस्कार।

0: भाइयों बहनों, जेवरे ग्राम सभा में बोले बोले हैं तो फैसला मजबूत है। वन अधिकार सिर्फ कानून नहीं, माँ जंगल थकी जरूर बोने में रिश्तों है। जे जंगल में हमसे है ये उन्होंने रक्षा करे है। तो आओ बोला ने भागीदारी बढ़ावे, ग्राम सभा मजबूत बनावा, ने जंगल में भविष्य सुरक्षित करा। बोला ने आवाज विकास ने असली पहचान है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर
2: और आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर का प्यार भरा
3: नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
2: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
1: जी हाँ
2: कशिश और मनीषा, आज हमारी श्रोता साथियों से कार्यक्रम में बातचीत का विषय है कि स्वास्थ्य कोई लक्ष्य नहीं है, जीवन जीने का एक तरीका है। हम देखते हैं कि आज के समय में अधिकांश लोग स्वास्थ्य को एक लक्ष्य की तरह देखते हैं। कोई वजन कम करना चाहता है, तो कोई बीमारी से बचना चाहता है, तो कोई शरीर को आकर्षक बनाना चाहता है।
1: बिल्कुल।
2: लेकिन श्रोता साथियों, वास्तव में स्वास्थ्य कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसे एक बार प्राप्त कर लेने के बाद हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जा सके। स्वास्थ्य एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक जीवन शैली है जिसे हमें हर दिन अपने व्यवहार आदतों और सोच के माध्यम से अपनाना पड़ता है।
1: बिल्कुल।
2: स्वास्थ्य केवल बीमारी का अभाव नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से संतुलित जीवन जीने की कला है।
1: जी हाँ।
2: जिस प्रकार कशिश और मनीषा एक पौधे को हर दिन पानी और देखभाल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार स्वस्थ रहने के लिए भी नियमित प्रयास की आवश्यकता है।
1: जी हाँ दिलीप जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें करने वाले हैं। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
2: जी हाँ।
1: तो क्यों ना दोस्तों को पहले इसी गीत के साथ मनोरंजन हम करवाएं।
0: बिल्कुल कशिश, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय आपको बता चुके और बातचीत की शुरुआत भी हो चुकी है कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि स्वास्थ्य कोई लक्ष्य नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। हम देखते हैं साथियों कि बहुत से लोग स्वास्थ्य को केवल शरीर की मजबूती से जोड़कर देखते हैं अंजलि जी, जबकि श्रोता साथियों स्वास्थ्य का जो दायरा है वो इससे कहीं ज्यादा जरूरी होता है।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, यदि व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है लेकिन मानसिक रूप से तनावग्रस्त है तो वो स्वस्थ नहीं कहा जा सकता।
1: बिल्कुल
0: स्वास्थ्य के कुछ प्रमुख आयाम होते हैं जैसे कि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य और साथ ही सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी होता है। साथियों, जब ये सभी पहलू संतुलित रहते हैं तभी व्यक्ति वास्तविक रूप से स्वस्थ माना जाता है।
2: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। यही अगर बात करें कि स्वास्थ्य लक्ष्य क्यों नहीं है,
1: बिल्कुल,
2: तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि लक्ष्य वो होता है जिसे प्राप्त करने के बाद व्यक्ति रुक जाता है।
0: बिल्कुल,
2: उदाहरण के लिए परीक्षा पास करना, नौकरी पाना या कोई प्रतियोगिता जीतना।
1: जी जी।
2: लेकिन श्रोता साथियों स्वास्थ्य ऐसा नहीं है। यदि किसी व्यक्ति ने अपना वजन कम कर लिया है और वह फिर से पुरानी आदतों की ओर लौट गया तो उसका स्वास्थ्य फिर से बिगड़ सकता है।
1: बिल्कुल।
2: इसी प्रकार श्रोता साथियों, यदि कोई व्यक्ति बीमारी से ठीक हो जाए लेकिन स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही को बरते कशिश, तो वह दोबारा बीमार पड़ सकता है अंजलि जी। इसीलिए श्रोता साथियों को कहना चाहेंगी कि स्वास्थ्य कोई मंजिल नहीं बल्कि एक निरंतर चलने वाली यात्रा है।
3: बिल्कुल मनीषा, अगर यही बात करें श्रोता साथियों से कि जीवन शैली और स्वास्थ्य का क्या संबंध है, तो श्रोता साथियों हमारी दैनिक आदतें ही हमारे स्वास्थ्य का निर्माण करती है। समय पर उठना, संतुलित भोजन करना, नियमित व्यायाम करना, पर्याप्त पानी पीना, पर्याप्त नींद लेना और सकारात्मक सोच रखना।
2: हाँ।
3: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों, ये छोटी छोटी आदतें मिलकर स्वस्थ जीवन शैली बनाती है। स्वास्थ्य अचानक नहीं बनता मनीषा और कशिश, बल्कि रोज किए गए छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होता है।
2: जी हाँ।
3: स्वस्थ जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार संतुलित आहार होता है। कहना चाहेंगे दोस्तों कि हम जो खाते हैं वही हमारे शरीर और मन को प्रभावित करता है। ताजे फल, हरी सब्जियां, दालें, अंकुरित अनाज और पर्याप्त पानी शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं। इसके विपरीत अत्यधिक तला भुना भोजन जो होता है, जंक फूड है, मीठे पेय पदार्थ, धीरे धीरे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं।
2: हाँ।
3: इसलिए मनीषा और कशिश श्रोता साथियों को भोजन को केवल पेट भरने का साधन न मानकर स्वास्थ्य का आधार मानना चाहिए, जो अनेक बीमारियों से बचा सकता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, साथ ही हम देखते हैं कि इसमें नियमित व्यायाम की भूमिका भी होती है। जैसे कि दोस्तों व्यायाम जो है वो केवल वजन घटाने का माध्यम नहीं होता।
1: बिल्कुल,
0: ये शरीर को सक्रिय बनाता है, रक्त संचार बेहतर करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करता है।
2: जी हाँ
0: अंजलि जी, ऐसा बताया जाता है कि व्यायाम के लिए महंगे उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती। इसमें हम तेज चलना, योग, साइकिल चलाना, दौड़ना या हल्का शारीरिक श्रम भी कर सकते हैं। ये भी श्रोता साथियों एक तरह का व्यायाम ही है।
2: बिल्कुल,
0: जो व्यक्ति नियमित रूप से शरीर को सक्रिय रखता है वह अधिक ऊर्जावान भी रहता है और स्वयं को स्वस्थ महसूस करता है।
1: बिल्कुल
2: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं और ये बातें हम आगे ही ऐसे ही जारी रखेंगे। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल,
0: तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में, आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
2: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल
3: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से स्वास्थ्य कोई लक्ष्य नहीं है बल्कि जीवन जीने की एक कला है।
1: बिल्कुल,
0: यही बात आती है मानसिक स्वास्थ्य के महत्व की। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में मनीषा, मानसिक स्वास्थ्य एक बड़ी चुनौती बन चुका है। तनाव, चिंता, अवसाद और प्रतिस्पर्धा का दबाव लोगों को मानसिक रूप से कमजोर बना रहा है। इसलिए श्रोता साथियों, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए हमें सकारात्मक सोच, अनावश्यक चिंता से बचना होगा, परिवार और मित्रों के साथ समय बिताना होगा, ध्यान और योग करना होगा और अपनी भावनाओं को साझा करना होगा।
1: जी हाँ।
0: इसी के साथ श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कशिश कि स्वस्थ मन ही स्वस्थ शरीर का आधार है, इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रखने की जरूरत है।
1: जी बिल्कुल। जी हाँ दिलीप जी, तो ये तो आपने बताया मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। अब यही अगर पर्याप्त नींद के महत्व को हम जाने तो दोस्तों, कई लोग काम की व्यस्तता में नींद के महत्व को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि अच्छी नींद शरीर की मरम्मत और मानसिक संतुलन के लिए बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल। जी हाँ।
1: जैसे कि अगर हम श्रोता साथियों अपनी दिनचर्या में पर्याप्त नींद को शामिल करते हैं तो इससे हमारी याददाश्त बेहतर होती है।
0: बिल्कुल।
1: तनाव हमें कम होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है अंजलि जी और मनीषा, और साथ ही कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है।
2: जी हाँ।
1: इसलिए डॉक्टरों द्वारा भी ये कहा जाता है कि नींद को हमें अपने स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा मानना चाहिए।
0: जी जी।
1: और पर्याप्त नींद और पर्याप्त रूप से हमें नींद जरूर लेनी चाहिए।
2: जी बिल्कुल कशिश, यही अगर बात करें कि सकारात्मक सोच और स्वास्थ्य का क्या संबंध है, तो श्रोता साथियों हम देखते

0: बिल्कुल
1: अकेलापन कई बार श्रोता साथियों तनाव और अवसाद का कारण बन सकता है, इसीलिए स्वस्थ संबंध भी स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
0: बिल्कुल मनीषा, यही बात आती है तकनीक और स्वास्थ्य की। तो आज हम देखते हैं कि तकनीक ने जीवन को आसान बनाया है, लेकिन इसके साथ अत्यधिक उपयोग ने स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी बढ़ा दी है।
1: बिल्कुल,
0: लंबे समय तक मोबाइल चलाना, घंटों स्क्रीन के सामने बैठना, शारीरिक गतिविधियों में कमी, ये आदतें आंखों, गर्दन, पीठ और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए कहना चाहेंगे मनीषा और कशिश कि तकनीक का उपयोग हमें संतुलित तौर पर करना है, ताकि इसके विपरीत प्रभाव जो है वो हमारे स्वास्थ्य पर ना पड़े। स्वस्थ जीवन के लिए जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है। नियमित स्वास्थ्य जांच, स्वच्छता, टीकाकरण और सही जानकारी व्यक्ति को अनेक बीमारियों से बचा सकती है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए श्रोता साथियों, स्वास्थ्य संबंधित गलत धारणाओं और अफवाहों से बचना भी आवश्यक है। आज हम देखते हैं मनीषा और कशिश कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक वातावरण अधिक होता है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी हो सकती है। शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन तनाव, प्रदूषण और व्यस्त जीवन शैली स्वास्थ्य को प्रभावित करती है।
1: बिल्कुल,
0: दोनों ही परिस्थितियों में संतुलित जीवन शैली अपना कर स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है।
1: जी हाँ दिलीप जी, अब यही अगर बात करें तो देखते हैं श्रोता साथियों कि स्वस्थ रहने के लिए आत्मअनुशासन भी बहुत जरूरी है।
2: जी हाँ,
1: क्योंकि सही समय पर भोजन करना, नियमित रूप से व्यायाम करना, मादक पदार्थों और नशे से दूर रहना, साथ ही अच्छी आदतों को अपनाना श्रोता साथियों, ये सभी अनुशासन का ही हिस्सा है।
2: जी हाँ,
1: अनुशासित व्यक्ति लंबे समय तक स्वस्थ और सक्रिय जीवन जी सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा अच्छा स्वास्थ्य कोई एक ऐसी मंजिल नहीं है जहाँ पहुँच कर हम रुक जाए।
2: जी हाँ,
1: बल्कि ये जीवन जीने का एक तरीका है साथियों। स्वस्थ रहने के लिए हमें हर दिन अपने खान पान, दिनचर्या, सोच और व्यवहार पर ध्यान देना पड़ता है।
2: जी,
1: बिल्कुल। जब स्वास्थ्य हमारी आदत बन जाता है साथियों, तब जीवन अधिक सुखद, ऊर्जावान और संतुलित हो जाता है।
2: बिल्कुल
1: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगी कि स्वास्थ्य कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसे एक बार में हासिल कर लेने के बाद श्रोता साथियों हमेशा के लिए सुरक्षित रहा जा सके, बल्कि यह जीवन भर अपनाई जाने वाली एक अच्छी आदत, संतुलित दिनचर्या और सकारात्मक सोच का परिणाम है।
2: बिल्कुल,
1: स्वस्थ जीवन के लिए महंगे साधनों की नहीं, बल्कि श्रोता साथियों नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद, मानसिक शांति और आत्मअनुशासन की आवश्यकता होती है।
2: बिल्कुल,
1: यदि हम स्वास्थ्य को अपने जीवन जीने का तरीका बना ले श्रोता साथियों, तो न केवल बीमारियों से हम बच सकते हैं, बल्कि खुशहाल, ऊर्जावान और संतुलित जीवन भी जी सकते हैं।
2: बिल्कुल,
0: तो इस तरीके से मनीषा और कशिश आज हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रही कि किस तरीके से स्वास्थ्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी जीवन जीने का एक तरीका बनाकर इसे हमें स्वस्थ रखने की जरूरत है।
2: बिल्कुल,
0: आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ दिलीप जी,

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य और हमारी स्वास्थ्यप्रद बातें अब यही समाप्त होती है।
1: बिल्कुल,
0: हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे अच्छे स्वास्थ्य को लेकर जो हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी जी।
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: बिल्कुल,
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
2: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को,
1: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को,
2: और आपके अपने साथी अंजलि पारशर को।
3: नमस्कार।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर और स्वागत करती हूं आप सभी का कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर हाजिर होते हैं तो हमारा आपसे बातचीत का एक नया विषय रहता है। तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नए विषय को लेकर मेरी आपसे बातचीत होगी। दोस्तों, आज हम एक ऐसे गुण को लेकर बात करने जा रहे हैं जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन जीवन की हर सफलता की नींव होता है, और वो है धैर्य। साथियों, आज की दुनिया तेज है, आप सभी जानते हैं, हर कोई जल्दी में है, जल्दी सफलता चाहिए, जल्दी परिणाम चाहिए, जल्दी सब कुछ चाहिए, सब कुछ जल्दी जल्दी जल्दी। लेकिन साथियों, जीवन की सच्चाई तो ये है कि जो चीजें जल्दी मिलती है वो अक्सर टिकती नहीं है। धीरे धीरे चलने वाला ही श्रोता साथियों दूर तक जाता है, और यही सच्ची बात है। क्योंकि दोस्तों, हम देखते हैं कि धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं होता बल्कि सही समय का इंतजार करते हुए अपने प्रयासों को लगातार जारी रखना होता है। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर मैं आपसे ढेर सारी बातें करूंगी। तो कार्यक्रम में मजा आएगा साथियों, क्योंकि गीत संगीत भी कार्यक्रम में रहेंगे। और गीत संगीत से मुझे याद आया कि शुरुआत में भी पहले मैं आपको मनोरंजन करवाती हूँ एक गीत के साथ में। तो साथियों, आज भी सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। आप सभी बने रहिएगा आपका अपना रेडियो, आपकी अपनी आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि साथियों, गीत से पहले विषय मैं आपको बता चुकी हूँ कि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे गुण की जो दिखता तो नहीं है लेकिन हमारे जीवन में महत्व बहुत रखता है, और वो गुण है धैर्य का गुण। साथियों, हम देखते हैं कि धैर्य का मतलब है मुश्किल समय में टूटना नहीं, परिस्थितियों के सामने हार नहीं माननी और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। लेकिन साथियों, जल्दी जल्दी नहीं, आराम आराम से, क्योंकि धैर्य वह शक्ति है जो मुश्किल समय को भी आसान बना देती है। हम देखते हैं साथियों कि जब हम अपने जीवन में धैर्य रखते हैं तो हम हर परिस्थिति को समझदारी से देख पाते हैं। हम जल्दबाजी में कभी गलत फैसले नहीं लेते श्रोता साथियों, बल्कि सोच समझ कर आगे बढ़ते जाते हैं, और वो कैसे, क्योंकि हम धैर्य के गुण को अपनाते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं साथियों कि आज के समय में धैर्य के गुण की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि साथियों आप खुद ही मुझे ये बताइए कि आपने कहीं धैर्य रखने वाला व्यक्ति देखा है, और अगर देखा भी है और गलती से हमें कहीं मिल भी गया तो लोग उसे पता नहीं क्या क्या नाम से पुकारते हैं और उससे उसका धैर्य भी खत्म हो जाता है। तो श्रोता साथियों, कहने का मतलब यही है कि हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत का परिणाम हमें तुरंत मिले, हम चाहते हैं कि हमारी कोशिश सफल हो, हम चाहते हैं साथियों कि कोई भी कठिनाई हमारे रास्ते में न आए। लेकिन जीवन ऐसा नहीं होता, क्योंकि दोस्तों जो इंतजार करना नहीं जानते वे सफलता की गहराई को भी कभी नहीं समझ पाते। कई बार श्रोता साथियों, हम सिर्फ इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि परिणाम देर से मिलने वाला है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि परिणाम देर से नहीं मिलता, वह श्रोता साथियों सही समय पर मिलता है, और उस सही समय का हम इंतजार नहीं करते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है श्रोता साथियों हमारे लिए, क्योंकि धैर्य जैसा गुण हर व्यक्ति में होना चाहिए, जो कि वर्तमान में हमें कहीं नहीं देखने को मिलता। हम देखते हैं श्रोता साथियों कि धैर्य और सफलता का बहुत ही गहरा संबंध होता है। वो कैसे, तो साथियों हर बड़ी सफलता के पीछे धैर्य छुपा होता है, ऐसा हमने सुना भी है और देखा भी है। कोई भी व्यक्ति एक दिन में सफल नहीं होता श्रोता साथियों, उसके पीछे उसके कई वर्षों की मेहनत, ढेर सारे संघर्ष और कई दिनों का धैर्य होता है साथियों। और आपने सुना भी होगा कि बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है। अगर साथियों किसान बीज बोने के अगले दिन ही फल की उम्मीद करे तो क्या कभी वह सफल हो सकता है? नहीं हो सकता ना श्रोता साथियों, क्योंकि बीज बोने के बाद भी तो पौधा बनता है और पौधे के बाद पेड़ बनता है। तो अगर आपको भी अपने जीवन में सफलता चाहिए श्रोता साथियों, तो आपको धैर्य को अपने जीवन में अपनाना होगा। तो दोस्तों, जैसा कि बातें मेरी कार्यक्रम के माध्यम से आपसे बहुत अच्छी चल रही है, और हम जान पा रहे हैं कि आज के समय में धैर्य जैसे गुण की हमें कमी देखने को मिल रही है, लेकिन श्रोता साथियों हम प्रयास करेंगे, हम धैर्य को अपने जीवन में अपनाएंगे तो कह सकते हैं कि धैर्य का गुण हमें सब में देखने को मिलेगा और हम अपने जीवन में सफल भी हो पाएंगे। तो श्रोता साथियों, बातें आगे कार्यक्रम में और होंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद फिर से हम रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में और बढ़ते हैं साथियों फिर से हमारे विषय की ओर। जैसा कि हम धैर्य के गुण को लेकर बातचीत कर रहे थे और गीत से पहले हमने जाना था कि आज के समय में धैर्यपूर्ण व्यक्ति हमें बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, और अगर कहीं मिल भी गए तो लोग उन्हें ऐसे ऐसे नामों से पुकारते हैं जिससे उनका धैर्य भी खत्म हो जाता है। तो श्रोता साथियों, कहने का मतलब यही है कि धैर्य रखना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि अगर हम धैर्य को अपने जीवन में अपनाते हैं तो कह सकते हैं कि हम सफलता के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं। क्योंकि श्रोता साथियों, वर्तमान में सफल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सफलता एक ऐसी कह सकते हैं कि चीज है जिसे अगर हमने नहीं पाया या फिर हमें वो नहीं मिली तो हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारा जीवन ही बेकार है। तो कहने का मतलब यही है साथियों कि सफलता पाने के लिए आपको धैर्य की आवश्यकता होगी, और धैर्य के बारे में आपको कैसे पता चलेगा, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो साथियों, अब जानते हैं कि धैर्य हमें क्या सिखाता है। साथियों, धैर्य हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाता है, जैसे कि हमें शांत रहना, कठिन परिस्थितियों का सामना करना और मजबूत बनना। हमें सही निर्णय लेने में भी धैर्य मदद करता है साथियों, और हमें अपनी गलतियों से सीखने का अवसर भी देता है। क्योंकि श्रोता साथियों, किसी ने सही कहा है कि धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी कमजोर नहीं होता, बल्कि वही सबसे मजबूत होता है। जब हम धैर्य रखते हैं श्रोता साथियों, तो हम हर समस्या को एक नए नजरिए से देखते हैं। हम घबराते नहीं हैं, बल्कि समाधान ढूंढने के प्रयास करते हैं। तो श्रोता साथियों, इस तरीके से हम कार्यक्रम के माध्यम से ये जान पाए हैं कि धैर्य हमें क्या क्या सिखाता है। अब यहीं अगर बात करें धैर्य की परीक्षा की, तो साथियों जीवन में कई ऐसे पल आते हैं जब हमारा धैर्य परीक्षा में होता है। वो कैसे? तो जब मेहनत का फल हमें नहीं मिलता तो हमारे धैर्य की परीक्षा होती है, जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ होती है तब भी हमारे धैर्य की परीक्षा होती है, और जब लोग हमारा साथ नहीं देते हैं, हम बिल्कुल अकेले हो जाते हैं श्रोता साथियों, तब भी धैर्य के गुण की परीक्षा होती है। ऐसे समय में दोस्तों मन करता है हार मान लेने का, और ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन साथियों वही सही समय होता है जब हमें सबसे ज्यादा धैर्य की जरूरत होती है। और धैर्य अगर हमारे पास है तो हमें किसी भी चीज से घबराने की आवश्यकता तो है ही नहीं साथियों, क्योंकि दोस्तों अगर धैर्य है तो कठिन समय भी आएगा, और जो कठिन समय है वो हमें धैर्य के साथ मजबूत बनाता है। अगर हम श्रोता साथियों उस समय टिक जाते हैं तो हम खुद को और मजबूत बना लेते हैं, और यही हमारे धैर्य की पहचान है श्रोता साथियों। इसलिए आपसे कहना चाहूंगी कि धैर्य की परीक्षा में सफल होना बहुत जरूरी है, और जो इस परीक्षा में सफल हो गया श्रोता साथियों, तो वो तो आप समझ लीजिए कि जीवन रूपी समंदर में नैया पार हो गई। तो श्रोता साथियों, कहने का मतलब यही है कि आपको अपने जीवन में धैर्य को अपनाना चाहिए, क्योंकि धैर्य ही एक ऐसा गुण है श्रोता साथियों जो आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करेगा। अब श्रोता साथियों, आप ये सोच रहे होंगे कि आप धैर्य की बात तो कर रहे हैं, लेकिन धैर्य को हम अपने जीवन में विकसित कैसे करें? बिल्कुल, वो भी मैं अगर आपको बताऊं साथियों, तो धैर्य एक दिन में कभी नहीं आता, ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। इसे श्रोता साथियों धीरे धीरे विकसित करना पड़ता है। वो कैसे? तो खुद पर भरोसा रखें, अपने लक्ष्य पर ध्यान दे साथियों, जल्दबाजी करने से आपको बिल्कुल बचना है, और हर स्थिति को समझने की कोशिश करनी है और फिर ही प्रतिक्रिया देनी है। क्योंकि साथियों धैर्य जैसे गुण अभ्यास से आते हैं, और अभ्यास ही सफलता की कुंजी होती है। इसलिए श्रोता साथियों, जब हम खुद को समय देते हैं तो हम खुद के लिए बेहतर बन रहे होते हैं, और जब हम बेहतर बन जाते हैं तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए साथियों याद रखें कि धैर्य वह कुंजी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। जो धैर्य रखता है वही अंत में जीतता है साथियों। आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखनी चाहिए श्रोता साथियों कि हर बड़ी सफलता के पीछे लंबा इंतजार होता है, इसलिए धैर्य रखिए, सही समय जरूर आएगा। तो श्रोता साथियों, जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में हमने ये जाना कि धैर्य जीवन की सबसे बड़ी ताकत है, ये हमें मजबूत बनाता है, हमें सही दिशा देता है और हमें सफलता तक भी पहुंचाता है। तो श्रोता साथियों, आपसे यही कहना चाहूंगी कि जब धैर्य और मेहनत साथ होते हैं तो सफलता निश्चित होती है श्रोता साथियों। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए साथियों, धैर्य जैसे गुण को मत खोइए, अपने लक्ष्य पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए।
तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ अब मैं कार्यक्रम से विदा लेने की अनुमति चाहूंगी, क्योंकि देख रहे हैं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का और बातें भी मेरी आपसे पूरी हो चुकी हैं। तो दोस्तों, विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं एक और गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

तो साथियों, जैसा कि आप सुन रहे थे कार्यक्रम सपनों की उड़ान, और आज का हमारा विषय भी बहुत ही प्यारा सा था, धैर्य के गुण को लेकर। तो उम्मीद करती हूँ साथियों कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी मेरी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है साथियों 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक नई सोच और एक नई प्रेरणा के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। नमस्कार साथियों।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये है ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, इतले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो, जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा ज्वार रागी नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
4: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
5: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

भाई बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पितानी उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान होवे। इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है। होवे भाई बोनो, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े में देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे। आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है। होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे। होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागुर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।